0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना। और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति, हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को
किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें शौच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारी पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा ले तो आसानी से पच जाता है, इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का, गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद को मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भाई आज मैं जिस पे बात करने जा रही हूँ ना, वो आप सभी को ये लगेगा कि हर किसी का सपना होता है, हर किसी एक लड़की का सपना होता है, हर एक औरत का सपना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि हर एक औरत हर एक लड़की का सपना होता है। ज्यादा पैसे, अच्छा घर, अच्छा हस्बैंड, नाना, ये सब तो सेकेंडरी है। पहली प्राथमिकता होती है अपनी सुंदरता, और सुंदरता का नाम जहां लिया जाए वो सबसे पहले बात होती है बालों की। बाल सभी के सुंदर होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, लेकिन एक ख्वाब जरूर होता है कि बाल हम सभी के बड़े हों, लहराते हुए बाल, चमकीले बाल, स्वस्थ बाल। लेकिन उसको पाने के लिए हम कितनी ज्यादा मशक्कत करते हैं, जिनके छोटे होते हैं, पतले होते हैं, काफी कुछ हम अपने बालों की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए रेमेडीज का यूज करने लगते हैं, घर में बनाए हुए नुस्खों को अपनाने लगते हैं, बाहरी चीजों को जो केमिकल युक्त होती हैं उसको हम लेकर के बालों में लगाने लगते हैं, कई ऐसे ट्रीटमेंट्स लेते हैं जो कि महंगे महंगे पार्लर्स में जा कर के, और बहुत सारे अब तो ये हो गया है कि हॉस्पिटल्स में भी होता है, इंजेक्शंस लगाई जाती हैं, और ऐसे ऐसे महंगे ट्रीटमेंट बालों के लिए होते हैं जो कि हमारे लिए आगे चलकर, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बालों के लिए वो नुकसानदायक भी होता है। थोड़े टाइम के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब हमारी एज बढ़ने लगती है वो सब का सब वहीं धरा का धरा रह जाता है। तो क्यों ना हम ऐसी चीजों को अपनाएं
जो हमेशा से साथ रहने वाली है, एवरग्रीन होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। योगशाला में आकर मैं योग के बारे में न बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। योगशाला में आकर के योग को अपनाएंगे तो हमारा संपूर्ण शरीर तो स्वस्थ होता ही होता है, साथ ही साथ हम सुंदर भी बनने लगते हैं। और सुंदरता, जैसा कि अभी मैंने बताया, बालों से। स्त्री की सुंदरता जो होती है वो वाकई में बालों से ही देखी गई है। तो आइए आज कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसे प्राणायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपके बालों को घर बैठे बिना किसी खर्चे के सुंदर, चमकदार, मजबूत और लंबा कर सकता है। तो कुछ ऐसे आसन हैं जिसे हम अगर नियमित रूप से अपना लेंगे तो हमारे बालों की जड़ों पर यह जाकर के काम करेगा। सबसे पहला आसन मैं आज जो आपको बताने जा रही हूँ वो है अधोमुख श्वासन, जो कि सिर की ओर रक्त संचार बढ़ाता है, जड़ों तक पोषक तत्व को पहुंचा करके बालों की ग्रोथ में मदद करता है। दूसरा आसन है सर्वांगन यानी शोल्डर स्टैंड, हार्मोन संतुलित करता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है। तीसरा आसन जो है वो है शीर्षासन, इसे बालों का राजा आसन कहा जाता है। सिर में रक्त का संचार बढ़ता है जिससे बाल लंबे घने बनते रहते हैं। अगला आसन है वज्रासन, पाचन को सुधारता है जिससे पोषक तत्व शरीर को और बालों तक अच्छी तरह पहुंचते हैं। उसके बाद सूर्य नमस्कार, पूरे शरीर का व्यायाम करता है, यह तनाव को कम करता है और बालों के लिए आवश्यक ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है। प्राणायाम बहुत जरूरी है, जिसमें कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो कि अनुलोम विलोम, तनाव कम होगा, बाल झड़ना अपने आप रुकेंगे, बाल बढ़ना अपने आप होंगे। कपालभाति, शरीर से विषैले तत्व निकालता है और बालों में निखार लाता है। भ्रामरी प्राणायाम, दिमाग शांत करता है, हार्मोन्स को संतुलित करता है। साथ ही साथ में जब हमारा दिमाग शांत रहेगा, हार्मोन ठीक होंगे, तो हमारा संतुलित आहार अपने आप से हमारे पूरी बॉडी में काम करेगा। पोषक आहार, योग के साथ साथ हमें पोषक आहार भी लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, ई, ओमेगा 3 बालों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए अब मैं आपको 15 मिनट का प्राणायाम रूटीन बालों के लिए बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको बालायम योग यानी नाखून रगड़ना 3 मिनट या आपको सुबह कंटिन्यू करना है। हाथों की चारों उंगलियों के नाखूनों को आपस में रगड़ें, अंगूठों के नाखून ना रगड़ें, धीरे धीरे लगातार अपनी उंगलियों को रगड़ें। इससे सिर की नसों और बालों की जड़ों में रक्त संचार बढ़ता है। यह आपको 3 मिनट करना है। दूसरा अधोमुख श्वासन, यह आपको 2 मिनट करना है। जमीन पर झुककर उल्टे वी के आकार में खड़े हो जाएं, सिर को नीचे की ओर रखें और रीढ़ सीधी रहेगी। सिर की ओर रक्त का प्रभाव बढ़ता है और बालों की ग्रोथ बढ़ती है। अधोमुख श्वासन 2 मिनट तक करना है। 2 मिनट में यह आसन आप 3 से 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी आए आपको यह आसन करना है। तीसरा आता है वज्रासन, जो कि 2 मिनट आपको करना है। घुटनों के बल बैठें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गहरी सांस लें और छोड़ें, जिससे पाचन सुधरता है, जिससे बालों को पोषण मिलता है। वज्रासन, यह आसन हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः खाना खाने के बाद में यह आसन जरूर करना चाहिए। चौथा अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह आपको 3 मिनट करना है। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नौसिका बंद करें, बाईं नौसिका से गहरी सांस लें, फिर दाहिनी नौसिका से छोड़ें। इसी तरह यह क्रम बदल कर करते रहें पूरे 3 मिनट, जिससे तनाव घटता है और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है। शरीर में ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी बालों की नसों में भी ऑक्सीजन पहुंचता है,
जिसके कारण से हमारे बाल स्वस्थ रहते हैं। पांचवा आसन है कपालभाति, जो कि हमें 2 मिनट करना है। आराम से बैठें, गहरी सांस लेकर जोर से सांस छोड़ें। पेट की मांसपेशियों को भीतर खींचें, विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और हार्मोन जो है वो संतुलित होता है। छठा प्राणायाम हमारा है भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हमको 3 मिनट करना है। आंखें बंद करें, कानों को उंगलियों से बंद करें, गहरी सांस लेकर का उच्चारण करें, जैसे मधुमक्खी की ध्वनि होती है। तनाव और चिंता कम होती है, जिससे बाल झड़ना रुकता है। तो कुल मिलाकर के यह 15 मिनट हो गया। आप इसे रोज सुबह खाली पेट या शाम को भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां, फल, मेवे, दूध, दही, दालें, बीज, ओमेगा 3 वाले फूड्स जरूर से लें। अगर आपने यह नियमित रूप से अपना लिया तो आपके बाल बहुत ज्यादा सुंदर होते जाएंगे और नियमित रूप से आपके बाल जो झड़ते हैं वो भी झड़ना बंद हो जाएंगे। इसी तरह अगले प्राणायाम और आसन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूं, जो अमूमन सभी महिलाओं को, पुरुषों को, यहां तक कि बच्चों को भी अब होने लगा है। ज्यादा देर तक एक ही स्थान पर बैठना, काम करना, जॉब को लेकर के बैठने और एक साथ कई घंटों तक काम करने की वजह से पीठ दर्द की समस्या सभी को होती है। ठीक उसी तरह जैसे यदि हम कोई भी काम एक साथ 8-5 घंटे तक बैठ के करते हैं तो हमें एक आदत सी हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि चलो ये काम भी निपटा लें, उसके बाद हम आराम कर लेंगे। बस इसी आदत के कारण से हमारी जो भी अवस्था होती है हम उसमें ढलने लगते हैं और ये आगे चल करके हमारी दर्द का कारण बन जाता है। पीठ दर्द अमूमन आजकल हम सभी घर में सभी किसी न किसी एक व्यक्ति को हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पीठ दर्द को कम करने के आसान से योगासन। पीठ दर्द को कम करने और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में प्राणायाम बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। नियमित अभ्यास से रक्त संचार सुधरता है और साथ ही साथ मांसपेशियों में भी तनाव कम होता है और साथ में मानसिक शांति भी मिलती है। पीठ दर्द के लिए बहुत सारे वैसे प्राणायाम हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन आज कुछ मुख्य रूप से प्राणायाम की गिनती में आप सभी लोग मिलकर के करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम। जी हाँ दोस्तों, अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो सभी प्रकार के दर्द को दूर करने के साथ साथ हमें हमारे स्वस्थ शरीर को प्रदान करता है, जो कि रीढ़ की हड्डी को लचीलापन देता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। मानसिक तनाव को कम करने के साथ साथ हमारे दर्द को भी घटाता है। अनुलोम विलोम आप सभी को पता है कि हमको अनुलोम विलोम कितनी देर करना है, 5 से 7 मिनट। ये प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था में आप 3 से 4 मिनट भी कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम आता है कपालभाति। कपालभाति पेट और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ कपालभाति रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है, इसीलिए हमें नियमित रूप से कपालभाति जरूर करना चाहिए। कपालभाति की भी समय अवधि स्टार्टिंग में 3 से 4 मिनट और हम समय के हिसाब से उसे बढ़ाते जाएंगे तो 5 से 7 मिनट भी कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि नसों को शांति देता है, दर्द और बेचैनी को भी कम करता है। भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हम विपरीत भी कहते हैं, यह हमारी मानसिक और हमारी शारीरिक नसों को इतना आराम देता है कि हमारे सारे दर्द को
दूर कर देता है। चौथा प्राणायाम दीर्घ प्राणायाम। गहरी श्वास लेने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़कर पीठ की जकड़न को कम कर देती है। पांचवा प्राणायाम आता है उज्जयी प्राणायाम। गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है, रीढ़ की सिधाई और ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करता है। उज्जयी प्राणायाम, वैसे तो हम कई ऐसे प्राणायाम करते आ रहे हैं जिसमें गर्दन, पीठ, रीढ़ की सिधाई और भी हमारी नसों को आराम पहुंचाने के लिए करते हैं, लेकिन उज्जयी प्राणायाम विशेषतः गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है। सुबह खाली पेट या सारे प्राणायाम करने से इसका लाभ हमें बहुत ज्यादा मिलता है। आरामदायक आसन में बैठ जाएं, यानी कि सुखासन, वज्रासन या फिर कुर्सी पर सीधा बैठना। 5 से 10 मिनट में शुरुआत करते करते धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाना है। सबसे जरूरी है इसमें नियमितता, यानी कि हम नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं तभी हमें इसका लाभ जरूर से मिलता है। या तीव्र पीठ दर्द, डिस्क या कोई गंभीर रीढ़ की समस्या है तो किसी योग और किसी भी योग से हम जुड़ सकते हैं, जैसे कि आज हमने आपको 5 योगासन बताए। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम की ओर जो कि हमारी पीठ दर्द के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। पीठ दर्द को कम करने के लिए बिल्ली, गाय, मुद्रा, घुटने से छाती तक खिंचाव करने के बाद में उसे उक्तासन जैसे योग आसन किए जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे, बिल्ली, गाय, मुद्रा? जी हाँ दोस्तों, कई बार हमने अपनी सीरीज में आपको बताया है बिल्ली और गाय की मुद्रा। पीठ दर्द को कम करने के लिए आज मैं आपको बिल्ली, गाय, मुद्रा ही बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हाथों और घुटनों के बल आ जाएं, कलाइयाँ कंधों के नीचे और घुटने कूल्हों के नीचे रखें। श्वास लेते हुए अपनी पीठ को मोड़ें, पेट को नीचे की ओर झुकाएं और सिर व टेलबोन को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को गोल करें, हड्डी को छाती से सटाएं और पेट को अंदर खींचें। यह है बिल्ली मुद्रा। इस प्रक्रिया को 6 से 8 बार हम दोहरा सकते हैं। घुटने से छाती तक जो खिंचाव होगा वही हमारा यह मुख्य उपाय होगा। पीठ के बल लेट जाना है, एक घुटने को अपनी छाती की ओर खींचें और कुछ सेकंड रुकें, फिर छोड़ दें। इस क्रिया को हम 5 बार दोहरा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं उत्तान आसन, यानी कि खड़े होकर आगे झुकना। पैरों को कूल्हों के बराबर दूरी पर खड़े होकर के रख करके खड़े हो जाएं। पैरों को कूल्हों के बराबर दूरी पर रख कर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए अपनी बाहों को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को लटका दें और कुछ सेकंड रुक जाएं। धीरे धीरे घुटनों को मोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और इसे 3 से 5 बार दोहराएं। पीठ को सीधा रखने की कोशिश हमेशा से करें, यानी कि जब भी हम बोलें, बैठें, तब हम नियमित रूप से सीधे ही बैठने की कोशिश करें। क्या होता है दोस्तों कि कई बार हम कई घंटे एक जगह बैठे बैठे हमारी रीढ़ की हड्डी पर एक कसाव सा होने लगता है, जिसके कारण से हम झुकने लगते हैं। गर्म या ठंडी सिकाई करने से भी मांसपेशियों को आराम मिलता है, लेकिन मैं आपको जो आज अभी हम सब लोगों ने मिलकर आसन किए, यह आसन बहुत ही उपयोगी है और इन आसनों को जरूर से करना चाहिए। पीठ में जकड़न का इलाज करने के लिए हल्के व्यायाम जो आज हमने आपको बताए, स्ट्रेचिंग या गर्म ठंडी चिकित्सा का उपयोग हम कर सकते हैं। आराम करने से बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, जबकि अगर आपको काम के दौरान भी 5 से 10 मिनट मिल रहा है तो जिनको भी पीठ में दर्द होता है वह जाकर के एक बार सीधा जरूर लेट जाए। स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों की अकड़न दूर होती है और गर्म या ठंडी सिकाई से रक्त प्रभाव बढ़ता है और सूजन कम होती है। अपनी सारी मुद्राएं आराम से करने के बाद में तनाव मुक्त होकर के ही हम लेट जाएंगे।
स्ट्रेचिंग करने से हमारे शरीर की जितनी भी अकड़न होती है वह तो दूर होती है, साथ ही साथ मांसपेशियों को भी बड़ा आराम मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का, यानी कि योगशाला में आज हमने बताया पीठ दर्द को कम करने के साधारण से उपाय और व्यायाम। आइए हम सभी मिलकर के करते हैं और मिलते हैं अगली योगशाला में सुबह 6 से 7, क्योंकि हम सभी मिलकर के जब योग करते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसीलिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए

0: हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक।
1: प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्तीज।

0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: अच्छा ये बताओ बच्चों, चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा? और दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा ना, आखिर वो लंगड़ा थोड़ी ना था।
2: अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थ 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन थोड़ा धक्का लगा के। जी हाँ, एक बार वापस से आपका वेलकम कर रहे हैं आफ्टर टू डेज, और आज हम वापस से आ गए हैं। फिलहाल वक्त की बात करें तो घड़ी ने बताया है कि 8:47 हो रहे हैं आपके 89.6 एफएम के स्टूडियो में, और अर्जुनान लाइव हैं मॉर्निंग वाले शो में। वो शो जो आपको बहुत सारी बातें तो बताता है, साथ ही साथ गुदगुदा भी देता है ना। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो भाई मिल जाएं और बातचीत होने लगे और गुदगुदा दें, उनमें से एक ये भी है। चलिए, आप इंतज़ार कर रहे हैं आज के थॉट ऑफ द डे का, तो हम लेके चलेंगे आपको आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ इस गाने को सुन लेने के बाद, क्योंकि ये गाना जो है शुरुआती गाना है भाई, और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बने रहिए अपने गोंडा एफएम 89.6 एफएम के साथ, मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान रहेंगे गुड मॉर्निंग गोंडा शो में आपके साथ।

0: क्या बात है भाई, आतिफ असलम की वॉइस मॉर्निंग टाइम है और इस गाने के साथ मतलब मज़ा आ जाता है। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम कर लेते हैं, वार्म वेलकम। वार्म वेलकम क्यों? क्योंकि ठंड है, ठंड ऑफ कोर्स स्टूडियो में ठंड है। तो चलिए एक बार वापस से आपका वार्म वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफ एम 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। आपने फ्रिक्वेंसी से ट्यून किया है, रेडियो गार्डन से ट्यून किया और साथ ही साथ ट्यून किया है सीधे जुड़ते हुए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से। सो अब आज का थॉट ऑफ द डे क्या है और क्या कहना चाह रहा है, आइए ले चलते हैं आपको।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Aajya Khan.

हाँ जी, तो भाई वापस से आ गए हैं और आने के बाद अब बताने वाले हैं आपको आज का थॉट ऑफ द डे क्या होने वाला है। कैन यू गेस क्या हो सकता है आज का थॉट ऑफ द डे? भाई आज फ्राइडे है और फ्राइडे में कैसा थॉट आ सकता है? चलिए कोई बात नहीं, अंदाज़ा अगर नहीं है तो हम ही बताने वाले हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे कैसा होने वाला है, आज का थॉट क्या बताने वाला है आपको। लेकिन उससे पहले टाइम चेक। सो टाइम चेक अभी फ़िलहाल हो रहे हैं 8:53, 89.6 FM के स्टूडियो की घड़ी में, और अब आप सुनने वाले हैं आज का मॉर्निंग के स्पेशल थॉट का मसाला। सो क्या होने वाला है आज का थॉट? कहता है कि पीड़ा में तुम क्या पैदा कर सकती है, पीड़ा क्या पैदा कर पाती है तुम में, प्रेम या नफरत, तुम वही हो। पीड़ा तुम में क्या पैदा कर पाती है, प्रेम या नफरत, तुम वही हो। जी हाँ, पीड़ा, जी हाँ, दर्द, दर्द में इंसान होता है तो दो ही बात आती है, या तो नफरत होती है और या फिर प्रेम। सो भाई ये प्रेम भी उसी पीड़ा में महसूस होता है और ये नफरत भी। अब अक्सर जब आप दर्द में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, किसी चीज़ की पीड़ा होती है आपको, तो आप प्रेम में होते हैं या नफरत से होते हैं, जो भी होते हैं वही आपका व्यक्तित्व है, वही आपकी पहचान है, इवन वही आप हैं। जी हाँ, वही आप हैं। यानी दर्द में जो आप बिहेवियर कर रहे हैं किसी के भी साथ, वो आप हैं। कहते हैं कि भाई शख्स बड़ा अच्छा है, क्यों? हम शायद तब किसी को ज़्यादा अच्छा मान पाते हैं जब कैसी भी सिचुएशन आती है उसका अंदाज़ अच्छाई हो, बुराई हो, सुबह हो, शाम हो, पास हो, दूर हो, क्या भी हो, उसका एक अपना तरीका, एक वे होता है, एक अंदाज़ होता है, वही उसको अलग बनाता है। और वहीं से हम कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि हाँ, ये शख्स काफ़ी अलग है, इसका तरीका अलग है, इसका बिहेवियर अलग है, इस तरह की बातों को हम मान लेते हैं, एंड वही पहचान बनता है। जी हाँ, वही पहचान बनता है। इसलिए जब आप पीड़ा में हो तो आप कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, यानी अगर आपको कोई खुशखबरी मिली है तो जाहिर सी बात है आप खुश होंगे, और उस वक्त आपके आसपास जो भी होगा सबसे गले मिलेंगे और आप खुशी खुशी बात करेंगे। लेकिन वही उसके उलट अगर आप पीड़ा में हैं तो शायद आप किसी की नफरत की बोली बोलेंगे, किसी के बारे में बुरा भला कहेंगे, सोचेंगे, या इस तरह की कोई भी ऐसी एक्टिविटी। तो जो कुछ भी आप पीड़ा में करते हैं वो एक्चुअल आपका

नेचर होता है, वो सच में आप होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई कैसे भी बहुत अच्छा बिहेवियर कर सकता है, लेकिन मुसीबत के वक्त, परेशानियों में, या जहां सच में देखा जाना होता है, वहां अगर किसी ने अच्छा बिहेवियर किया है तो डेफिनेटली वो अच्छा शख्स है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमको भी लगता है। तो शायद ये थॉट ऑफ द डे वही बात बताने की कोशिश करता है कि भाई अगर आप पीड़ा में भी प्रेम में हैं तो यकीन मानिए आप वही हैं, और अगर नफरत में हैं तो भी यकीन मानिए आप वही हैं। तो कैसा लगा आज का थॉट ऑफ द डे, जो आपके लिए मॉर्निंग का स्पेशल थॉट बनकर आया, फ्राइडे स्पेशल? चलिए सोचिएगा और ज़रूर ख्याल में आएगा कि पीड़ा में आखिर आप क्या हो जाते हैं और कैसे बन जाते हैं। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। अगली आवाज़ मोहित चौहान साहब की, और गाना आपने अंदाज़ा लगा लिया है।

अच्छा, कई बार ऐसी होती है कि भाई सुपर्ब लोग हमारी लाइफ में आसपास होते हैं और लेकिन हम शायद समझ नहीं पाते हैं, काफ़ी देर से समझ पाते हैं। खैर, लोगों के बारे में तो ये चलता रहता है, लेकिन कई बार सुपर फूड भी होता है हमारे पास, यानी खाने की ऐसी उम्दा चीज़ें जिनसे भाई साहब आपको पोषण का पूरा ख़जाना मिलता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या। हालांकि उसके बारे में सुना होता है, एक लेवल का आइडिया भी होता है, लेकिन प्रॉपर उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए, हम ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो आप कहीं ना कहीं कम अमाउंट में भी वो चीज़ें मिलती हैं, और वो होती हैं सुपर फूड, यानी कि एक चीज़ महंगी है एंड दूसरा उसी का ऑल्टरनेट हो सकता है जो कि आपको आपके अपने चीप एंड बेस्ट बजट में मिल जाएगा। सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं ये बताएंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। फिलहाल आप बने रहिए अपने गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। भाई मॉर्निंग जॉग आरजे अदनान वापस से आ गए हैं, धूमधाम होने वाली है, धूमधाम सुबह की, धूमधाम नए दिन की।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: सुपर सुपर सुपर फूड एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

अक्सर जो है वो हमारे आसपास, चूंकि हम तलाशते हैं कि भाई कम में क्या बेहतरीन चीज़ें मिल सकती है, तो हमेशा कहा गया है गरीबों का बादाम मूंगफली। जी हाँ, जिस तरह बादाम में आपको कई सारे पोषक तत्व मिलते हैं, उसी तरह से मूंगफली भी वही काम लगभग कर लेती है, और इसीलिए इसे गरीबों का बादाम कहा जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा बजट जो है वो अलाउड नहीं होता करता है, और हम चीज़ों को मना कर देते हैं या नहीं कंसम्पशन उसका करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो क्यों ना उनको हम ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे बादाम को हमने बताया किससे, मूंगफली से। उसी तरह आपको पता ही है कि हम पनीर खाते हैं, और पनीर आपको पता है कि भाई गुड़ा में अगर रेट देखेंगे तो आप 250 से 300 के आसपास आपको मिल जाएगा। और पनीर की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं उसका ऑल्टरनेट अगर आप समझते हो, जानते हो, तो ऑफ कोर्स आप जानते ही होंगे सोयाबीन। सोयाबीन भी एक ऐसा सुपर फूड है जो बहुत सारे पोषक तत्वों को लेकर आता है, स्पेशली वो जो मिलते हैं आपको पनीर में, वही आपको मिल जाता है सोयाबीन में। तो सोयाबीन में भी आपको कई सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। इस तरह से मुझे लगता है कई सारे सुपर फूड्स इवन आप भी जानते हैं जो आपके घर में ही होते हैं, और उसके बारे में फ़िलहाल अभी आपको पता भी है, लेकिन उस तरह नहीं कि भाई इन सुपर फूड्स को किस तरह से हम उन सुपर फूड्स से रिप्लेस कर सकते हैं जो महंगे होते हैं। यानी ऐसी चीज़ों को अपने ऑल्टरनेट में लाना जिसको हम इजी टू बाय कर सकते हैं, बहुत आसानी से ख़रीद सकते हैं या उसको उसका कंजम्पशन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपके आसपास भी ऐसे कई सारे सुपर फूड्स हैं जिनके बारे में अगर आप कंपेयर करके आप भी बताना चाहें, यानी इन दो सुपर फूड्स के अलावा जो हमने बताया, एक तो हमने बताया बादाम का अल्टरनेट हो जाता है मूंगफली, एंड दूसरा हो जाता है पनीर का सोयाबीन, और तीसरा और चौथा अगर आप जानते हो तो आप फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले ऑफकोर्स कुछ मैसेजेस आ गए हैं चैट बॉक्स की तरफ, और सविता दुबे जी ने लिखा है सुप्रभात सुप्रभात, और आपको सुविचार भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच टू यू। सबलू सावंत बोरीवली मुंबई से हैं, गुड मॉर्निंग अर्जुनाथ जी, गुड मॉर्निंग टू यू। अनुष्का जी हैं श्रावस्ती से, आपने लिखा है गुड मॉर्निंग सर, हैव अ ग्रेट डे, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी दिन बहुत बेहतरीन हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। एंड साथ ही साथ ये हम समझने की कोशिश भी करते हैं कि भाई आप ऐसे कुछ और सुपर फूड्स के बारे में जानते हैं जो अगर आप किसी और सुपर फूड से कंपेयर करेंगे तो वो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए कह सकते हैं कि भाई कम में आपके लिए बहुत सारे पोषक तत्व लेकर के आ जाता है। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप भी बता सकते हैं, आप भी जान सकते हैं और जता सकते हैं। फिलहाल चलिए चलते हैं अगले सॉन्ग की तरफ, और अगला सॉन्ग जो आ रहा है वो काफ़ी बेहतरीन सॉन्ग है, आप काफ़ी अच्छे से इसको एन्जॉय करिएगा, और मिल करके जब वापस आएंगे तो आने के बाद कुछ और बातें हैं जो आपके लिए ख़ास है और वो आप तक पहुंचानी है। तो भाई बने रहना आपको अपने मॉर्निंग वाले शो में, मॉर्निंग जॉ का आरजे अदनान के साथ मिल करके। फिलहाल सुनते रहिए अपना गोंडा FM 89.6 FM, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और आइए अब चलते हैं डेली 6 के इस खूबसूरत से गाने की तरफ।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: भैया आप डबल बैटरी तो यूं ही किसी को चढ़ा के बोल देते हैं, लेकिन अब जो दूसरी बैटरी आ रही है वो भी ज़रा स्मार्ट हो गई है। अब आप सोचेंगे स्मार्टनेस कैसी, और वो भी दूसरी बैटरी की। चलिए, नहीं पता होगा डेफिनेटली, एंड हम बताएंगे आपको ये भी पता है। तो बता ही देते हैं कि आखिर क्या है स्मार्ट चश्मे की बात, और ये स्मार्ट क्यों कहला रहा है, आखिर इससे ऐसा कौन सा काम होने वाला है जो बाकी चश्मे नहीं कर पाते। चलिए बताते हैं हम आपको आप ही के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

और मेरी जोहर अजभी तुम्हें मालूम नहीं, ये चश्मा है बड़ा ही स्मार्ट। इसे पहनेंगे तब जानेंगे आप। जी हाँ, दरअसल क्या है आइए बताते हैं इस चश्मे में। तो एआई का दौर है, कुछ भी हो सकता है। जब आपका एआई फ्रेंड बन सकता है, उससे आप वो सवाल कर पाते हैं जो शायद किसी और शख्स से नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं क्या ही बेवकूफ़ी वाला सोचेगा इंसान की क्या सोचता रहता है। हालांकि यही इंसान हर आदमी सोचता है, और ऐसे ख्याल जो है वो जहन में आते हैं भाई साहब, लिटरली आते हैं। फिलहाल ऐसा सवाल हम आपके जहन में डालने वाले हैं कि ये स्मार्ट क्यों हो गया है चश्मा, है ना। चलिए, तो अब एआई इनबिल्ड स्मार्ट विजन ग्लासेस जो हैं एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट होकर काम करता है। जी हाँ, तो इसका फीचर क्या है, यानी काम क्या क्या कर सकता है ये स्मार्ट चश्मा। किताब पढ़ करके सुनाना, जी हाँ, ये इसके ख़ास पहचान है कि खुद किताब पढ़ेगा उसके बाद आपको सुनाएगा। दूसरा है आसपास की चीज़ों की पहचान करता है कि क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या चीज़ है। तीसरा है नोट या फिर कैश पहचानना कि आखिर कौन सा नोट है, कितने का है। इसके अलावा म्यूज़िक सुनने में भी फैसिलिटी देता है, यानी काम आपका आसान हो जाता है। सो किनको फ़ायदा मिलने वाला है, आखिर ये चश्मा है किसके लिए, आपके लिए? पहले सुन लेते हैं किसके लिए, है ना, क्लियर हो जाएगा। सो दिल्ली एनसीआर के 35 ब्लाइंड स्कूल्स के 1700 से 2200 बच्चों और उनके जो शिक्षक हैं, यानी जो टीचर्स हैं, उनके लिए ये चश्मा मिलने वाला है। अब तक कई स्टूडेंट्स को बांटा जा चुका है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस पहल में विजन एड और रोटरी क्लब का जो है वो सहयोग भी रहा है, यानी दिल्ली के एनसीआर के वो 35 ब्लाइंड स्कूल जहां ऐसे बच्चे जो दुनिया को नहीं देख सकते हैं, जिनको हम ब्लाइंड पर्सन कहते हैं, एंड उन बच्चों को ये चश्मे मिलने वाले हैं टीचर्स को, ताकि वो ये सारे काम कर सके, चाहे किताब पढ़कर सुनना हो या आसपास की चीज़ों की पहचान करना हो, नोट या कैश की पहचान करना हो, या फिर म्यूज़िक सुनना हो। ये चश्मा सारी चीज़ें करने वाला। कैसे काम करता है ये भी हम बता देते हैं आपको, हालांकि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमने जो पता है वो हम बता देते हैं, और आपको ही पता चल जाएगा आखिर क्या होता है और क्यों स्मार्ट है और कैसे काम करता है। सो सामने जो भी दिखे चश्मा उसे आवाज़ में बताता है, यानी ऑडियो में, कि सामने पीसी रखा है। मान लीजिए मेरे सामने पीसी है, कोई गाड़ी आ रही, कोई व्हीकल है, तो चश्मा आपको ऑडियो में बता देगा कि सामने व्हीकल्स है, आ रही है या खड़ी है। तो जिससे जो ब्लाइंड पर्सन है, जो दुनिया को नहीं देख सकता है, वो शख्स अलर्ट हो जाएगा, है ना। कितनी बेहतरीन चीज़ है। देखिए, इनोवेशन भी किसी के लिए ज़िंदगी में एक रोशनी लेकर आता है, वही काम इस स्मार्ट चश्मे ने किया है। दूसरा है किताबों की फ़ोटो लेकर उसे पढ़कर सुनाएगा। अब भाई उसकी फ़ोटो ले लेगा, रीड करेगा क्या कंटेंट है, उसके बाद ऑडियो में वही सब चीज़ें बोल कर बताएगा, जिससे कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो बुक रीड कर सकेंगे। इसके अलावा नोट पहचान कर बताएगा, 10 का है, 50 का है, 100 का है, 500 का है। जी हाँ, इस तरह से नोट्स की पहचान भी करने वाला है ये स्मार्ट चश्मा। सो बता देगा कि क्यों कौन सा नोट है। सो जो ब्लाइंड पर्सन है, जो दुनिया को नहीं देख सकते हैं, उनके लिए इजी हो जाएगा कि ये कौन सा नोट वो दे रहे हैं, या उनको कोई भी नोट जो दिया जा रहा है आखिर वो कौन सा है और कितने का है। इसके बाद पूरी तरह से ये स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर काम करता है। सो स्मार्ट फोन के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है इस स्मार्ट चश्मे का, जो कि मिलकर के साथ में काम करता है, जैसा कि हमने बताया। तो जाहिर सी बात है, एंड्रॉयड के बहुत सारे फीचर्स का फ़ायदा मिल जाता है इस स्मार्ट चश्मे में। सो ख़ास ये क्यों है, क्योंकि इसकी कीमत तकरीबन 35,000 है, लेकिन बच्चों को मिल रहा है ये फ्री, उन बच्चों को जो ब्लाइंड पर्सन है। बच्चों ने कहा है कि अब ज़िंदगी होने वाली है आसान, पढ़ाई, समझ और आत्मनिर्भरता में बड़ा कदम हो सकता है।
सो इसलिए ये काफ़ी ख़ास बात थी जो कि मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए भाई, इतनी खुशखबरी वाली बात है, इतनी अच्छी बात है और इस तरह का इनिशिएटिव हो रहा है, ऐसी चीज़ें हैं तो ये अपने आप में बहुत अलहदा है, बहुत अलग है ना। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इस स्मार्ट चश्मे के बारे में आपका क्या मानना है, आपने सुना है, आप इस वक्त मौजूद हैं 89.6 FM के स्टूडियो के ऑफकोर्स एप्लीकेशन पर, और आप भी बता सकते हैं कि ये जो ब्लाइंड पर्सन जो दुनिया नहीं देख सकते हैं, ये स्मार्ट चश्मा आखिर उनके लिए कितना कारगर साबित होने वाला है, इस बात को जान लेने के बाद आपका रिएक्शन क्या है। तो फटाफट से आप अपना रिएक्शन दे दें, तब तक के लिए हम आपको ले चलते हैं उड़ान मूवी के एक बेहतरीन सॉन्ग की तरफ। अब आप सोचेंगे उड़ान मूवी का कौन सा सॉन्ग है जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन, भाई सारे अच्छे हैं लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा है।

0: हाय क्या बात है। देखो मैंने कहा था भाई बहुत लाजवाब सॉन्ग है। सॉन्ग्स की कुछ लिरिक्स ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि यार कितना ज़्यादा सोच रहे थे, इतना भी नहीं सोचना होता। फिलहाल ज़्यादा सोचने का कैप्सूल सच में ज़्यादा भारी हो सकता है। आपको ले चलते हैं सिटी अपडेट की तरफ और बताते हैं गोंडा में क्या कुछ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो में मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो फिलहाल आपको कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपके काम की होने वाली है सिटी अपडेट में, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो हम बता दें, पीपा पुल का जो अप्रोच है वो धस गया है और 1.5 घंटे जो है वो कहीं ना कहीं आवागमन ठप हो गया था। सो संजय सेतु की जो मरम्मत है उसके दौरान बनाए गए जो अस्थाई पीपा का पुल है उसके हालात बिगड़ने लगे हैं फिलहाल। और कल की बात अगर हम बताएं, परसों की, बुधवार की, तो बुधवार की रात में पीपा पुल का जो दक्षिणी छोर है उसका अप्रोच मार्ग जो है, रास्ता, वो धंस गया था। इससे 1.5 घंटे तक जो है आवागमन बाधित रहा था। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया और संजय सेतु पर जो मरम्मत का काम है चलने की वजह से 16 अप्रैल से जो वाहन है उनका संचालन अस्थाई पीपा पुल के जरिए अब कराया जा रहा है। सो इस पुल के दोनों ओर बालू पर लोहे की मोटी चादरें बिछा करके अप्रोच जो मार्ग है वो तैयार किया गया, लेकिन बुधवार को हुई बारिश के बाद चादरें अपनी जगह जगह पर धंसने लगी, जिससे कई जगहों पर चादरों को जोड़ने वाले नट बोल्ट भी खुल गए, जिससे भारी वाहनों के निकलने में दिक्कतें हुईं। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और अगली जो अपडेट है वो है भाई स्क्रूटनी भरने से लेकर के। जी हाँ, अभी बोर्ड का रिजल्ट आया है। सो DIOS डॉक्टर रामचंद्र ने बताया है कि स्क्रूटनी में जो इंटरेस्टेड छात्र छात्राएं हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं वो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर 17 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए हर प्रश्न पत्र के लिए ₹500 शुल्क जो है वो डिसाइडेड है। सो कैंडिडेट को शुल्क राजकीय कोषागार में अपना जमा करना होगा, फिर ऑनलाइन अप्लाई पत्र पर डाउनलोड कर उसकी प्रिंट कॉपी लेना है और शुल्क जमा करने का जो मूल चालान है उसको जोड़ते हुए उससे जुड़े हुए क्षेत्रीय कार्यालय को रजिस्टर्ड डॉक से 17 मई तक भेजना है। सो ये एक प्रोसेस है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको स्क्रूटनी के लिए वापस एग्ज़ाम देना है। इसके बाद आपको बताने वाले हैं, मनकापुर होकर चलने वाली है स्पेशल ट्रेन। जी हाँ, सो रेलवे ने जोधपुर गोरखपुर के बीच में जो साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन है वो चलाने का फैसला किया है और ये ट्रेन मनकापुर स्टेशन से होकर गुजरेगी। जोधपुर गोरखपुर ट्रेन स्पेशल 04-829-21 मई से 9 जुलाई तक हर बृहस्पतिवार को जोधपुर से चलेगी और ये ट्रेन दूसरे दिन शाम 6:20 पर मनकापुर स्टेशन पहुंचेगी, फिर बस्ती होते हुए रात को गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में गोरखपुर जोधपुर साप्ताहिक विशेष ट्रेन जो है 048-30 ये 22 मई से 10 जुलाई तक हर शुक्रवार को चलेगी। ये ट्रेन गोरखपुर से रात 11:25 पे निकलेगी और देर रात 1:32 पर मनकापुर स्टेशन पहुँचेगी। सो फिलहाल ये स्पेशल ट्रेन के रिगार्डिंग एक अपडेट थी जो कि आप तक आई। इसके अलावा अगली जो अपडेट है वो है ट्रांसफार्मर ख़राब अगर हुआ तो XEN से होगी रिकवरी। जी हाँ, सो मंडल की जो विद्युत व्यवस्था है उस पर लापरवाही और धीमी प्रगति पर जो मंडल आयुक्त नई आई हैं दुर्गा शक्ति नागपाल जी, उन्होंने सख्त नाराज़गी जताई और कल ही बैठक में मंडलीय समीक्षा की बैठक आयोजित भी की। बैठक में विद्युतीकरण के जो नए कनेक्शंस हैं जारी करने की धीमी प्रगति पर उन्होंने जो मेसर्स विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड है उस पर नाराज़गी भी जताई और साथ ही वार्निंग दिया कि अगर काम में तुरंत सुधार नहीं हुआ तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। साथ ही ट्रांसफार्मर ख़राब होने पर मरम्मत होने वाले खर्च की रिकवरी भी उससे जुड़े हुए XEN के सैलरी से की जाएगी। बैठक में मंडल आयुक्त ने निर्देश दिया कि खराब ट्रांसफार्मरों को तय वक्त के अंदर ही हर हाल में बदला जाए। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति बाधित होने पर जो कंज्यूमर्स हैं उनकी शिकायतों को तत्काल उसका निस्तारण किया जाए। इसके अलावा स्कूल्स के ऊपर से हटेंगी बिजली लाइनें। जी हाँ, सो जो भी स्कूल्स के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन हैं उनकी समीक्षा के दौरान गोंडा में जो काम उसकी धीमी प्रगति है उसे मंडलायुक्त ने कड़ी नाराज़गी जताई है। उन्होंने सभी एजेंसियों को अभियान चलाकर स्कूल्स के कैंपस को जल्द ही बिजली लाइनों से फ्री कराने के लिए निर्देशित किया है और कहा किसी भी स्कूल के ऊपर से बिजली के तार नहीं लटकने चाहिए। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर से जुड़ी जो शिकायतें लगातार हर तरफ से आ रही है बनी हुई है उस पर भी चर्चा हुई। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि
व्यापक जन जागरूकता अभियान स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में जो समाधान है शंकाओं का वो हो, और उपभोक्ताओं को शिकायतों की प्राथमिकता के बेस पर ही उसको जो निस्तारण है वो सुनिश्चित किया जाए। सो साथ ही झटपट पोर्टल पर दर्ज मामलों भी जो है नियमित समीक्षा की जाए, और एक भी लंबित आवेदन रहने पर जिम्मेदारों को चिन्हित करके कार्रवाई को घेरे में लाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, ऑनलाइन फॉर्म भरने पर मिलेगी 11 अंकों की SID, सत्यापन भी होगा आसान, शुरू हो गई है स्वगणना और 20 तक चलेगा अभियान। सो डिजिटल जनगणना 2027 के तहत ज़िले में स्वगणना प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। अब लोग मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के ज़रिए घर बैठे ऑनलाइन जनगणना फॉर्म फिल कर सकेंगे। फॉर्म भरने के बाद हर एक परिवार को 11 अंकों की SEID जारी की जाएगी, जिससे कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस आसान होगा। सो निर्धारित जो कार्यक्रम है इसके हिसाब से 22 के बाद जनगणना कर्मी घर घर जा कर के वेरिफिकेशन शुरू करेंगे। इस दौरान परिवार को सिर्फ स्वगणना के बाद जो मिलेगा SEID दिखानी होगी, जिससे महज 2 मिनट में इसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। सो ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया को और भी ज़्यादा आसान और भी ज़्यादा सुविधाजनक बनाया गया है, ताकि लोग आसानी से खुद की जो जानकारी है वो दर्ज कर सकें। इसके बाद अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट क्या आ रही है आपको बता दें। सो अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है टीकाकरण से जुड़ी हुई। सो अभी से जस्ट 10 मिनट बाद यानी 10 बजे से CHC मुजहना में जो है बच्चियों को टीकाकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। HPV जिसके बारे में आपने कई बार अपने 89.6 FM पर भी सुना है, उसी टीके को लेकर के आज शिविर का आयोजन किया गया है। इसके अलावा चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और बाढ़ से निपटने के लिए बनने वाले हैं कंट्रोल रूम। कलेक्ट्रेट सभागार में कल जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन और बाढ़ तैयारियों को लेकर के भी बैठक की गई थी, और DM ने बैठक में तहसील और ब्लॉक लेवल्स के बाढ़ जो रिलेटेड कंट्रोल रूम्स हैं वहाँ इस्टेब्लिश करने और वहाँ पर ज़रूरी जो भी इक्विपमेंट्स हैं और कर्मचारियों की जो अवेलेबिलिटी है वो इंश्योर करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि अपने अपने बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं वक्त से वहाँ पर विज़िट करके जो भी वहाँ की व्यवस्था है उसको ध्यान में रखा जाए। एंड इसके बाद चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट भी आपको हम बताने वाले हैं। सो ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करे रेलकर्मी। जी हाँ, पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल की तरफ से कल गोंड

जो आयोजित संरक्षा सेमिनार है, लगभग 70 कर्मचारी उसमें उपस्थित रहे और सेमिनार में जो ह्यूमन एरर है उसको शून्य करने, संरक्षा नियमों के पालन और प्रभावी संचार पर चर्चा हुई। कर्मचारियों को पहले सोचें फिर जांचें, उसके बाद काम करें और आखिर में ये इंश्योर करें कि सिद्धांत अपनाने को कहा है। सो फिलहाल ये ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एक अगली अपडेट थी जो कि हमने बताई। इसके बाद हम चलते हैं इसके आगे अगली अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट है कि भाई आपको हमने सारी अपडेट्स बता दी है जी हाँ, लेकिन एक अपडेट और है और वो ये है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आज लेंगे सेवा का संकल्प। सो विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आज ही है चूँकि, सो शुक्रवार को मानव सेवा, आपदा राहत और स्वास्थ्य से जुड़े हुए संकल्पों की मुहिम और भी ज़्यादा तेज़ किए जाने के लिए ऑफकोर्स प्रस्ताव लिया गया है, संकल्प किया गया है। और इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी गोंडा की तरफ से राजा मोहल्ला मौजूद रेड क्रॉस भवन में शाम 4 बजे आज से संगोष्ठी और सेवा कार्यक्रम का आयोजन भी होने वाला है। सो फिलहाल ये एक ज़रूरी जानकारी थी जो आप तक पहुंच गई है। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा और अब आप भी अपडेट हो गए हैं अपने सिटी की अपडेट से। चलिए भाई मुबारक हो, मतलब मिठाई खाने वाली बात नहीं लेकिन खुश हो जाने वाली बात ज़रूर है। फिलहाल अब आपको ले चलते हैं, गज़ब का दिन है इसलिए इस दिन से आपको पास से मिलाने के लिए, अब वो कैसे भाई, इस सॉन्ग के ज़रिए। चलिए एंजॉय करिए अपना मॉर्निंग वाला शो विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, बने रहेंगे बताते रहेंगे।

0: मुझे लगता है कि अब जो हम बताने वाले हैं वो सच में हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत काम की दो संस्थाएं हैं जो काम कर रही है, और कहीं ना कहीं ये सामाजिक संस्थाएं कई बार आपके ऐसे काम कर देती हैं जो आप या तो सोच भी नहीं सकते या तो कई बार आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते और आपकी वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आइए, कुछ काम की संस्थाएं हैं जिनके बारे में हम चाहेंगे कि आप तक जानकारी आए, कि कभी भी आपको किसी को भी इन संस्थाओं का रेफरेंस देना हो तो ऑफ कोर्स आप आसानी से पहुंचा सके।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो आपको हम बता दें, शुभ रहे फाउंडेशन जो है ये बुज़ुर्गों, बच्चों और जो दिव्यांगजन हैं यानी डिसेबल्ड पर्सन्स, उनकी भलाई और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डेडिकेटेड है। सो ये ऐसे लोगों को खाना, कपड़े और दवाइयाँ अवेलेबल करा करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। सो मानवता और समाज सेवा की भावना के साथ ये हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, शुभ रहे foundation.org.in, shubhrahefoundation, यानी एक में ही शुभ रहे foundation.org.in, या फिर आप इसके मेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, shubhrahefoundation@gmail.com, ये संस्था की मेल आईडी है। दूसरी जो है वो है राजिका सोशल वेलफेयर एसोसिएशन। राजिका जो है ये एनजीओ बुज़ुर्गों, बच्चों की जो शिक्षा है और महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक सेवाओं पर केंद्रित करके जो वंचित समुदाय है, यानी एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो इन सभी चीज़ों से दूर है, उनके लिए ये डेडिकेटेड है। और इसका एम्बिशन है ऐसा समाज बनाना जहां हर इंसान आगे बढ़ने, सीखने और आत्मनिर्भर बनने के उसको एक समान अवसर मिले। सो इसमें भी, इससे जुड़ी जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, rswngo.org.in, ये इसकी वेबसाइट है, rswngo.org.in, या फिर इसकी ऑफिशियल मेल है rswassociationngo@gmail.com, rswassociationngo@gmail.com, इस पर आप भी मेल कर सकते हैं। सो ये दो ऐसी संस्थाओं के नाम बताएं, शुभ रहे फाउंडेशन जो कि बुज़ुर्गों, बच्चों और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए है, और दूसरी है राजिका सोशल वेलफेयर एसोसिएशन। इसमें बुज़ुर्गों, बच्चों, महिलाओं के जो सशक्तिकरण का एक पार्ट है, इनको लेकर के डेडिकेटेड है। सो ये दो संस्थाएं काम की आपकी हो सकती हैं, दोनों के हमने आपको वेबसाइट और ईमेल आईडी से रूबरू करा दिया। आई होप कि अगर ऐसा कोई भी है जिसको इनकी ज़रूरत है तो आप इन संस्थाओं से राबता कर सकते हैं। एक छोटी सी हेल्प आपका, एक छोटा सा कॉन्टैक्ट हो सकता है किसी की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दें। इसीलिए इस बात को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश भी की है ताकि आप ऐसी संस्था के बारे में रूबरू रहें, और अगर कहीं कोई ऐसा मिलता है जो इसका कहीं ना कहीं एस्पिरेंट है, महत्वाकांक्षी है, उस तक ये ज़रूर पहुँच जाए। चलिए फिलहाल अब चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। कैसी लगी ये संस्थाओं से जुड़ी हुई बात, अपनी राय आप रख सकते हैं, और साथ ही साथ जब हम आएंगे तो बताने वाले हैं कई सारे मैसेजेस आ चुके हैं, यानी काफ़ी सारे लोग एक्टिव हैं आपके 89.6 FM के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। और फिलहाल कुछ मैसेजेस भी आ गए हैं जिनको हम रीड करने वाले हैं। फिलहाल संस्थाओं के बारे में जान करके आपको कैसा लगा ये ज़रूर बता सकते हैं आप।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
6: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
5: सच में, क्या खास है वहाँ?
6: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
5: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
6: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
5: और फोटोग्राफी वगैरह?
6: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
5: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
6: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
5: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
7: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
8: मतलब?
7: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
9: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सुबह पे जिस तरह शाम का

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: हाँ जी, और फिलहाल आपके कई सारे मैसेजेस आ चुके हैं यस चैट बॉक्स पर। तो चलिए, कौन कौन आ गया है और क्या कुछ लिखा है, ये सब कुछ बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कोंडा में।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोंडा विद योर फेवरेट आरजे अकान।

सबलू सावंत बोरीवली मुंबई से मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग टू यू। अनुष्का जी श्रावस्ती से लिखती हैं, गुड मॉर्निंग सर, हैव अ ग्रेट डे, गुड मॉर्निंग टू यू। प्रीति जी हैं बहराइच से, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। एंड सबलू जी ने बताया कि फल कोई भी हो, ताज़ा हो तो उसमें विटामिन होता है। एप्पल ताज़े के लिए शिमला में जो ताज़ा उपलब्ध है। और नियति ने लिखा है गुड मॉर्निंग आर जी अदनान, गुड मॉर्निंग टू यू। धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास गोंडा से लिखते हैं अदनान सर जी गुड मॉर्निंग, आप कहाँ थे इतने दिनों की बाद आवाज़ सुनने को मिली है, खुशबू ऐसी मिलनी चाहिए जो हवा में मिलने के बाद महके, क्या बात है, थैंक यू सो मच। कुछ ज़रूरी काम था जिसकी वजह से हम आउट ऑफ गोंडा थे, एंड थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए। रफ्तार ने लिखा है गुड मॉर्निंग टू यू। शैलेंद्र जी खजुराहो मध्य प्रदेश से मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग डियर आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू। हो सके तो इस गुलिस्तान में आप ही महकते रहो तो अच्छा है। अच्छा, थैंक यू जी। हाँ, वैसे फ़िलहाल हमने शुरू किया था महकना, और जब तक ऑफकोर्स नियति को मंजूर होगा तब तक हम ज़रूर महकते रहेंगे। उस्मान खान लिखते हैं गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू। कमल नैन जी हैं आरजे अदनान सर, गुड मॉर्निंग टू यू। प्रबल मिश्र मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग प्रबल, आपका वेलकम करते हैं। इसके बाद उस्मान ने लिखा है तब तो बहुत कमाल का चश्मा है सर, थैंक यू सो मच। दीपांशी तिवारी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप, गुड मॉर्निंग, बढ़िया। शैलेंद्र जी ने भी चश्मे के बारे में अपनी राय दी है और कहा है कि बहुत खूब स्मार्ट, चश्मे से वाकई में बहुत मदद मिलने वाली है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि बच्चों को ये फ्री मिलने वाला है। इस महत्वपूर्ण कार्य से जुड़े सभी लोगों को दिल से नमन, थैंक यू। बेशक सही कहा आपने, ऐसे बच्चे जो दुनिया को नहीं देख पाते हैं, ब्लाइंड पर्सन, उनके लिए ये 35,000 की कॉस्ट वाला फ़िलहाल चश्मा फ्री दिया जा रहा है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से, थैंक यू। मिश्र ऑप्टिकल गोंडा से अजय जी गुड मॉर्निंग, एंड आशु मिश्र जी ने लखनऊ से लिखा है सुप्रभात आपको भी। अंबर जी हैं सुप्रभात, आरजे अदनान जी सुप्रभात। आर के श्रीवास्तव जी हैं गुड मॉर्निंग टू यू। एंड ऑफ कोर्स आप सब लोगों के प्यार के लिए, मैसेजेस के लिए बहुत शुक्रिया, आप फ्रिक्वेंसी से ट्यून किए हुए हैं, आपका वेलकम करते हैं, आप हमको सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से भी, आपका भी स्वागत करते हैं। एंड साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यस ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा। सो फिलहाल अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, यानी अगले सॉन्ग की तरफ। इसके बाद कुछ और भी है जो आप तक पहुंचाना है और है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, तो ऑफ कोर्स आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गुड मॉर्निंग गोंडा शो, आर जे अदनान वाला, आपके अपने 89.6 FM पर। तो चलिए फिलहाल अगला जो गाना आ रहा है वो आपको पसंद आने वाला है, और इसमें जो आवाज़ है वो नए सिंगर की है, AP ढिलन जी। हाँ,

0: हाँ जी, तो भाई आईपीएल में और फिर लखनऊ का मैच हो तो हम कैसे नहीं बताएं, ये बताइए, है ना। तो चलिए भाई, आईपीएल का खुमार है और साथ ही साथ बिन मौसम बारिश भी है। सो बिन मौसम पर बारिश आती है तो आखिर आईपीएल पर क्या असर पड़ता है, कभी इसके बारे में सोचा आपने? नहीं सोचा तो सोचो मेरे भाई, और नहीं सोचा कोई बात नहीं, फिर हम बताते हैं क्या असर क्या पड़ता है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई मेज़बान लखनऊ सुपर जायंट्स ने 14 ओवर में एक विकेट पर 145 रन बनाया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था टॉस। सो आपको बता दें, अंक तालिका में आखिरी पायदान पर मौजूद लखनऊ सुपर जायंट्स ने मिचेल मार्श की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आतिशी शुरुआत की। सो बार बार बारिश से प्रभावित आईपीएल के 50वें मैच में मेज़बान टीम ने ऑफकोर्स 14 ओवर में एक विकेट खोकर 145 रन बना लिए थे। खेल तीसरी बार बारिश से थमा हुआ था और इस स्कोर में अकेले मार्श 51 गेंदों पर 9 चौके और 9 छक्कों से नाबाद 107 रन बनाए थे, जबकि दूसरे छोर पर निकोलस पूरन 9 गेंद में 14 रन बना चुके थे। इस सीज़न में पहली बार खेले आर्शिन कुलकर्णी ने 24 गेंदों में 1 चौके से 17 रन बनाए। सो बंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर लखनऊ को बल्लेबाजी दी। टीम प्रबंधन ने आज मिचेल मार्श के साथ नए जोड़ीदार के रूप में आर्शिन कुलकर्णी को भेजा। सो पारी के दूसरे ही ओवर में बारिश की पहली बार जो है वो खलल पड़ गया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मैच शुरू हो गया। इसके बाद मिचेल मार्श ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाए। इन्होंने बेंगलुरु के गेंदबाजी इसकी खबर लेते हुए महज 20 गेंदों पर अर्धशतक और फिर 49 गेंदों में शतक पूरा किया। पारी के 9 ओवर होते ही एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई, जिससे खेल रुकना पड़ा। सो बारिश थमने पर दोबारा खेल शुरू हुआ, जिसमें अर्शिन को कृणाल पांड्या ने आउट कर दिया और पहले विकेट के लिए 9 ओवर 2 गेंद पर 95 रन जुड़े। सो भाई ये जो था वो आईपीएल की अपडेट थी। एंड ऑफ कोर्स बारिश जो है वो खलल डाल ही देती है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा होता ही है। सो फिलहाल कल का मैच अगर आपने देखा हो तो आप किस टीम में चले गए थे देखते ही, सही सही बताइएगा, रॉयल चैलेंजर्स की तरफ या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ? जो भी था बता सकते हैं आप। फिलहाल आपको ले चलते हैं, चूँकि ये कल रात की कल शाम की बात है, तो गाने में वाइब भी ऐसी ही कुछ होनी चाहिए जिससे आपको कल रात या शाम ध्यान आ जाए। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम, मेरी 9.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉकर अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 एफएम के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।

अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक, मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: डियर स्टूडेंट्स, आज आपके स्कूल का पहला दिन है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
1: टीचर, मैं पूछूं क्या?
0: बिल्कुल।
1: तो टीचर, ये बताइए कि यहाँ पे छुट्टियाँ कब शुरू हो रही हैं?

0: हाँ जी, तो चलिए भाई आपके तरफ से कई सारे कंटेंट्स भी आ गए। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। सो ऑफकोर्स हमको इंतजार रहता है क्योंकि ये आपकी चीज़ होती है, आप लिखते हैं, आपके इमोशन होते हैं, आपकी बातें होती हैं, आपका सवाल होता है, आपकी संवेदनाएं होती हैं, यानी इसमें कहीं ना कहीं आप होते हैं और मुझे आपसे मिलने में बहुत अच्छा लगता है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

वक्त कभी आता नहीं लौट कर, जो इंसान नहीं करता वक्त की कद्र, वो वक्त भी कर देता है उसे बेकदर। उम्र भर रह जाता है सिर्फ साथ, बस आंसू अपने हाथ, इसलिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जो वक्त के साथ कदम से कदम मिलाता। वक्त की लाठी में ना होता कोई खनक, पर वक्त सिखाता सबको एक न एक दिन बहुत बखूबी सबक। क्या बात है। सो वक्त की इम्पोर्टेंस और किस तरह वक्त कितना कुछ सीखा जाता है, इसको लेकर के आपने लिखा और हम तक पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलते हैं जो आप बाकी लोगों ने कंटेंट्स भेजे हैं वहाँ। तो इसके बाद जो हम अगले कंटेंट की तरफ बढ़ रहे हैं वो है यामिनी चौहान जी ने भेजा है। क्या लिखती हैं आप? किसी ने पूछा छोड़ देना मुश्किल है या किसी को थामे रहना। मैंने कहा सबसे मुश्किल है खुद को इन दोनों के दरमियान रखना। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं मगर दिल से रुखसत नहीं होते, उन्हें आज़ाद भी करना पड़ता है और अपने अंदर जिंदा भी रखना पड़ता है। ये एक फैसला नहीं, एक आदत बन जाती है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा जी जाने वाले। हम आगे बढ़ने की कोशिश में हाथ तो खाली कर लेते हैं मगर दिल अब भी भरा रहता है, दूसरी भी ज़रूरी लगती है और वही दूरी भी हर पल उनकी तरफ खींचती भी है। अजीब सा रिश्ता है ये, न पूरी तरह ख़त्म होता है न पहले जैसा रहता है। कभी लगता है सब पीछे छूट गया, फिर किसी खामोश लम्हे में वो एहसास लौट आता है जैसे कुछ भी बदला ही नहीं। शायद यही मोहब्बत की सच्चाई है, जहां अलविदा कहना आसान होता है पर जुदा नहीं, जहां अलविदा कहना आसान होता है पर जुदा होना नहीं। रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं मगर उनका असर नहीं, और कुछ दूरियां ऐसी होती हैं जो बिछड़ कर भी साथ रह जाती हैं। क्या बात है, बहुत गहरा, बहुत फैक्चुअल बात लिखी। थैंक यू सो मच यामिनी चौहान जी। अगला जो कंटेंट है नरेंद्र छाऊ जी का, लिखते हैं ना दे खुदा का वास्ता ना हक में मेरे कोई बात कर, ना दे खुदा का वास्ता ना हक में मेरे कोई बात कर, लुटे हुए कारवाएं इश्क रहबर की ना तू हालात परख। क्या बात है, वाह, टू लाइनर्स में इतना बेहतरीन अंदाज आपका, बहुत शुक्रिया। कुंदन राज दत्त और फिनिश्चल जी लिखते हैं दर्द दिल का सफ़र। मुझे दर्द दिल का पता न था, मैं तो सादा दिल एक बच्चा था, न कोई हसरत न कोई प्यास, खुशियों के ही थे सब एहसास। कभी धूप खिली कभी छाँव मिली, कलियों जैसे ही मेरी उम्र खिली, न चाहत के झमेलों का शोर था न यादों का कोई कमज़ोर दौर था। दुनिया लगती थी एक सुंदर मेला, मैं मगन अपनी धुन में अकेला, ना आँखों में नमी न दिल में जलन, सुकून से गुजरती थी हर एक किरण। फिर अचानक एक हवा का झोंका आया, किसी अजनबी ने अपना साया दिखाया, बातें हुई और फिर मुलाकात, खामोश धड़कनों की शुरुआत। वो नज़रों का मिलना वो मुस्कुराना, लगा जैसे मिल गया हो ज़माना, मैंने चाहा जिसे अपनी जान से बढ़कर, उसी ने छोड़ दिया मुझको मोड़ पर। अब सीने में एक अजीब सी टीस है, जैसे कोई पुरानी गहरी खनोच है, रात भर जागना और अश्क बहाना, मुश्किल है अब खुद को ये समझाना। वही महफिलें अब काटती हैं मुझे, तन्हाइयाँ अब भाती हैं मुझे, जिसे समझा था मरहम वही जहर निकला, खजा बन के मेरा सारा शहर निकला। मुझे दर्द दिल का पता न था, इश्क का रास्ता इतना खफा न था, सीख लिया मैंने अब तन्हा सफ़र, पत्थर दिल होकर बेखौफ मगर, ये दर्द ही अब मेरी पहचान है, टूटे हुए खामों का शमशान है, हर आह में एक नया सबक मिलता है, दर्द के बाद ही इंसान संभलता है। अब मुड़कर मैं पीछे देखता नहीं, गए लम्हों को मैं रोकता नहीं, यही हकीकत यही ज़िंदगी की रीत, हार के बाद ही मिलती है असल जीत। क्या बात है, बहुत प्यारा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा लिखा हो, चाहे कुंदन राज दत्ता जी हों, नरेंद्र छाऊ जी हों, यामिनी चौहान जी हों, या फिर हमारी प्रीति जी हों, बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों की लेखनी को लेकर के और हम तक पहुँचाते हैं। और सबसे बेहतरीन हमको लगता है कि आपका लिखा हुआ हम तक आता है, इसलिए आप

अभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज का ये शो कैसा लगा हमको फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि अब फिलहाल हम आपसे ले रहे हैं विदा इस प्रोग्राम से। रात मिलने वाले हैं आज फ्राइडे स्पेशल आपके बहारे गजल में। चले फिलहाल एंजॉय करते रहिए गुड मॉर्निंग गोंडा शो के बाद बैक टू बैक बाकी शोज सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: अरे सुना?
8: क्या?
7: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
7: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता गांव की गूंज का एक नया एपिसोड हम सभी मिलकर ला रहे हैं, जिसमें हर बार की तरह मधुर मधुर गीतों की जो माला पिरोई गई है वह श्रीमती किरण पांडे जी की मधुर आवाज में है, और उसका साथ देने आ रहे हैं जिमी, श्वेता और समता। आज हम आपको ले चलने वाले हैं हमारे गोंडा के ही एक पर्यटक स्थल यानी कि बलरामपुर की ओर, जहां पर आप सभी को पता है कि पर्यटक स्थल होने के साथ साथ वहां पर एक माता जी का भव्य मंदिर भी है। तो आइए दोस्तों, हम गांव की गूंज का जो ये एपिसोड है, इस बार हम आपको ले चलने वाले हैं एक नए और एक बहुत ही प्यारे से पर्यटक स्थल की ओर। अरे बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। उफ, श्वेता भी अभी नहीं आई है, गांव भी जाना है। किरण दी तो अभी आते ही बस शुरू ही हो जाएंगी। चलो चलो, क्या कर रही हो सब?
10: राधे राधे समता जी, क्या हाल है? बहुत गुस्से में दिख रही है, आखिर बात क्या है?
0: अरे पूछो मत श्वेता, देख नहीं रही कितनी गर्मी है और इतने पसीने गिर रहे हैं। मैं तो इस गर्मी से परेशान ही हो गई हूँ।

0: अरे सब लोग रेडी हो भाई, किरण दी आती होंगी। और आओ सब लोग रोटी सब्जी खा लो, बस अभी गरम गरम बनाई है।
1: मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, पर किरण दीदी आ जाती तो सब एक साथ मिल के खा लेते और मजा ही आ जाता।
2: सच्ची कहा श्वेता, पर किरण दी आज कहाँ रह गई भला, गांव भी तो निकलना है। श्वेता देखो जरा फोन लगा के किरण दी को।
1: ओके।
3: हाँ श्वेता, मैं रास्ते में हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। और सुनो, ड्राइवर भैया रास्ते में मिल गए हैं, तो मैं गाड़ी से ही आ रही हूँ, और सब बिल्कुल मुझे तैयार मिलो।
0: हाँ दी, आप आइए, तो हम सब बिल्कुल रेडी हैं। किरण दी आइए, आज मैंने रोटी और कटहल की सब्जी बनाई है, चलिए सब मिलकर खा लें, फिर सब चलते हैं।
3: ठीक है, आओ सब कटहल की सब्जी और रोटी खाते हैं।
4: कटहल

0: अभी कितनी दूर है गांव? जिमी, तुम्हारी नानी का घर तो बहुत दूर है।
1: अरे श्वेता दी, बस आने वाले हैं ड्राइवर भैया, थोड़ा आराम से चलिए, इधर का रास्ता बहुत खराब है।
2: पर काफी हद तक सड़कें अच्छी हो गई हैं अब।
3: जिमी, यही है ना बैरिया सुरजनपुर गांव? जरा बताती हुए चलो, रमेश को रास्ता पता नहीं है।
1: हाँ किरण दी, मैं बताते हुए ही चल रही हूँ, इसीलिए तो मैं ड्राइवर भैया के बिल्कुल बगल वाले सीट पे बैठी हूँ। भैया इधर से दाहिनी मोड़ लीजिए, और वो देखिए भैया, सामने वाला जो दो मकान है पीले रंग का, आगे छप्पर छाया हुआ है, बस वही है नानी का घर।
2: वो जो चारपाई पर बैठी है वही है क्या तुम्हारी नानी, वो जो बूढ़ी सी है?
1: हाँ हाँ समता दी, वही है हमारी नानी जी। चलिए सब लोग उनको राम राम बोलते हैं।
4: राम राम नानी जी।
3: कैसी हैं आप नानी जी, क्या हाल चाल है? नानी जी, भैया और भाभी सभी ठीक है ना? कहाँ हैं सब लोग?
5: सबका राम राम बहनी, जियो नी के रहाओ, कहाओ बहनी जिम्मी, काओ हाल है? तुम्हारे मम्मी पापा केर का हाल है बहनी? आज नानी कहाँ याद कैली हो बच्चा हमार? ये सब तुहार के हो सखी सहेलर हो? आओ आओ सभे जने बैठो, आओ बैठो।
1: हाँ हाँ नानी, ये सभी हमरे साथे काम करती, सखी सहेली समझो नानी।
2: जिमी, तुम्हारी भाभी आ रही है क्या? वो देखो सामने, और शायद भैया भी साथ में हैं।
0: लगता है नानी अपने बहू और बेटे से बहुत प्यार करती हैं।
5: नानी, ज्यादा लाड प्यार ना करो अपने बेटे का, नहीं तो बिगड़ जाएंगे भैया।

0: अरे बच्चा यक्के जने हैं ये, तब मोहाइत है इनका, अब का करी बहनी, यक्के तो हमार बिटीवा बाटे।
1: किरण दी, हमारा मन कह रहा है कि नवरात्रि चल रही है तो हम लोग इधर से ही देवी पाटन मंदिर के दर्शन करते हुए चले।
2: हाँ दी, हम लोग दर्शन करके ही चलेंगे, चाहे जितनी देर हो जाए। नानी जी आप भी चलिए और भैया भाभी आप भी चलिए, गाड़ी तो हमारे पास है ही, बहुत मजा आएगा।
0: अब ये दुल्हन कहाँ जाई है दादा, घाम बहुत है और तनी ये पैदल चले, मैं कमजोर ही बच्चा हमार, डरात ही कि घमाम चली तो करिया ना हो जाई।
2: अरे नाही अम्मा, ये बात ना है, हम कहाँ करिया हन, हमसे ज्यादा तो तहारी बिटिया करिया ही
0: है। दुल्हन खबरदार, जो हमरे बिटिया के यहाँ करिया कहे तो

0: अरे नानी जी, अब बहू और बेटी में कोई फर्क वर्क नहीं करता है और न करना चाहिए। आपकी बेटी भी तो किसी के घर की बहू बनेगी। बहू को बेटी की तरह ही रखिए और प्यार करिए।
1: हाँ नानी जी, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी जी को खुश रखने के लिए ही घर में लक्ष्मी जी आती हैं। अब दिवाली आ रही है, लक्ष्मी जी आने ही वाली हैं।
2: अरे हमारी नानी जी बहुत अच्छी हैं। देखो कितनी सुंदर हैं और बहू को बहुत प्यार करती हैं। अरे इतनी पढ़ी लिखी बहू मिली है आपको, तो आपको किस बात की चिंता है, क्यों नानी?
3: अरे बहनी, हम तो इनका बहुत मोहाई ले, लेकिन ये जब देखो तब यह कहत ही कि तोहार लड़कवा हमारे साथ है बहुत मनमानी करत है, हमार कौनो कदर नाई की हिस। आप बताओ का करी।

0: अरे भाई, झगड़ा लड़ाई कहाँ सुनी, सब बंद करिए और चलिए हमें दर्शन करा तुलसीपुर पाटन देवी मैया का।
1: चलिए नानी जी, मामी जी, दादी, आप सब लोग तैयार हो जाइए, हम लोग मंदिर चलते हैं, मैया के दर्शन करेंगे।
0: चलो चलो, मैंने ही कहा था मंदिर चलने के लिए, चलो सब लोग मंदिर चलते हैं।
2: आओ आओ सब लोग, चलो गाड़ी में बैठो।
0: अरे भैया संभाल के जरा, आराम से चलिए। नानी जी आप आराम से बैठी है ना?
2: हाँ हाँ बच्चा, बैठी हैं नीक यक बैठी हैं दादा।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई वक्त हो चुका है 12 यानी आपके अपने शो ज्ञानश्री लाइव का। और भाई ज्ञानश्री लाइव आप तो जानते हैं कि जब भी हम आते हैं लेकर आते हैं कोई बहुत ही तगड़ी सी इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, तगड़ी, क्योंकि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको बुक नहीं दे पाएगी, वो सिर्फ हम ही देंगे। देखिए भाई, हमारा दिमाग तो साइकोलॉजी को बहुत क्रेव करता है कि भाई साइकोलॉजी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काश हमने साइकोलॉजी पढ़ ली होती, काश कोई मुझे बताने वाला होता। लेकिन पता है आपको, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। देखिए, साइकोलॉजी स्टूडेंट तो मैं भी हूँ, लेकिन पढ़ने से अच्छा उसके फैक्ट जानने में हमें ज़्यादा ही इंटरेस्ट आता है। और ये सारे फैक्ट आपको भी पता होने चाहिए। मुझे लगता है आपको नहीं, हम सभी को पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसी तरह से मैं आ चुकी हूँ, यानी कि आपकी आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव, जिसमें आज दिन है फ्राइडे। और आप सभी जानते हैं कि फ्राइडे के दिन हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट की। लास्ट टाइम हमने डार्क साइकोलॉजी डिस्कस की थी, लेकिन इस टाइम हम एक ह्यूमन की लाइफ स्टाइल में होने वाले डे टू डे चीज़ें जो होती हैं, जिसमें साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा छुपी होती है, उस पर बात करने वाले हैं। अब देखिए भाई, साइकोलॉजी बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी होती है, लेकिन उसको छोटे में करके इंटरेस्टिंग बना के डिलीवर कौन करेगा? इसी चीज़ का बीड़ा हमने अपने सर पर उठा लिया कि चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें छिपी हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ में। देखिए, कभी आपने आपका जो दिमाग है वो रियलिटी नहीं बल्कि इंटरप्रिटेशन देखता है। अब ये क्या होता है, चलो मैं इसको आपको साइकोलॉजिकल तरीके से समझाती हूँ। देखिए, ह्यूमन ब्रेन हर सेकेंड लाखों इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, लेकिन वो सब प्रोसेस नहीं कर पाता है। इसीलिए ब्रेन सिर्फ वही चीज़ें सुनता है जो आपकी इमोशन, बिलीफ या पास्ट एक्सपीरियंस से मैच करती है। इसे हम सिलेक्टिव परसेप्शन कहते हैं। अब कभी आपने नोटिस किया है कि अगर किसी ने आपको, आपके मन में कभी ऐसे आया हो कि मुझे काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, अब अगले दिन जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको जितने भी लोग दिखेंगे सब काले ही कपड़े पहन के दिखेंगे। ऐसा आपके साथ ज़रूर हुआ होगा, लेकिन आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पक्का कोई भगवान चमत्कार कर रहे हैं तभी मुझे सारे ही लोग काले कपड़े में दिख रहे हैं। नहीं जी, देखिए ऐसा नहीं होता। हमारा ब्रेन जो है, जिस चीज़ को सोचता है, जो हमारे इमोशन से, बिलीफ से या हमारे एक्सपीरियंस से मैच करता है, उसी पर हमारा ध्यान जाता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि चलिए मैं आपको इसी के साथ एक और चीज़ समझाती हूँ जो कि साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। अब देखिए, कभी आपने नोटिस किया है कि हम किसी पार्टी में गए हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और सभी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इतनी शोर होता है, इतना शोर होता है कि हमें लगता है कि यार कैसे हम यहाँ रहेंगे। लेकिन अगर हमें कोई बात करने वाला मिल जाता है, मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए, वहाँ बहुत शोर हो रहा है, लेकिन आपको अपना फ्रेंड मिल गया, अब उसी शोर में आप दोनों बात कर रहे हैं, तब क्या होगा कि आपको आपके फ्रेंड की आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई देगी और आपके फ्रेंड को आपकी, और बाकी पूरी दुनिया म्यूट हो जाती है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई में ये दुनिया म्यूट होती है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जिस चीज़ पे हमारा अटेंशन होता है, जिस पे हमारा दिमाग कॉन्शियसली मतलब अपना जो दिमाग है वो लगा के रखता है, वहाँ पे हम उस चीज़ को बहुत क्लियर नोटिस करते हैं, बहुत सही से सुनते हैं, और इसीलिए हमें पूरी दुनिया ब्लर या फिर म्यूट दिखती है। और जिस चीज़ पे हमारा ध्यान होता है, बिलीव होता है, हमारे एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है, उसी पे अटेंशन जाता है। देखिए, आवाज़ वाली बात को ना साइकोलॉजी में कॉकटेल इफेक्ट कहते हैं। और जो ये अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो ध्यान जाता है उसे हम सिलेक्टिव परसेप्शन कहते हैं। थी ना ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ें। अब हम बात करते हैं इग्नोर की। देखिए, ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको किसी ने इग्नोर तो ज़रूर किया होगा। हो सकता है आपके माँ बाप हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके पार्टनर हो, या कोई भी। अरे भाई, मैं आपको बहुत ही ईजी सा अपना एग्जाम्पल देती हूँ। कल जब मैं अपने घर जा रही थी तो मैं रिक्शा रोक रही थी। अब वहाँ पे रिक्शे वाले भैया जितने आए जाएँ वो मेरे को इग्नोर करके जा रहे हैं। तो क्या ये मेरे दिमाग की फॉल्ट है या क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ रहा है? चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। देखिए, जो रिक्शे वाले भैया की बात की ना मैंने, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन काफ़ी बार आप उनसे इग्नोर होते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। और अटैचमेंट होने के बाद जब आप इग्नोर होते हैं तो ये आपको फिजिकल पेन जैसा फील होता है। कभी आपने नोटिस किया कि कभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो या फिर किसी ने आपको इग्नोर किया हो तो ऐसा लगता है कि सीने में बहुत ज़्यादा चुभन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। क्या ये वाकई में होता है? लेकिन वाकई में हो कैसे सकता है, क्योंकि आपको चोट तो लगी नहीं है, लेकिन ये फिजिकल दर्द महसूस कैसे हो रहा है? इसके पीछे की साइकोलॉजी हम आपको बताते हैं। देखिए, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग सोशल रिजेक्शन के समय ब्रेन का वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो फिजिकल इंजरी के वक्त एक्टिवेट होता है। इसीलिए जब ब्रेकअप होता है या फिर कोई आपको घोस्ट करता है, कोई आपका कोल्ड बिहेवियर करता है, जो सिर्फ इमोशनल ही नहीं बल्कि बॉडी जेन्युइनली इस चीज़ से आपको दर्द फील कर लेती है, यानी आपको फिजिकल पेन भी फील होने लगता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप इग्नोर हो, आपका ब्रेकअप हो, घोस्ट हो, या कोई आपको डिच कर जाए और आपको फिजिकल पेन महसूस हो ना, तो आप याद रखिएगा कि इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। थी ना एक इंटरेस्टिंग बात? देखिए, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है, जो आपको ज़रूर समझना चाहिए और जिसके पीछे बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। भाई, काफ़ी सारे लिसनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसे कि मनीष शर्मा जी। मनीष शर्मा जी चैट बॉक्स में आए हैं और लिखे हाय। हेलो मनीष शर्मा जी, आई होप आप अच्छे होंगे और हमारे सभी लिसनर बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा रहे होंगे। फिलहाल अभी हम गाना इन्जॉय कर रहे थे फ्रॉम द मूवी यमला पगला दीवाना, जो कि गाना है चढ़ा दे रंग, जिसमें धर्मेंद्र, सनी और बॉबी देओल की स्क्रीनिंग हुई और आवाज़ थी अली परवेज मेहदी और श्वेता पंडित की। तो भाई, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा सॉन्ग है। कौन सा सॉन्ग है ये आप सुनिए। लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आऊँगी मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके और भी सारे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट, जिससे आपका दिमाग बिल्कुल हिल जाएगा और आप ये सोचेंगे कि अच्छा, इसमें भी मनोविज्ञान होता है। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और एंजॉय करते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: सुनो एक थी कांच की गुड़िया, सुनो एक थी प्यार की पुड़िया सदके।
1: वेलकम बैक एवरीवन, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट की, क्योंकि आज है दिन शुक्रवार और शुक्र है कि शुक्रवार आता है जब मैं आपको बता पाती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए, जाननी चाहिए और समझनी चाहिए, क्योंकि भाई हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो चाहे ना हो लेकिन फैक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। देखिए, हमने काफ़ी बार सुना है कि ये जो चुप्पी होती है, साइलेंस होती है, ये बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अजीब सा माहौल क्रिएट कर देती है। हमें ऐसा लगता है कि मतलब कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जब उनको चुप रहने को कहा जाता है तो वो सोचते हैं कि भाई कितना बड़ा टास्क है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चुप रहना हकीकत में एक बहुत बड़ी पावर है। देखिए, साइलेंस जो होता है यानी चुप रहना, वो इंसान को अनकम्फर्टेबल कर देता है। देखिए, इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि जब बाहर नॉइज नहीं होती है तो ब्रेन के अंदर अपने आप ही आवाज़ें क्रिएट होने लगती हैं। अब आवाज़ का मतलब ये नहीं है कि दिमाग के अंदर गाने चलने लगते हैं। देखिए, जो आवाज़ें आने लगती हैं वो होती है फियर यानी डर की, इनसिक्योरिटी की, सप्रेस्ड थॉट जो आपने कहीं अपने मन के विचार दबा के रखे थे उनकी। क्योंकि देखिए, जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो नेचुरली डिस्ट्रैक्शन चाहता है कि बस उसका दिमाग को कोई भटका के रखे। अब वो हो सकता है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो यानी अच्छा डिस्ट्रैक्शन हो, या कभी कभी हो सकता है कि वो एक बुरा डिस्ट्रैक्शन हो। लेकिन जब ब्रेन को बाहर से कुछ भी नहीं मिलता है तो वो अंदर ही अंदर चीज़ें बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए ह्यूमन ब्रेन जो है नेचुरली डिस्ट्रैक्शन चाहता है, ताकि अनकंफर्टेबल जो इमोशन होते हैं उससे वो बच सकें। अब आप सोच रहे होंगे ये अनकंफर्टेबल इमोशन क्या होते हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, काफ़ी बार हमने ये देखा है कि कोई कोई इंसान किसी एक चीज़ों से ज़रूर डरता है। ऐसा आप में और मुझ में ज़रूर होता होगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जब भी मैं कहीं जाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हॉस्पिटल बहुत कम जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में एक जगह तो बहुत, जहाँ जो मैटरनिटी वार्ड होता है, जहाँ बच्चे जन्म लेते हैं, वहाँ पे तो खुशियाँ होती हैं, लेकिन जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, जहाँ एक्सीडेंट केसेस होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोना धोना होता है। तो कहीं ना कहीं इस इमोशन से मैं अपने आप को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। तो यही कुछ एक ऐसे इमोशन जो आपके मन में भी होंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करा देते होंगे, उन्हें ही हम अनकम्फर्टेबल इमोशन कहते हैं। और इसी से बचने के लिए ह्यूमन ब्रेन डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। इसी वजह से लोग ऑकवर्ड साइलेंस में फ़ोन चेक करने लगते हैं या अननेसेसरी कोई भी बात शुरू कर देंगे। तो ये जो साइलेंस है ना, इसको आपको ज़रूर, और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो साइलेंस होती है ना, ये काफ़ी बार बहुत बड़ी पावर बन के भी आ सकती है। जैसे आप इमेजिन करिए कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आपकी मीटिंग है, और आप जब मीटिंग रूम में घुसते हैं तो वहाँ पे करीबन 15 से 20 लोग हैं, और जब आप अंदर जाते हैं तो सभी वहाँ पे चुप होते हैं। आप जब अंदर प्रवेश करेंगे तो आपके मन में भी थोड़ा सा डाउट आएगा कि अरे, ये सारे के सारे मीटिंग रूम में चुप क्यों हैं। तो कहीं ना कहीं की जो साइलेंस है उस जगह की, वो आप पे प्रेशर बनाने लग जाएगी और आपके दिमाग फिर से वही काम शुरू करने लग जाएगा कि कुछ ना कुछ वो अंदर बनाने लग जाएगा। अब हो सकता है कि उस वक्त आप डर जाएं, प्रेशर फील करने लग जाएं, या अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर लेता है तो काफ़ी बार उसे चक्कर भी आ सकता है और वो बेहोश होकर भी गिर सकता है। तो देखिए, साइलेंस जैसी छोटी चीज कितने बड़े बड़े रिजल्ट भी ला सकती है। साथ ही साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो आपको जरूर जानना चाहिए। वो ये है कि पीपल प्लीजिंग कई बार काइंडनेस नहीं बल्कि एक फियर होती है। अब ये पीपल प्लीजिंग क्या होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कई लोग क्या होते हैं कि उन्हें दूसरों की सहमति में सहमत होना बहुत ज़्यादा, वो उसको प्रेफर करते हैं कि अगर सामने वाला उसे बहुत ज़्यादा काम दे रहा है, उसके कह सकते हैं कि उसके मतलब जितनी उसकी क्षमता है कोई भार उठाने का, उससे ज़्यादा ही भार उस पर लाद देता है, तो भी वो कहता है कि हाँ हाँ जी, मैं कर लूँगा या कर लूँगी। और हर इंसान को हाँ जी ठीक है, ऐसा है वैसा है, इवन कोई उन्हें हर्ट करके भी चला जाता है तो भी वो सामने वाले को कुछ नहीं बोल पाते और उनसे वैसे ही ट्रीट करते हैं। देख, काफ़ी बार काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जो लोग हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें अक्सर रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म और इमोशनल नेगलेक्ट एक्सपीरियंस करना पड़ता है। वो लोग काफ़ी बार इन सब चीज़ों को ज़रूर से जो है एक्सपीरियंस करते हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार लुटाते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्ती में आगे रहते हैं, उन्हें ही सबसे ज़्यादा ब्रेकअप झेलने पड़ते हैं। उन्हें चाहे फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो, या लोग उन्हें अक्सर चीट कर जाते हैं, धोखा दे के चले जाते हैं। ये क्यों होता है? देखिए, काफ़ी बार मैंने भी नोटिस किया है और आपने भी ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो इंसान प्यार में होता है या किसी फ्रेंडशिप में होता है और उसे वहाँ से बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में मिलने लगता है, तो इंसान सोचता है कि ये इंसान अगर मुझे 2% प्यार कर रहा है ना, तो मैं इसको 200% प्यार दूँ। और जब इंसान ये सोचता है कि अरे ये तो सामने वाला मुझे इतना प्यार लुटा रहा है, क्या ये वेला बैठा है, खाली बैठा है, या इसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें दूसरे वाले के भी दिमाग में आने लगती है, जिसकी वजह से लोग डिच कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी चीज़ें नहीं चाहिए थी आपसे। वो जितना आपको दे रहे हैं उतना ही शायद उन्हें आपसे चाहिए था और आपने उन्हें बहुत ज़्यादा दे दिया, इसीलिए लोग आपसे दूर भाग जाते हैं। इसीलिए पीपल प्लीजिंग बहुत बार एक डर होती है, एक काइंडनेस के रूप में नहीं लोग लेते हैं। ब्रेन सीख जाता है कि अगर सब खुश रहेंगे तो मैं भी एक्सेप्टेड रहूँगा, यानी सब लोग अगर खुश रहेंगे आपकी वजह से स्पेशली, तो आप भी बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और आपको यहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। धीरे धीरे इंसान अप्रूवल एडिक्ट बन जाता है और अपनी रियल आइडेंटिटी को दबाने लग जाता है। देखिए, ये बहुत चक्कर होता है और इसीलिए शायद आपको ये आपने भी ये देखा होगा और काफ़ी लोग ये जानते भी हैं कि हमेशा हमें दूसरों की खुशी पे नहीं काम करना चाहिए, हमें खुद की खुशी पे पहले ध्यान देना चाहिए। वो आपने नोटिस किया होगा ना, नहीं नहीं नोटिस नहीं, वो आपने ज़रूर सुना होगा कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो ये बिल्कुल सही लाइन है। अगर आप दूसरों को खुश करेंगे, उससे पहले अगर आप खुद को खुश कर लेंगे, तो आप शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर कर लें और आपको ब्रेकअप्स और हार्ट ब्रेक या फिर हम कहें कि चीटिंग का सामना भी कम करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि जो आपके पास हो, देखिए अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाऊं, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं और आपके दोस्त ने आपसे 200 रुपये मांगे हैं, तो क्या आप उन्हें दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास तो 100 रुपये कम है, यानी कि 100 ही बचे हैं। तो जिसके पास जो होता है उसे उतना ही देना चाहिए, लेकिन देने से पहले आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कहीं उसी 100 रुपये पर आपकी पूरी ज़िंदगी डिपेंड ना करती हो, या आपका पूरा दिन, आपका खाना पीना, रहना आना जाने का खर्चा ना डिपेंड करता हो। इसीलिए बड़ा दिल रखें, लेकिन सबसे पहले खुद के लिए। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे और भी सारे फैक्ट्स की तरफ। और फिलहाल चलते हैं हमारे चैट बॉक्स की तरफ। चैट बॉक्स में हमारे मुस्तफ़ा जी जो कि सऊदी से सुनते हैं, वो आ चुके हैं। सो वेलकम बैक सऊदी से हमारे मुस्तफ़ा जी का, क्योंकि ये जब आते हैं तो बहुत सारी बातें लेकर आते हैं। और मैं देख रही हूँ कि मनी शर्मा और इनके बीच में काफ़ी सारी बातें शुरू हो गई हैं और उन्होंने गुड आफ्टरनून भी विश किया है। तो गुड आफ्टरनून मुस्तफ़ा जी, आई होप आप अच्छे होंगे और सऊदी के हाल अभी फ़िलहाल सही होंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और छोड़ जाते हैं आपको इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

वेलकम बैक एवरीवन, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट की, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ और हमारे इमोशन से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। अभी हमने बात की साइलेंस की, ब्रेकअप की और पता नहीं कितनी सारी चीज़ों की, जिससे आपने ज़रूर रिलेट किया होगा। बात करते हैं हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। देखिए, काफ़ी बार हम सब ने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि हमारी ज़िंदगी में जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो काफ़ी देर तक टिकती हैं और पॉजिटिव वाली फर्र से छू हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे भी कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट है? जी बिल्कुल, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है। देखिए, ह्यूमन ब्रेन सर्वाइवल मोड पे बना था, ठीक है। एंशिएंट टाइम में जो डेंजर नोटिस करना लाइफ बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमेशा इंसान जब डेंजर नोटिस करता है तो बहुत जल्दी भाग जाता है। इसीलिए आज भी ब्रेन इंसर्ट, फेलियर और नेगेटिव एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली स्टोर करता है। इसके बाद नेगेटिविटी बायस भी कहते हैं, जहाँ बैड एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कभी आपने नोटिस किया है कि हमारी लाइफ में कुछ कहानी जो अधूरी रह जाती है, वो चाहे आपकी लव स्टोरी हो, फ्रेंडशिप स्टोरी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वो बहुत ही देर तक हम उसे याद रखते हैं। कई लोगों को उसको भुलाने में महीनों लग जाते हैं, कई को सालों और कोई उम्र भर उस चीज़ को अपने दिमाग में बांध के बैठा रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि अधूरी कहानियाँ हमें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, हम लोग ज़्यादा उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो कहानियाँ पूरी हो जाती हैं, एक अच्छी एंडिंग हो जाती है, वो हम उनको क्यों भूल जाते हैं, है ना? ये कभी ना कभी आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा। देखिए, जो चीज़ अधूरी रहती है हमेशा हमारा दिमाग उसी को कैच करता है। अब काफ़ी बार मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप कहीं जा रहे हैं, आप मान लीजिए आप किसी मॉल में गए हैं, वहाँ पे एक पेंटिंग है जो कि थोड़ी अधूरी है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए किसी एक लेडी की, इंडियन लेडी की एक पोर्ट्रेट बनी हुई है, जहाँ पे बिंदी मार्क तो किया गया है लेकिन उसमें कलर नहीं भरा गया है, तो ऑटोमेटिकली उस बिंदी की ओर लोगों का ध्यान ज़्यादा जाएगा और वो चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि वहाँ पे जब मैं गया था तो वहाँ एक पेंटिंग थी जो कि अधूरी थी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन अधूरी चीज़ों को जल्दी कैच कर लेता है और जो चीज़ें पूरी होती हैं उसको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसीलिए जो आपकी ज़िंदगी में ट्रॉमास होते हैं, अधूरी कहानियाँ होती हैं, वो आप ज़्यादा दिन तक रोक के रखते हैं। लेकिन ये चीज़ें अगर एक हेल्दी है, यानी कि अगर आपकी अटैचमेंट से नहीं जुड़ी हुई है, आपकी पर्सनल लाइफ से नहीं जुड़ी है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं ये आपको लंबे समय तक परेशान भी रख सकती है। उसके बाद देखिए, लोग टॉक्सिक सिचुएशंस में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो पेन फेमिलियर हो जाता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग टॉक्सिक फ्रेंडशिप या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जहाँ पे उनके पार्टनर या उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उन पर बहुत ज़्यादा अजीब बिहेवियर करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको मेंटली एग्जॉस्ट करके रखते हैं कि वो ना तो वहाँ से निकल पाते हैं ना ही वहाँ पर रहा जाता है। तो आखिर लोग उस चीज़ से, उस सिचुएशन से, उस पर्टिकुलर इंसान से दूर क्यों नहीं हो पाते? कभी आपने सोचा ही है? मैं बताती हूँ आपको कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, ब्रेन अननोन चीज़ों से डरता है। अगर कोई इंसान लंबे समय तक स्ट्रेस या टॉक्सिक बिहेवियर में रहे तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये तो भाई नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसे साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। इसीलिए कई लोग हार्मफुल रिलेशनशिप छोड़ने से इसलिए डरते हैं कि उन्हें अकेलापन फेस करना पड़ेगा। काफ़ी लोग को अकेलापन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। वो लोग सोचते हैं कि जो अकेलापन है वो बिल्कुल जहर की तरह है, अगर अकेले रहेंगे तो वो उन्हें खा लेगा। इसीलिए इंसान सोचता है कि भैया अकेले रहने से अच्छा है कि हम एक ऐसी रिलेशनशिप में रहें जहाँ हम हर्ट हो रहे हैं और दिन हर दिन कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप या फिर आपका कोई भी अपना इस ऐसी चीज़ों में फंसा हुआ है, इस लूप में फंस के रह गया है, तो उसको ये चीज़ ज़रूर बताएं कि आपको, क्योंकि अकेलापन बुरा नहीं है, बस ये है कि आप कैसे उससे डील कर रहे हैं। आप उसके साथ रहिए, उसे समझाइए और उसे ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि टॉक्सिक पैटर्न्स को कहीं ना कहीं हम नॉर्मल करने लग जाते हैं, जो कि हमारे लिए नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। तो फिलहाल ये थी कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए। देखिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अब ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको छोड़ जाती हूँ आपके अपने सॉन्ग, आपके अपने फेवरेट सॉन्ग, जो कि मर्डर मूवी से है, कहो ना कहो, जिस पर स्क्रीनिंग हुई है हमारे
कौन से सुपरस्टार, ये आप बताइए इसमें कौन से एक्टर की स्क्रीनिंग हुई है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और छोड़ जाती हूँ आपको इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

वेलकम बैक एवरीवन, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्त्री लाइव, जिसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं काफी सारी चीजों की। भाई काफी सारी बातों पे हम गौर करने से पहले चलते हैं हमारे चैट बॉक्स की तरफ, जिसमें मैं देख रही हूँ हमारी रोशनी जी, नियति जी, कमल नयन जी, मुस्तफा जी तो है ही हमारे साथ स्टार्टिंग से ही, और मनीष शर्मा जी जो कि हमारे शो में आज सबसे पहले आए थे, कमल नयन जी, और काफी सारे लिसनर्स जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपका भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और शो में आने से पहले भाई मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए हमने इस बीच बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने शायद नोटिस किए होंगे, नहीं नोटिस किया तो भाई ये मुझे मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैंने अपने शो को बहुत ही स्मूथली रन किया है। देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं इतनी होशियारी से कि आप सब लोग समझ ही नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। अब देखिए जैसा कि आप लोग अगर ज्ञानश्री लाइफ के रेगुलर लिसनर हैं, काफ़ी सारे हैं, मैं जानती हूँ भाई सभी को मैं जानती हूँ, और आपने नोटिस किया होगा कि दो तीन दिन से या फिर मैं कहूँ पिछले लास्ट वीक भी मैंने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। अब देखिए कितने लोग सुन रहे हैं, कौन कौन सुन रहा है, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाता है, और मैं देख रही हूँ हमारे स्टैटिस्टिक्स, आपका प्यार, कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं हमारे इस नए स्केड्यूल को। देखिए स्पेशली आरजे आयुषी यानी आपकी आयुषी ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, जैसे कि हमारा थर्सडे, अब देखिए थर्सडे में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी आती थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा हो रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमारे लिसनर को काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चाहिए जिस जो चटपटी हो। चटपटी का मतलब है भाई थोड़ा सा मिर्च मसाला तेल ये सब मिले। अब ये किस में आता है, कभी आपने नोटिस किया कि ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? जी हाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं गॉसिप में, यानी कि हम परपंच जब करते हैं। अब देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश से हैं और परपंच नहीं करते हैं तो हम खाक उत्तर प्रदेश से हैं, और हमें चुगली करने में और चुगली सुनने में बड़ा ही मज़ा आता है, और चुगली उनकी हो रही हो जिन्हें हम सब जिस पे हम सभी की कहीं ना कहीं नज़र है तो और भी ज़्यादा हमें मज़ा आने लगता है। देखिए अब थर्सडे को आप जब भी ज्ञानश्री लाइव सुनेंगे तो भाई मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी बॉलीवुड गॉसिप्स जिससे शायद आप बेखबर होंगे। बॉलीवुड गॉसिप यानी कि हमारे सुपरस्टार, हमारे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, कौन सी नई मूवी रिलीज होने वाली है, इन सभी पर हम बात करेंगे हमारे थर्सडे वाले ज्ञानश्री लाइव में। और रही बात हमारे प्यारे शुक्र है शुक्रवार की, तो शुक्रवार के दिन हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो कि साइकोलॉजिकल होते हैं, जिसको शायद आपको नहीं पता होगा कि वो कैसे हमारे दिमाग पे कब्जा करके बैठे हैं, या हमारा दिमाग कैसे हमारी पूरी लाइफ को कब्जा करके बैठा है, छोटे छोटे इमोशंस कैसे कनेक्टेड होते हैं दिमाग से, जिसपे हम आज भी बात कर रहे हैं। और रही बात हमारी शनिवार की, तो भाई शनिवार में आपकी सेहत के साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई सेहत वाला प्रोग्राम आता है स्वास्थ्य संगिनी, जिसमें आपकी सेहत की बात होती है, और कल वाला शो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ कि हमारे एक बहुत ही पक्के दुश्मन की बात होने वाली है कल, कौन है वो आपको कल ही पता चलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चेंजेस पसंद आ रहे होंगे, और अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि भाई देखिए फीडबैक के बिना कोई काम नहीं होता। आशा करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आएंगे और आगे चल के आप इसे बहुत सारा प्यार भी देंगे। फिलहाल चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, हाँ न्यूज़ तो कल हो गई, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक कहें या पॉइंट कहें जो कि साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हमारी लाइफ को कब्ज़ा करके रखा है। देखिए काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा, काफ़ी बार कभी किसी ने आपकी बेइज्जती की है, यानी कि आप एम्बेरसमेंट फील किए हैं, तो उसका दर्द आपको सालों तक क्यों बना रहता है? अब ये दर्द देखिए फिजिकल दर्द नहीं, इमोशनल पेन है, कि आपको हमेशा वो याद रहता है कि नहीं भैया उस जगह गए थे तो हमारी सबने बेइज्जती कर दी। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न भी बहुत बड़ा है, कि ये जो शेम होता है, ह्यूमिलिएशन होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरीज बनाते हैं। जब कोई एम्बेरेसिंग घटना होती है तो ब्रेन उसे सर्वाइवल लेसन की तरह स्टोर कर लेता है, ताकि फ्यूचर में वैसी सिचुएशन आप अवॉइड कर सकें।
इसी वजह से छोटी चाइल्डहुड एम्बेरसमेंट भी अडल्टहुड तक याद रहती है। कभी आपने नोटिस किया है? अच्छा चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम सभी ने कभी ना कभी लिफ्ट पे ज़रूर गए हैं हम लोग, और लिफ्ट जब बंद होती है और जब चलती है तो जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, और काफ़ी लोग को जब ऐसा फील होता है तो वो वहीं बैठ जाते हैं या तुरंत ही कहीं दीवार वाल पकड़ने लगते हैं, किसी बगल वाले इंसान को पकड़ लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे भाई ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही है कि हम लिफ्ट में ऐसा बिहेव कर रहे हैं बल्कि सारे तो नॉर्मल खड़े हैं। ये चीज़ आपको बहुत सालों तक याद रहती है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप लिफ्ट में जाएंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा लिफ्ट को देखते ही कि भाई हमारे साथ एक ऐसा एम्बेरसिंग मोमेंट हो चुका है। सेम ऐसा आपकी क्लासरूम में भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में भी होती हैं जिसमें ये सारे मोमेंट आपको याद रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। मेरी अगर मैं आपको पर्सनल चीज़ें बताऊँ तो जो अभी मैं रिसेंटली कहीं गई हुई थी तो वहाँ पे जब मैं लिफ्ट पे चढ़ी तो मेरे लिए सारी चीज़ें नॉर्मल थी, पर मैंने गलती से जब मेरे साथ के जो लोग थे उन्हें सेकंड फ्लोर पे जाना था और मैंने फिफ्थ फ्लोर जो है क्लिक कर दिया था, और गलती जब मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो फिफ्थ कर दिया है, फिर मैंने हिचकिचाहट में आके जल्दी जल्दी मैंने सारे बटन क्लिक कर दिए, मुझे पता नहीं क्या हुआ था। वो मेरे लिए इतना ज़्यादा एम्बेरसिंग हो गया था कि आसपास से खड़े लोग सारे यही सोच रहे थे कि अरे भाई ये तो कभी लिफ्ट में चढ़ी ही नहीं है। वो मुझे अभी तक याद है और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं लिफ्ट में जाऊँगी ना तो ये सारी चीज़ें मेरे को फिर से रिकॉल हो जाएंगी। इसीलिए एम्बेरसमेंट हमारी लाइफ में, हमारे मेमोरी में काफ़ी टाइम तक स्टोर रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे हंसमुख लोगों की। हंसमुख लोग जो ज़्यादा फनी होते हैं, जो ज़्यादा ह्यूमर क्रिएट करते हैं, देखिए ये आपने सुना भी होगा, नोटिस भी किया होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा फनी होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन होते हैं, यानी कि टूटे हुए होते हैं। अब ये आपको मैं आपको इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न बताती हूँ तो आप शायद ज़्यादा सही से समझ पाएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। देखिए जो ह्यूमर होता है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अब ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि हम किसी एक इमोशन को छुपाने के लिए दूसरे इमोशन को बहुत हाई कर देते हैं जो कि चीज़ों को नॉर्मल फील कराए, इसी को हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। ब्रेन इमोशनल पेन को डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं करने के बजाय वो जोक्स और एंटरटेनमेंट के पीछे छुपा देना चाहता है, इसीलिए इंसान टेम्परेरीली अपनी सैडनेस को छुपाने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए सोसाइटी में हैप्पी इमेज बनाना स्टार्ट कर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बहुत सीरियस इंसान है वो अचानक से बहुत ज़्यादा ह्यूमर की बातें करने लग गया या बहुत ज़्यादा बातें करने लग गया। काफ़ी बार वो बहुत शांत रहता था और हमारे लिए बहुत ही अचंभे की बात है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा शांत रहने वाला इंसान आज इतना हंसने क्यों लग गया, इतना ह्यूमरस क्यों हो गया, इतनी फ़नी बातें क्यों करने लग गया, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जो उसने फेस किया हो जो कि कहीं ना कहीं उसके दिल को उसने तोड़ दिया हो या उसको बहुत बड़ा दुख पहुँचा हो। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आपको किसी के बिहेवियर में चेंज दिखे ना, और ये सिर्फ फनी लोगों के साथ नहीं है, काफ़ी लोग अपना बिहेवियर पूरा उल्टा कर लेते हैं जो आपको समझना चाहिए। काफ़ी लोग क्या होते हैं कि काफ़ी लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो उस दुख को छुपाने के लिए वो घूमने चले जाते हैं, क्योंकि वो एक्साइटमेंट उनके लिए कहीं ना कहीं डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है कि हम एक्साइटेड रहेंगे, नई जगह एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे जो अंदर का दुख है वो कहीं ना कहीं उसको हम दबा देंगे। साथ ही साथ देखिए जो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ब्रेन होता है वो फेक इमोशंस को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। अब ये फेक इमोशन क्या होता है? देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि हम देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कभी आप किसी पार्टी में गए हैं जहाँ आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार आए हों जिनको देख के भाई आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, जैसे आपकी बुआ, चाची, मामी, कोई भी हो सकता है, दूर का पटीदार ही क्यों ना हो, और किसी पार्टी में वो आए हैं, और लेकिन ये भी है ना कि आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा खुन्नस है, लेकिन आप उस वक्त उस पार्टी में थोड़ी ना वो जो है अपनी खुन्नस निकाल सकते हैं कि नहीं तुमने मुझे ये बोला था। उस जगह पे तो आप उनसे बहुत ही वेल बिहेव करेंगे, उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, हाँ जी कैसी है आप, कैसे हैं आप, यही आप करेंगे। तो ये हमारे फेक इमोशन होते हैं जो हम लोग बनाते हैं, और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है क्योंकि ये सभी इंसान कहीं ना कहीं बनाता है। देखिए फेक इमोशन हमारा ब्रेन बहुत जल्दी पकड़ लेता है और इसके पीछे काफ़ी बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न भी है। जैसे ह्यूमन ब्रेन माइक्रो एक्सप्रेशन नोटिस कर लेता है, जैसे छोटे छोटे फेसियल चेंजेस, जो हमारे फेस एक्सप्रेशन में छोटे छोटे चेंजेस आते हैं, वॉइस ब्रेक होना, आई मूवमेंट का चेंज होना, ये सब सबकॉन्शियस लेवल पर डिटेक्ट करते हैं कि आपका जो ये बिहेवियर है ना, जो हृदय परिवर्तन तुरंत से हो गया, ये तुरंत नहीं हुआ, ये आप बस नकली बना रहे हैं। इसीलिए कई बार वर्ड्स मैं ठीक हूँ कहते हैं लेकिन ब्रेन इंस्टेंटली महसूस कर लेता है कि नहीं, ये बस कह रहा है कि मैं ठीक हूँ लेकिन अंदर से ये मैं ठीक नहीं है।
और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हैं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आऊँगी मैं, यानी आपकी आरजे आयुषी लेके कुछ और फैक्ट्स। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को।

भाई हम बात कर रहे हैं कहाँ फैक्ट्स की और कहाँ ये बात हो रहे हैं मुझसे शादी करोगे। भाई देखिए ये कहीं ना कहीं गाना जायज भी है क्योंकि आजकल शादियों का सीजन बिल्कुल जोरों पे है। जहाँ देखो वहाँ शादी हो रही है, हर किसी को कहीं ना कहीं जाने का निमंत्रण तो भाई ज़रूर है और हम सब एक्साइटेड भी बहुत होते हैं। देखिए जो घर के बड़े होते हैं ना वो थोड़ा कम एक्साइटेड होते हैं कि अरे पार्टी ही तो है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि अरे वाह आज तो पार्टी में जाने को मिलेगा। तो भाई ये कहीं ना कहीं हर एक के घर की कहानी है पार्टीज और शादी के फंक्शन को लेकर के। वह चलते हैं हम हमारे मेन मुद्दे की तरफ जो कि है फैक्ट्स। अब देखिए काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा कि आपको बेवजह कई लोग डिसलाइक करने लग जाते हैं, यानी आपसे चिढ़ने लग जाएंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे और वो बेवजह होता है। आप खुद भी कंफ्यूज रहते हो कि आखिर ये इंसान ऐसा बिहेव कर तो कर क्यों रहा है। मैं बताती हूँ कि आखिर वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए ह्यूमन ब्रेन जो डिसलाइक होता है वो हर बार नापसंद होने को ही डिसलाइक नहीं करते, काफ़ी बार सामने वाला आपसे इनसिक्योर भी फील कर रहा होता है इसलिए वो आपको नापसंद करने लग जाता है। देखिए इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है। जैसे ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कंपैरिजन करता है कि कौन ज़्यादा बेहतर है, मैं या वो शर्मा आंटी का लड़का ज़्यादा अच्छा है या मैं अच्छा हूँ, यही वो तो मिश्राइन आंटी की लड़की जो है वो टॉप कर गई और मैं नहीं कर पा रही हूँ। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली चलने लग जाती है जिसपे हम बेखबर होते हैं और हम इसे जानबूझ के करते भी नहीं हैं, ये अपने आप होने लग जाती है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे में वो क्वालिटीज़ देखे जो उसमें नहीं होती है तो उसे इंस्पिरेशन की बजाय इनसिक्योरिटी फील होने लगती है और फिर ब्रेन जेलिसी को जस्टिफाई करने के लिए उसमें फ्लॉज निकालने लग जाता है। कि ऐसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने टॉप किया तो शर्मा जी का लड़का क्या कहेगा, अरे उसने टॉप किया तो क्या हुआ, दिन भर फोन ही तो चलाता है, कुछ तो करता ही है, घर का काम नहीं करता, बहुत ही गंदी तरीके से बात करता है। यानी कि जो उसमें कमी है उसको जस्टिफिकेशन देने के लिए आपको वो डिसलाइक करने लग जाता है। और ये कहीं ना कहीं मेजर केसेस में जो लोग आपसे नफरत करते हैं उनके जो ज्यादातर केसेस में यही रीजन होता है। तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि भाई ये जो नफरत होती है, डिसलाइक करना होता है, ये हकीकत में डिसलाइक होता नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। फिलहाल ये थे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट, आई होप आपको पसंद आएंगे और मुझे काफी सारी चीजें आपसे शेयर करनी थी। और भी कई सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है जो कहीं ना कहीं आपका दिमाग हिला के रख देगी, लेकिन फिलहाल वक्त ने इजाजत दे दी है। मिलेंगे आपसे कल यानी शनिवार को लेके आपका हेल्थ प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी, जिसमें हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की, कौन सी है उसको जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा हमारे कल का शो स्वास्थ्य संगनी जो कि आता है 12 बजे से 1 बजे के बीच। छोड़ जाते हैं आपको इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ। आशा करते हैं कि आप सब खुश होंगे, अच्छे से अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा रहे होंगे और आज के प्रोग्राम को आपने इंजॉय भी किया होगा। इंजॉय किया है तो जल्दी से फीडबैक हमें ज़रूर दें।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर ले और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई। मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात उठाने वाले हैं, किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। 10 से 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करेंगे सेहतिया भैया, स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद आकांक्षा जी।
2: जी
3: देखिए, जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलझ सकता है। इसलिए इस उम्र में सही बातें जानना और समझना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भैया। वैसे किशोर अवस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
3: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड शुरू हो जाती हैं। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर पड़ेगा ही, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा, ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
2: भैया जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए।
3: देखिए आकांक्षा जी,
2: जी
3: कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती ही होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर ना लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी ही चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझ कर होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार भी है, ये समझना ही असली समझदारी है।
2: क्या बात है, अगर किसी किशोरी को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे क्या करना चाहिए भैया?
3: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए, अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
2: जी और सेहतिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बनती हैं, जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत, मर्द बन, का बोझ रहता है, ऐसे ऐसी बातें। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधा कितनी जरूरी है।
3: बिल्कुल आरजे आकांक्षा जी, चाहे गांव हो या शहर, ऐसे सोच वाले व्यक्ति हर जगह मिलते हैं। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई। लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
2: बिल्कुल भैया,
3: जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे। इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बातें सुननी है और उनका साथ भी देना है।
2: जी भैया, और हम देख रहे हैं कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है क्या?
3: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का भी खतरा हो सकता है। फिर लड़की की पढ़ाई, कैरियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं, जिंदगी बस घर गृहस्थी तक ही सिमट जाती है।
2: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से चोरी छुपे गर्भपात करवा लेती है, ये कितना खतरनाक होता है भैया।
3: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी बहुत जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है।
2: बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं, किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ रहा है?
3: किशोरावस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं, वे बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है, कंडोम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वे कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होते। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए तो वे अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
2: जी भैया, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बातें की, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कतें क्यों बढ़ रही हैं?
3: देखिए आकांक्षा जी, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है और ऊपर से समाज की उम्मीद कि तू लड़का है, रो नहीं सकता, तू लड़की है, समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं।
2: बेशक
3: कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाजत नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा, धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती हैं। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रह, ऐसी बातें मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
2: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सकें?
3: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़की को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
2: बिल्कुल सही भैया, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या गर्भ से बचने के लिए उपाय गर्भ निरोधक की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
3: एकदम दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं, तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्टिव इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं है और वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो जाए, तो उसकी पढ़ाई, कैरियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है। उस लड़की की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कंडोम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैसे काम करती हैं, या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा।
2: लेकिन भैया, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया बताया तो वे कहीं गलत रास्ते पर न चले जाएं। इस पे क्या कहना है आपका?
3: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया, तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो, तो वे खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
2: सेहतिया भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी पहल हुई है?
3: बिल्कुल आकांक्षा जी, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
2: आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधा मिलती है? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प है, ये भी बता दीजिए।
3: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है
2: जी,
3: वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKSK बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक। ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं, जहां किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टरों या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूरण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है, ताकि उनमें खून की कमी ना हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना। इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों से सेहत की बातें कर सके।
2: अच्छा भैया, ऐसा है क्या?
3: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा जो कक्षा 10 में पढ़ती है, RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है, ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड संभाल सके। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी, जिससे इन्फेक्शन हो जाता था। अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोरों के लिए ही नहीं, बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वे सभी की मदद बिना भेदभाव के करें।
2: जी भैया, अगर RKSK जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंचाए जाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त नहीं होंगे, बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे।
3: बिल्कुल आकांक्षा जी, एक और बढ़िया योजना है
2: जी,
3: ARSH। इसका मतलब है एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं, इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
2: या तो बहुत बढ़िया है भैया।
3: हाँ, अब सरता की आप बीती आपको सुनाता हूँ।
2: जी।
3: 14 साल की सरता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरता और उसकी सहेलियाँ नजरें चुरा लेती थी, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKSK योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए, कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। उस दिन की बातें सरता के दिल और दिमाग में घर कर गईं। अब सरता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
2: बिल्कुल भैया, जब कोई इतनी गंभीर बात हो, खासकर सेहत को लेकर, तो बिल्कुल खुलकर ही बात करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करने से अपना ही नुकसान होता है, दूसरों का भी नुकसान होता है।
3: सरता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन ही नहीं करता, चक्कर आते रहते। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र गई तो वहाँ मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उसकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता ना चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
2: मतलब ये सारी योजनाएं सच में जमीनी तौर पर असर कर रही हैं।
3: और सुनिए
2: जी,
3: सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लेकर आई थी। लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली, अब ज्यादा पढ़ाई लिखाई का क्या ही फायदा, लड़की तो घर ही संभालेगी ना। रीता ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल से पहले शादी करना न सिर्फ कानूनन गलत है, बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने यह भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग देती है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है।
2: वाह भैया वाह, मतलब जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिले तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
3: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और ना ही वे पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना जरूरी है।
2: बिल्कुल सही भैया। तो दोस्तों, ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुली होगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले हम लेंगे अपनी शपथ।
0: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे
4: शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई।
4: सेहत सही तो लाभ कई।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आरजे अंशिका। कैसे हैं आप सभी भाई, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो जिसका नाम है
2: सुन सहेली
1: विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। एंड प्यारे से मौसम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने शो। भाई सहेलियों का शो है तो कुछ तो बात होनी चाहिए, कुछ ऐसी वैसी बातें भी होनी चाहिए, कुछ छेड़छाड़ वाली बातें होनी चाहिए, कुछ अनबन वाली बातें होनी चाहिए, कुछ लड़ाई झगड़े वाली बातें होनी चाहिए।
3: लड़ाई झगड़े वाली
1: जो मैं तुमसे रोज करती हूँ।
3: रोज करती है?
1: Okay. मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो जाती है, और जब मैं नहीं होती हूँ तो तुम बहुत पटर पटर बोलती हो। मतलब ये एक लड़ाई वाला ही सेक्शन हुआ, मुझे लड़ाई के लिए कुछ पॉइंट चाहिए था तो मैं
3: वो मिल गया है।
1: मैंने ढूंढ लिया। okay. क्योंकि कल का शो मैंने सुना, तुम्हारी बहुत पटर पटर हो रही थी, और अभी जब मैं बैठती हूँ तो तुम्हारी पटर पटर बंद हो जाती है, ऐसा क्यों? जल्दी से जल्दी बोलो, इतना कोई सामने नहीं है, लिसनर्स वेट करते हैं। इतना जल्दी
3: नहीं मैम, ऐसी कोई बात
1: इतना
3: नहीं।
1: हम टीवी स्क्रीन पे नहीं है कि आपके एक्सप्रेशंस देखे जाएंगे, हमारी आवाज जा रही है।
3: यस मैम, आवाज जा रही है, और ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है।
1: तो क्या है ऐसा?
3: कुछ भी नहीं है ऐसा, मतलब आवाज निकलती है, मैं आपके साथ भी तो बातें करती हूँ।
1: पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लिसनर्स भी कहते हैं कि समता मैम जब होती हैं तो अंशिका बहुत चुप हो जाती है, ये वो, तो ये नाटकबाजी क्यों चल रही है?
3: कोई नाटकबाजी नहीं है मैम, और चुप कहाँ हो जाती हूँ, मतलब मुझे तो लगता है कि मैं बोलती हूँ, बराबर बोलती हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि
1: तो भाई देखिए, मुझे तो लड़ाई करनी थी और मुझे पॉइंट मिल गया, और अच्छे से मैंने लड़ाई कर भी ली। तो आप
3: लड़ाई में मजा आया कि नहीं,
1: आप बताएं कि मतलब कल वाले शो की जो मेरी सुबह की ग्रेटिंग गई है ना अंशिका, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको टाइम मिला होगा अपनी बकवास से परे होकर के तो आपने देखा होगा, बट बहुत ही बढ़िया सी रेटिंग थी कल मेरी मॉर्निंग की। मतलब जितनी दिनों के बाद मैंने किया तो काफी लिसनर्स मुझे मिस भी कर रहे थे, तो बहुत मजा आया मॉर्निंग में, तो बहुत मजा आया। और चलिए फिर अभी वाला शो हम शुरू करते हैं, आपका पसंदीदा शो, एक साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं, आइए हम दोनों क्या
3: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और आ गए हम और फिर से आपसे बातें करने के लिए, फिर से इसलिए क्योंकि कल हम गए थे और आज हम वापस आ गए हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है वो सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है, क्योंकि आज का हमारा डे भी ब्यूटीफुल है, यानी कि फ्राइडे
1: आज वाकई में ब्यूटीफुल है ना?
3: क्या मैम?
1: मतलब आज वाकई में ब्यूटीफुल डे है, आज
3: ब्यूटीफुल डे है, और मैं ये भी समझ रही हूँ कि आपका इशारा कहाँ था।
1: क्या
3: आप भी ब्यूटीफुल लगती
1: हैं? मतलब आज ही लग रहे हैं क्या? वैसे नहीं लगते हैं क्या हम?
3: नहीं, वो तो रोज लगती है, मतलब आज इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि आज हमारा डे ही ऐसा है।
1: नहीं, आज डे ऐसा नहीं है, आज मैं जब कॉलेज आई थी सुबह को तो मुझे कुछ लोगों ने भी बोला, तो मैं बता दूं कि ना हम लोगों में जैसे एक मतलब एक मान्यता होती है कि जब जुम्मा होता है ना तो उस दिन ढंग से ना आया जाता है।
3: ओके।
1: हम लोगों में मतलब हमारे कस्टम में, ठीक है
3: मैम।
1: तो यानी वैसे भी सब लोग नहाते हैं, बात नहीं है, वैसे भी गर्मी आए सभी अच्छे से नहाते हैं, पर मुझे लगता है कि जब हम अच्छे से नहाते हैं ना, अच्छे से बाल बाल धुल लेते हैं तो वो खूबसूरती और बढ़ जाती है, तो बस यही कारण है और कुछ नहीं है। जबकि आज तो थोड़ी सी तबीयत अच्छा, पता है हम लोग जब बोलते रहते हैं ना, हम बहुत वीक फील कर रहे हैं, हमारी तबीयत नहीं अच्छी है, ये है वो है, तो पता है वो सेंसेशन ना हमारी बॉडी में होने लगती है,
3: वो फील होने लगता है,
1: वही कमजोरी ऐसी लगेगी कि अभी बस गए काम से,
3: गिरे
1: अभी
3: बच्चे नहीं,
1: चल नहीं पाएंगे। और जहाँ आपने ये अपने आप को देख करके ये बोल दिया यार मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कोई ऐसी वीकनेस नहीं है, कुछ नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, तो फिर क्या होता है पता है, फिर आप वैसा ही फील करने लगते हैं। इसलिए मैं स्पेशली महिलाओं से यही निवेदन करती हूँ कि आप अपने आप को शीशे में जरूर निहारा करें और ये कहा करें, आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल, एंड एक लाइन और, ऑल इज वेल, हमेशा से बोलना चाहिए ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक होगा।
3: बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा, सही होगा, जबरदस्त होगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और लिसनर्स फटाफट से चलिए आपको बता देते हैं कि जैसे कि अभी हमने बात की ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, ये कई सारी चीजों को लेकर के हो सकता है, तो आप फटाफट से सोचिए कि क्या आपके साथ भी इस तरह की चीजें होती हैं।
1: बिल्कुल, और मुझे भी लगता है कि हम लोगों ने ना जो अभी एक बात उठाई है तो उसको थोड़ा और कंटिन्यू कर देते हैं, फिर हम लोग पोयम पढ़ेंगे, ठीक है?
3: जी मैम।
1: तो क्या है कि अच्छा अंशिका, मैं आपसे सच्ची सच्ची बताना, क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत सोचती हूँ।
3: ओके।
1: तो क्या मतलब मेरा सोचना सही है कि नहीं है, वो समझ लो एक एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम भी हम आपका लेने वाले हैं।
3: ओके।
1: क्या ऐसा आपके साथ भी होता है कभी कभी जब आप सोच लेते हैं कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, तो क्या बॉडी में सचमुच में सेंसेशन होने लगता है कि मेरे साथ केवल हो रहा है?
3: नहीं, अगर आप डीप जाकर किसी पॉइंट को सोचते हैं, जैसे अगर हमें एक बार हल्का सा सोचा कि पेट में दर्द हो रहा है, उसके बाद हमने उसको इग्नोर मार दिया कि मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम बार बार जैसे कि आप 3 से 4 बार 5 बार उसी चीज को सोचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको बॉडी में फील होने लगेगा
1: और वो हो जाता है।
3: ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है।
1: आपने तो साइकोलॉजी ली हुई है ना, मैं कुछ और जानना चाहती हूँ। जैसे कल कुछ ऐसी घटना हुई, मतलब कुछ ऐसी बात हुई कि उसका असर ना मैंने दिल तक सोच लिया था, और उसके बाद में जब सोचने के बाद ये हुआ कि वो घबराहट, वो डर, वो अपने आप में ना मेरी बॉडी पे उसने फील कर लिया। तो फील कर लिया तो उसका जो असर है ना वो आज मॉर्निंग में दिखा मुझे। तो क्या ये सोचने का असर है, मेरी मतलब मानसिक स्थिति का असर है, या फिर उन महिलाओं के लिए मैसेज हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं।
3: जी।
1: तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब सोच से हुआ कि रियल में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसके कारण से ऐसा हुआ।
3: आपने बताया ना कि कोई ऐसी चीज हुई
1: जिसकी
3: वजह से आपने सोचा
1: हाँ।
3: तो सबसे पहले तो वो ट्रिगर हुआ। ट्रिगर होने का मतलब होता है कि हमारे साथ दिन भर में कोई भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया।
1: हाँ, बिल्कुल।
3: वो ट्रिगर हुआ, वो आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ कि आप रोज नहीं चिल्लाते हो, मतलब कोई भी इंसान रोज नहीं चिल्लाता
1: है,
3: लेकिन एक दिन आप गुस्से में मतलब बहुत तेज वाले गुस्से में किसी से लड़ाई करके देखिए, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लड़ाई करिएगा, इन द सेंस ये कि अगर हो जाती है कभी, उसके बाद आप फील करिए कि पूरी बॉडी कांपती है। अगर इंसान वैसा नहीं होगा,
1: आपके साथ ऐसा होता है?
3: हाँ।
1: तो इस पे मुझे एक बात बोलनी है। मैं एक बार इंस्टाग्राम पे मैंने रील देखी थी कि जिन महिलाओं की लड़ाई करने के बाद अगर मतलब जैसे कुछ बोल देने के बाद बॉडी कांपती है या फिर दिल कांपता है, हाथ कांपते हैं ना, तो यानी कि उनके संस्कार बहुत अच्छे दिए होते हैं, उन्हें लड़ाई की आदत नहीं होती।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ यही पॉइंट निकल करके आता है कि हमारी बॉडी को हैबिट नहीं होती है।
1: हाँ।
3: क्योंकि कोई इंसान डेली तो चिल्लाता नहीं है, हम नॉर्मल बात करते हैं। ये तब होता है जब हमारी चीजें ट्रिगर हो जाती है। मान लीजिए आप बहुत शांत हैं, बहुत आराम से हैं, किसी ने आपका कोई पीक पॉइंट ट्रिगर कर दिया।
1: हाँ।
3: कुछ कह दिया, कुछ भी, एनीथिंग, या ये सॉन्ग भी हो सकता है, कोई टुकड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कागज की सीधी साफ डायरी देख कर भी चीजें याद आ सकती है, या कोई इंसिडेंट हो सकता है जैसा अभी मैम ने बताया। तो वहां पे बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी बिल्कुल ठीक है, आपकी सोच भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कि वो पॉइंट ट्रिगर हुआ और आपने उस पॉइंट पे रिएक्शन दिया, उसका रिएक्शन आपकी बॉडी को हुआ।
1: हाँ।
3: हम चिल्लाए, हमने चिल्ला के बात की, उसका रिएक्शन हमारी बॉडी को हुआ कि हमारी बॉडी कांपी, ना कि हमारी बॉडी में कोई ऐसी
1: प्रॉब्लम
3: है कि बॉडी कांप रही है।
1: नहीं,
3: वो उस ट्रिगर होने का रिएक्शन हुआ।
1: और एक बार और होता है कि जब जिस दिन हम लोग बहुत खुश होते हैं ना, उस दिन हमारा चेहरा, उस दिन हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है, और जिस दिन अगर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, हम लोग खास करके महिलाएं, हस्बैंड से हो जाता है, बच्चों से हो जाता है, तो हमारी बॉडी और हमारा फेस वो बयां करता है।
3: Yes,
1: वो बयां करने लगता है ना। तो ये इसीलिए पूरा ज्ञान हम लोगों ने दिया क्योंकि ना हम लोग अपने आप को टेस्ट कर रहे थे। अंशिका टेस्ट कर रही थी मेरे माध्यम से और मैं टेस्ट कर रही थी अंशिका के माध्यम से।
3: एक बार
1: तो हम लोग दोनों लोग बहुत फिट एंड फाइन हैं। ये सिर्फ कभी कभी जैसे अंशिका ने कहा कि जब हम किसी के द्वारा ट्रिगर हो जाते हैं, इन द सेंस कि हम जब हर्ट हो जाते हैं, ये तभी मामला सामने आता है।
3: बिल्कुल। वरना कहते हैं ना कि किसी किसी को आपने सुना होगा किसी किसी इंसान पे ये कि अरे वो बहुत शांत रहती है, लेकिन कभी शांत इंसान को आपने देखा होगा बहुत ज्यादा एक लाउड वे में।
1: हाँ।
3: तो वो तभी होता है जब कोई पीक पॉइंट को ट्रिगर करता है।
1: बिल्कुल।
3: जैसे कोई बात है जो आपको नहीं पसंद है लेकिन फिर भी आपसे कह दी जाती है। और रही बात ये कि हाँ, जब हम खुश होते हैं तो हमारी फेस पे ग्लो दिखता है, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का स्राव बहुत ज्यादा होता है, और वो ऑटोमेटिकली एक ग्लो निकल करके आपके फेस पे आता है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। कभी आप खुश होकर देखिए कि अगर आपके सामने सूखी ब्रेड भी रखी होगी तो आपको बड़ा मजा आएगा, अरे यार ब्रेड बड़ी कुरकुरी है। क्यों? क्योंकि आप खुश हैं, आप मेंटली भी खुश हैं और वो आपकी बॉडी फिजिकली उसको दर्शा भी रही है कि आप खुश हैं। कभी आपने देखा होगा कि जब आप बहुत खुश होते हो, किसी इंसान से मिलते हो, कोई बहुत अच्छा होता है आपकी लाइफ में, खुशी देने वाला होता है, तो हम बिल्कुल बाहें फैला के मिलते हैं, उससे गले मिलते हैं, उसके साथ हंसते हैं, बातें करते हैं, तो वो एक दिखाता है कि हाँ ये खुश है।
1: बिल्कुल,
3: वो आपकी बॉडी भी ऐसी चीज़ों को मूवमेंट करती है कि आप देखते हो कि हाँ हम खुश हैं। कभी हम दुखी होते हैं तो सामने अच्छी से अच्छी आपकी कोई फेवरेट डिश भी रखी होती है तो नहीं मन करता, अरे हटाओ यार नहीं मैंने नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि हम दुखी होते हैं और जब हम दुखी होते हैं तो हमारी बॉडी कोई भी काम नहीं करना चाहती है, ना हमारा माइंड करना चाहता है।
1: बिल्कुल,
3: कभी इस बात को आप आजमा के देखिए कि बहुत सैड है, आप किसी से लड़ करके आए हैं, कुछ मन नहीं करेगा उस टाइम करने का, यही मन करेगा कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ देर अकेले रहना है, क्योंकि वो उतना टाइम हमारी बॉडी को खुद को हील करने में लगता है,
1: हील करने में लगता है। तो सबसे पहले हम एक चुटकुला सुनाएंगे ताकि हम लोगों का जो अभी ये
3: ज्ञान है वो
1: मैनेज, थोड़ा सा मैनेज हो जाए, और उसके बाद फिर हम आपको आज की पोयम बताएंगे। तो एक पप्पू था, वो छोटा था, उसका नाम पप्पू था, नन्हे पप्पू। वो स्कूल में उसके कुछ कॉम्पिटिशन थे, ठीक है, कॉम्पिटिशन थे, तो उसका एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए उसकी दादी ने कहा और जोर से आवाज में बोला कि पप्पू तुम उस कॉम्पिटिशन में जरूर भाग लेना, ठीक है, तुम जरूर भाग लेना, तुम पप्पू तुम जरूर भाग लेना, ठीक है, ये दो तीन बार बोला। तो उसने पप्पू ने बोला ठीक है दादी, और पप्पू मुस्कुराकर वहां से चला गया। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, वो वहां से जोर से भाग गया। फिर उसके सर ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मेरी दादी ने कहा था कि जैसे प्रतियोगिता शुरू होगी तुम जरूर भाग लेना। समझ में आया।
3: वो भाग गया और उनका भाग लेने का मतलब दूसरा था।
1: तो ऐसे ही हमारी सोच होती है, क्योंकि एक शब्द के कई मायने निकलते हैं, है ना।
3: बिल्कुल।
1: तो चलिए अब हम आते हैं अपनी आज की कविता पर, क्योंकि आज है ब्यूटीफुल सा डे फ्राइडे, और उसकी कविता के बाद में हम आएंगे रियल फैक्ट्स पे, और उसके बाद हम लेंगे छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक।
3: तो आज हमारी पोइट्री जो है वो ब्यूटीफुल डे है, तो आज कुछ खूबसूरती पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। खूबसूरती क्या होती है, एक्चुअल एक जो खूबसूरती होती है, ब्यूटी होती है, वो क्या होती है, ये हम आपको बताएंगे।
1: क्या होती है वैसे?
3: मुझे तो लग

0: तो मिक्स हो जाती है, मतलब हर सब्जी के साथ वो मिक्स हो जाती है। बेचारा इतना सीधा साधा रहता है और उसको हर हर
1: क्या करे मैम,
0: क्या हुआ,
1: सीधे साधे लोगों को ही लोग परेशान करते हैं।
0: जैसे अंशिका,
1: नहीं
0: मतलब यही
1: नहीं,
0: था।
1: नहीं, मेरा ये
0: मैं
1: मतलब
0: आलू हूँ और ये बैगन है, इसके कहने का मतलब
1: ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। ये तो अर्थ का अनर्थ निकाल
0: दिया, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो चलिए अब टाइम हो गया खूबसूरत सी एक कविता को पढ़ने। तो कविता हम पढ़ते हैं, बाहरी चमक तो ढल जाएगी, बाहरी चमक तो ढल जाएगी, समय के साथ बदल जाएगी, असली खूबसूरती तो वो नूर है जो मन के आईने में चुर है। मतलब चुर का मतलब पता है, छिपी हुई है।
1: ओ
0: सादगी में जो बात है वो महंगे लिबास में कहां, सादगी में जो बात है वो महंगे लिबास में कहां, हंसी जो दिल से निकले उसकी चमक आसमान में कहां, हंसी जो दिल से निकले वो आसमान में चमक में कहां।
1: नैन नक्श तो रब की देन है, नैन नक्श तो रब की देन है, पर आचरण खुद बनाना है।
0: वो मेरा बना हुआ है।
1: हाँ,
0: आप गुस्से वाला,
1: गुस्से वाला ये
0: अंशिका नहीं कहेगी आज, क्योंकि हम इसके बगल में बैठे हुए हैं ना, इसलिए नहीं कहेगी।
1: नहीं मैं नहीं क्यों कहूंगी, मतलब अगर
0: अगर खराब है तो कह सकती है ना।
1: मैं ये कहूंगी कि प्यार वाला गुस्सा मैं नहीं क्यों कहूंगी।
0: नहीं नहीं, आप मेरी बुराई कर सकती हैं, मुझे वो लोग ज्यादा पसंद हैं जो मुंह पे बोल रहे हैं।
1: नहीं मैं पीठ पीछे भी नहीं करती हूँ,
0: ठीक है, क्योंकि पीठ पीछे हम तब भी तो हम सुन ही लेंगे ना, मेरी पीठ पीछे बोलोगी तो
1: क्या फायदा। अगर मुझे दोनों तरफ से जाना है तो फिर इससे अच्छा तो मैं सीधे से जाऊँ ना, क्यों लिसनर्स। वैसे चलिए आगे पढ़ते हैं, विचारों की सुंदरता ही रूप को अमर बना देती है।
0: लास्ट की चार लाइन फिर से पढ़ो।
1: ओके, नैन नक्श तो रब की देन है, पर आचरण खुद बनाना है।
0: हाँ।
1: विचारों की सुंदरता ही रूप को अमर बना जाना है, आचरण की सुंदरता से ही रूप को अमर बना जाना है।
0: अब आपको पता है एक इस पे मुझे और चीज याद आ गई कि सूरत से सीरत भली, सूरत से सीरत भली। सूरत का मतलब क्या होता है,
1: सूरत का मतलब होता है आपका
0: हमारा चेहरा,
1: चेहरा,
0: और सीरत का मतलब होता है हमारा आचरण, हमारा व्यक्तित्व, ठीक है। तो सूरत से सीरत भली, जिसकी सूरत भी बेकार हो, जिसका जिसकी सीरत भी बेकार हो, ऐसे कुछ लोग हमारे आसपास हमारे हमारे आसपास के जहन में रहते हैं।
1: तो चलिए अब हमने जैसे अभी बताया ना कि ये तो थी सुंदरता के ऊपर, अब आते हैं व्यक्तित्व को निखारने के ऊपर कि आपकी व्यक्तित्व को आप निखारते कैसे हैं। तो आज उसके लिए कुछ चार लाइनें हैं मेरे पास, मैं पढ़ना चाहूंगी। मैम मैं सुनाऊं?
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: ओके तो ये इसका जो शीर्षक है वो है गढ़ो खुद को, भीड़ में खो जाना आसान है, अपनी पहचान बनाना मुश्किल, व्यक्तित्व ही वो आईना है जिसमें दिखे इंसान का दिल, किताब पढ़ो तजुर्बे सीखो, सोच को अपनी ऊंची कर लो, लफ्जों में हो मिठास इतनी सुनकर हर कोई अपना कह दे, ना डरो गिरकर संभलने से, ना डरो खुद को बदलने से, निखारो अपने हुनर को ऐसे जैसे जैसे खुशबू फैले जैसे चंदन से।
0: बहुत बढ़िया। तो चलिए अंशिका, हमारी आज की पोयम बहुत ही खूबसूरत है, और अभी तक हमारे लिसनर्स जो हैं वो मुझे चैट बॉक्स में दिख रहे हैं, केवल मुस्तफ़ा सौदी जी एंड आज कोई नाम से आया है, आज मतलब नाम अच्छा है ना आज, और अनुष्का जी आ गई हैं, और बाकी लिसनर्स भी आ जाएं तब तक। एंड सभी का दिल से थैंक यू यार, जो हम लोगों को फ्रिक्वेंसी में सुनते हैं, जो हमें रेडियो गार्डन से सुनते हैं, एंड जो हमें सुनते हैं लेकिन जो मैसेज नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, उनका भी दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे सीधे सीधे हम आपसे बात करेंगे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, और बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जो कि आज आप सुनेंगे ना तो बिल्कुल झूम ही उठेंगे। मतलब आज की जो फीमेल्स हमारी जो है ना वो सुनेंगी तो मतलब कहेंगी कि आप लोगों ने ना हमारे हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स को ना फिर से जीवित कर दिया है, ऐसा वाला कुछ है, ठीक है। तो बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।
2: पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है,

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ साथ में अंशिका भी एंड साथ साथ में कमल नयन भी और साथ साथ में प्रबल मिश्रा भी
4: और साथ साथ में कुछ लेकर भी आए हैं।
0: साथ साथ में अगर कोई चाय और अगर पकौड़ी ले आता या तो फिर चाय नहीं मट्ठा मिल जाता यार, मट्ठा इस समय गर्मी है ना, मट्ठा मिल जाता, बेल का शरबत मिल जाता या फिर वो सत्तू वाला मिल जाता और उसके साथ में सिंपल से बिस्किट भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई तो लेके आता है।
4: अभी मैं बात कर रही थी ना ट्रिगर होता है, तो यहाँ भी ट्रिगर,
0: ये मैंने ट्रिगर कर दिया इनके। वैसे ये क्या बुखारों की लिस्ट में सबसे पहले ऊपर है
4: तो वो भूख जो थी वो ट्रिगर हो गई,
0: खेलों की लिस्ट में सबसे ऊपर इनका नाम है।
4: खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे,
0: खाएंगे नहीं तो हम लोग चलेंगे कैसे। कुछ लोग ना जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं,
4: तो
0: वैसे यही है ना अंशिका, हम लोग जीने के लिए खाते हैं।
4: हाँ मैम,
0: हम लोग खाने के लिए नहीं जीते,
4: खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते,
0: जीने के लिए खाते हैं, है ना।
4: बिल्कुल,
0: कि नहीं खाएंगे तो हम लोग का फिर क्या होगा,
4: कैसे काम करेंगे बताइए, हम आपसे बात कैसे करेंगे, खाएंगे नहीं तो एनर्जी नहीं रहेगी।
0: पता है कभी कभी तो ये मंजर हो जाता है आजकल की, अगर भूख नहीं भी लगी होती है ना तो जबरदस्ती
4: खाना पड़ता है। और वैसे भी गर्मियों में क्या होता है ना कि भूख कम हो जाती है,
0: मतलब प्यास लगती है,
4: कम लगती
0: है, ज्यादा वाली प्यास, मतलब कि अगर पानी भी पीना है ना तो कुछ खा करके तब हम लोग पानी।
4: हाँ
0: चलिए, तो आते हैं कम टू द पॉइंट, और हमारे आज के पॉइंट बहुत ही ब्यूटीफुल से हैं, वन बाय वन हम सब आपको बताने वाले हैं। तो हम सोच रहे हैं पहले अपना आज के टॉपिक को लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
4: ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है पहले हम उसे लेते हैं और फिर हम आपको आज रियल लाइफ फैक्ट्स भी बताएंगे। तो टॉपिक हमारा पहला जो है वो है ये है कि देखिए टॉप कहते हैं ना कि यू शुड टू मूव ऑन, एक लाइन दी जाती है, लेकिन जितनी सिंपल ये लाइन होती है कि यू शुड,
0: मुझे भी किसी ने ज्ञान दिया था अभी कुछ दिन पहले जो मेरे बगल में बैठी है।
4: ओके, उतना ही मुश्किल भी होता है। तो आज हम उस पे बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि किसी के लिए भी अपने अतीत को, यानी कि जो भी आपके पास्ट में हो चुका है, चाहे
0: बुरी यादें,
4: बुरी यादें हाँ, उसे गिव अप करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि देखिए दिमाग कोई कंप्यूटर तो होता नहीं है कि हमने डिलीट किया और बाकी
0: काश डिलीट का ऑप्शन होता, ये ब्लॉक की जगह डिलीट का ऑप्शन होता तो कितना अच्छा होता ना।
4: हाँ मैम, बट ऐसा होता नहीं है, वो करना पड़ता है
0: कहीं ना कहीं ना, वो डस्टबिन में, जैसे नहीं फोन में डस्टबिन हाँ। होता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम गैलरी से डिलीट कर देते हैं ना, लेकिन हम लोगों के ना दिमाग की गैलरी में रहता ही रहता है।
4: बिल्कुल, आज उसे डिलीट करने के लिए नहीं बट इतना धुंधा कर देने के लिए कि वो आपको परेशान ना करे, हम कुछ टिप्स और टेक्निक्स बताएंगे।
0: ओके, मुझे तो ज्यादा जरूरत है इन सब चीजों की।
4: आपको कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। सबसे पहला यही पॉइंट है हमारा, जो भी मैम ने कहा ना कि मुझे जरूरत है, तो सबसे पहले यही पॉइंट हटाना है कि हमें कोई नीड नहीं है,
0: हमें कोई नीड नहीं है,
4: आई एम वेल। देखिए एक थिंकिंग होनी चाहिए, चाहे वो वुमेन हो या मेन हो, दोनों में अगर कोई चीज परेशान कर रही है तो एक थिंकिंग होनी चाहिए, आई एम इनफ।
0: ओके,
4: अगर ये थिंकिंग अगर आप एक बार अपने अंदर डेवलप कर लेंगे ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार जब हम परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो हमें लगता है यार कोई सुन लेता, कोई बात कर लेता, कोई बैठ जाता, लेकिन जिस दिन आप में ये थिंकिंग डेवलप होगी कि आई एम इनफ, उस दिन आप किसी से बात नहीं करना चाहोगे, अपनी प्रॉब्लम भी आप खुद से शेयर करोगे कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, और फिर धीरे धीरे आप खुद को हील करना खुद ही सीख जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये टेक्निक बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हर बार हमारे पास कोई इंसान नहीं होगा हमें हील करने के लिए। एक बात और बताऊं कि जितने अच्छे से आप खुद को हील कर सकते हैं, उतने अच्छे से कोई आपको हील नहीं कर सकता। अगर टूटने की ताकत हमारे अंदर होती है तो खुद को समेट लेने की एक बहुत ही अच्छी सी हैबिट भी हमारे ही अंदर होती है, वो डेवलप करनी चाहिए। और उसे डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने आप को माफ करें। कई बार हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, हमें हमेशा ये गिल्ट बना रहता है कि हमारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं कुछ ना कुछ हमारी भी गलती थी। तो सबसे पहले तो वो चीज़ को हटाना होता है कि आपकी कोई गलती हो सकता है हो, तो खुद को माफ़ कर दीजिए कि कोई बात नहीं, मेरी गलती थी और मैंने अपने आप को माफ़ कर दिया है उन गलतियों के लिए और अब मुझे आगे बढ़ना है। ये एक सोच भी होनी चाहिए कि अब मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए पीछे के जो पास्ट बैगेज होते हैं उन्हें हटाना पड़ता है।
0: और अगर अपनी गलती हो ही ना,
4: अगर
0: ये मन, अगर दिल ये मान ले कि अपनी गलती ना हो, दूसरे की गलती से हम हर्ट हुए हैं, तो फिर क्या होना चाहिए?
4: अगर आपकी गलती नहीं है तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है आपके लिए, क्योंकि तब आपका बाहर निकलना बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया। हमें हमारी आत्मा के अंदर पता होता है कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। आप दूसरे से लाख झूठ बोलिए, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, नहीं नहीं मेरे मन में कुछ नहीं, बट आप तो अंदर जानते हो ना कि आपके दिल में क्या है। अगर हार्ड फीलिंग है किसी के लिए तो हम वो भी जानते हैं कि वो इंसान मुझे नहीं पसंद है। अगर सॉफ्ट फीलिंग है तो वो भी हम जानते हैं कि अगला इंसान मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। कहने का सेंस ये है कि सबसे पहले आपको अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि जो कुछ भी हुआ, जो भी घटा, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ये बहुत अच्छी बात है। अपने आप को यकीन दिलाइए कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, जो हुआ है वो किसी और की वजह से हुआ है, और किसी और की वजह से खुद को पनिश करना बहुत गलत होता है, क्योंकि तब आप अपने आप को सजा दे रहे हैं और बेवजह की दे रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया है ना, लेकिन हम देते हैं खुद को। देखिए, ये कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ मैं कि बहुत इजी होता है। साइकोलॉजी में ये कहना होता है कि जिस दिन हम मान लेते हैं उस दिन हम कर लेते हैं। हम सिर्फ तब तक नहीं कर पाते जब तक हम मानते नहीं। और एक बात और बता दूं कि जब किसी के लिए हमारे मन में कोई पॉजिटिव कमेंट निकलता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा वो बहुत अच्छी है, तो वो दिल से निकला। लेकिन जब हम किसी की बुराई करते हैं या किसी के लिए कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं तो वो आपके दिमाग से निकलता है। ये साइकोलॉजी कहती है कि जब आप कुछ बुरा कहेंगे तो दिमाग से कहेंगे और अच्छा कहेंगे तो दिल से कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो सारी आपके दिमाग की उपज होती है।
0: और कहा जाता है ना कि जो दिमाग होता है वो हमारे दिल को, मतलब जो दिल होता है ना वो हमारे दिमाग को कहता है कि भाई ऐसा मत करो। लेकिन दिमाग जो होता है ना दुष्ट होता है, वो ये कहता है दिल तुम चुपचाप बैठो, मुझे पता है कि इसने मेरे साथ क्या किया है, क्यों किया है या कुछ भी हो।
4: बिल्कुल,
0: है ना। तो ये जो सारा खेल होता है ना, जब कहते हैं ना लोग कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया या फिर प्यार में धोखा मिला, तो ये सारी उपज दिमाग की होती है। अगर दिल से सोचा जाए तो कभी कोई किसी को हर्ट करे ही नहीं।
4: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जिसे कहते नहीं है ना कि एक लैंग्वेज कही जाती है जहर जहर को मारता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने अतीत को गिव अप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने दिल को हटाकर सिर्फ और सिर्फ दिमाग से सोचना होगा। आप देखिएगा, जिस दिन आप अपने आप को, अपने दिल को हटाकर दिमाग से सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आप मूव ऑन कर पाएंगे। हम क्या करते हैं कि हमारा दिल हमें जिस तरफ कहते हैं ना, दिल जिस तरफ ले जाता है इंसान उस तरफ खिंच जाता है। लेकिन वहाँ आपको दिमाग से सोचना है।
0: दिमाग से सोचना।
4: देखिए, चलिए मान लेते हैं एक बार के लिए कि हम उस रिलेशनशिप में या कुछ भी है, आपके मम्मी पापा के साथ आपकी नहीं बनती है, अतीत में कुछ अनबन हुई होगी, लेकिन फिर भी आप अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहते हैं। हम इसे इस तरह ले लेते हैं, लेकिन हम नहीं रह पाते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि धागे में अगर एक बार गांठ पड़ गई तो पड़ गई, आप खोल नहीं पाओगे उसे। और ये कोई बुरा मानने वाली भी बात नहीं
0: है। तो आजकल तो जमाना ये है कि अगर हम लोग किसी को कहते हैं ना कि धागे में अगर एक मोतियों की माला है वो बिखर गई और धागे में फिर एक नॉट पड़ गई, तो पता है दुष्ट लोग क्या कहते हैं, हम लोग नया धागा ले लेंगे उसमें फिर से मोती डाल के पिरो देंगे।
4: ये इतना आसान नहीं है।
0: हाँ
4: ठीक है, चलिए ये भी मान लेते हैं। एक पॉइंट हम ये भी लेते हैं कि मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं ना कि अरे नहीं वो बीत गई बात यार, लेकिन बीत गई इतना आसान नहीं है। मान लीजिए आप किसी अपने मम्मी पापा के साथ थे, ठीक है, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कुछ रंजिश हुई, कुछ बात हुई, आपने छोड़ दिया, हमने गिव अप कर दिया, क्या है कि आप दूसरे माँ बाप कहाँ से लाएंगे? इट्स नॉट ईजी ना। चलो हम इस तरह ले लेते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है झगड़ा हुआ या हस्बैंड वाइफ है झगड़ा हुआ और हस्बैंड ने कह दिया मैं दूसरी कर लूंगा, कोई बात नहीं तुमसे मेरी नहीं बनी। इतना आसान नहीं होता है। किसी के साथ आप 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन रह के देखिए, वो इंसान आदत बन जाता है। और जब वो आपके पास नहीं होगा तो वो कमी डेफिनेटली आपको खलेगी, आप बताओ या ना बताओ। कोई चीज हमारे पास होती है, अरे यार फोन हमारी हमारे पास होती है,
0: टूट जाती है, खो जाती है,
4: एक दिन के लिए हम कहीं रिपेयरिंग के लिए देते हैं तो फील होता है ना अरे मेरी फोन मेरे पास नहीं।
0: तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना अंशिका कि हम ऐसे रिश्तों की आदत ही ना डालें ना कि हमें पता है कि आगे चलकर वो हमें परेशान करने वाले हैं।
4: हाँ मैम, बट जब किसी के साथ आप किसी भी रिश्ते में होते हो तो उसकी आदत पड़ जाती है। आपके मम्मी पापा हैं तो उनकी हैबिट पड़ गई है, हमें हैबिट पड़ जाती है कि हम जाएंगे तो मम्मी खाना देंगी, या कुछ नहीं तो हैबिट पड़ जाती है कि घर जाएंगे तो मम्मी पूछेंगी, अगर मम्मी नहीं होती है तो वो फील होता है कि अरे यार मम्मी नहीं है। ठीक उसी तरीके से हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, अगर आप किसी के साथ दो चार महीने भी रह रहे हो तो वो इंसान धीरे धीरे हमारी एक हैबिट बन जाता है। कोई प्यार से केयर करता है तो वो हैबिट बन जाती है कि नहीं ये मत करो वो कहेंगी, या हम कहते हैं ना अरे यार ये मत करो मम्मी डांटेगी, क्यों? क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाता है। लेकिन यहाँ हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी रिश्ते से गिवअप करना चाहते हैं तो उससे गिवअप करने के लिए, अपने अतीत को छोड़ने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को समझाना होगा। और दूसरी ट्रिक होती है कि अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि ट्रिगर से दूर रहिए, वही पॉइंट मैं यहाँ भी बताना चाहूंगी कि वो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज जो आपके अतीत को ट्रिगर करती है, आपके अतीत की फीलिंग्स को, उस इंसान से जुड़ी हुई, किसी से भी जुड़ी हुई, उन सारी चीजों को सबसे पहले मिटाना होगा। क्यों? क्योंकि ताकि आपकी फीलिंग ट्रिगर ना हो। बहुत नॉर्मल एग्जांपल है, गैलरी में से फोटो डिलीट करना, अपने व्हाट्सएप पेज से हटाना, ब्लॉक नहीं करना है, हटा देना है आपको। बहुत अगर किसी को प्रॉब्लम है नंबर चेंज कर दीजिए। ये ट्रिक्स हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये इजी नहीं होता, ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगी। दूसरी बात आती है कि कई बार सब कुछ हटाने के बाद भी हम दिमाग से तो डिलीट नहीं करते,
0: दिल से।
4: वहां तो हाँ दिल से सॉरी दिल से डिलीट नहीं करते, वहाँ तो हमें याद आता ही रहता है,
0: या फिर अकेले बैठ करके।
4: हाँ।
0: जब हम अकेले होते हैं तब तो सबसे ज्यादा
4: वो फील होता है,
0: या फिर हम उन उन उन स्थानों पर, उन जगहों पर जब हम कभी उनके साथ कभी गए थे, तो अगर हम अचानक से उन जगहों पर पहुंच जाते हैं तो बहुत ज्यादा वो तकलीफ का टाइम।
4: जी मैम, तो इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी टेक्निक आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप आंखें बंद कीजिए। अगर आपको फील हो रहा है आप अकेले बैठे, मान लीजिए 1 2 3 4 5 को उल्टा गिनना है,
0: 5 4 3 2 1
4: हाँ, और बस आंखें खोल लेनी है और खुद से क्या कहना है, मैं वर्तमान में, आई एम लिविंग प्रेजेंट। ये कहने का मतलब ये होता है कि आपने खट से अपने अतीत से आप अपने प्रेजेंट में आ गए। और दूसरी चीज ये होती है कि दिन में 2-3 बार खुद से कहिए। देखिए ये बहुत अच्छी थेरेपी होती है, जब हम खुद से कोई चीज कहते हैं तो हम उसे फील करने लगते हैं। खुद से कहिए, मैंने वो सब गिवअप कर लिया है, मैंने वो सब छोड़ दिया है, मैं वो सब भूल गई हूँ, नहीं मैं वो सब भूलने की कोशिश कर रही हूँ। ये खुद से कहना है। आप देखिए, आप रेगुलर 1-1.5 महीने 2 महीने जब खुद से कहेंगे तो उसके बाद आप फील करेंगे कि हाँ आपके अंदर वो एनर्जी पॉजिटिव
0: और
4: डेवलप।
0: और साथ ही साथ में मुझे लगता है कि ये ब्रेकअप वगैरह जो होता है ना, वो अगर हम इसको दूसरे पॉइंट से भी अगर मान के चलें, तो ये ब्रेकअप वगैरह होता है या फिर जैसे एक बचकानी हरकत होती है, एग्जैक्टली मैं उन लोगों को समझा देना चाहती हूँ, उन लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि जो एक बार रिलेशनशिप में रहने के बावजूद बाद में जब किसी का दिल तोड़ करके आसानी से आगे मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन भले हम बहुत सारा ज्ञान दे दें, बहुत सारी चीज़ें अगर हम एक दूसरे को बता लें, समझा लें, लेकिन एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर हम अपने आप को वीक ज़रूर कर पाते हैं, वीक होते ही होते हैं, क्योंकि जो अटैचमेंट एक वर्ड है ना, ये बहुत बड़ा काम करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम चाय की आदत सुबह शाम चाय पीते हैं और एक बैग से डॉक्टर ने कह दिया कि भाई चाय तुमको नहीं पीनी है, वो तुम्हारी सबसे ज्यादा एसिडिटी का कारण बन रहा है, तुम्हें चाय छोड़नी है, क्या करेंगे आप ऐसे क्या करेंगे आप? एक अगर आप अचानक से चाय दोनों टाइम छोड़ देंगे तो आपको वो हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, कुछ ऐसे ही बॉडी में सेंसेशन होने लगेंगे। तो क्या करना होता है, पहले 2 टाइम से 1 टाइम करना है, ठीक है
4: जी।
0: फिर आपने अगर आपने एक बड़ा ग्लास चाय पीते हैं तो आधे पे आइए, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि फिर छोटा सा, मतलब एक सिर्फ खाली 2 से 3 सिप वाला एक कप हो उसमें चाय लीजिए। धीरे धीरे करके कुछ ऐसा समय आएगा कि वो चाय भी आप पीना बंद कर देंगे। तो एक बैग से अचानक से वो चीजें भारी लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे मूव ऑन करना, ये सभी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटली हेल्थ के लिए, फिजिकली हेल्थ के लिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा कारगर होता है।
4: बिल्कुल, कहते हैं ना बेबी स्टेप्स जो होते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। तो छोटी छोटी कोशिशें करिए और जब आप जिस दिन निकल जाएंगे उस दिन आपको बेटर फील होगा। एक बात और कहना चाहूंगी कि जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि मुझसे नहीं हो रहा है या मैं नहीं कर पाऊंगी, उस वक्त आपको ये सोचना है कि आपका उस पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, आपकी हेल्थ पे, आपकी फैमिली पे। और एक खुद के अंदर हमेशा पॉजिटिव एरा ये रखना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ, अगर जी भी रही हूँ तो वो अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए, जो मुझे मानते हैं उनके लिए। क्योंकि जब आप ये पॉजिटिव थिंक रखेंगे ना तो आपको नेगेटिविटी से निकलने में बहुत हेल्प होगी।
0: प्रबल जी लिख रहे हैं कि ब्रेकअप और बैकलिस्ट ये दोनों सगी बहने हैं। हाँ जी बिल्कुल। नियति हेलो आरजेस, आप दोनों का नाम क्या है? तो नियति आई एम आरजे समता और ये हमारे साथ में है
4: आरजे अंशिका।
0: ठीक है, हम दोनों लोग आते हैं सुनसैली प्रोग्राम, जो कि विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम होता है, 1:30 से 3 बजे तक होता है। और उसमें गर्ल्स को लेकर के, विमेन्स को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो चलिए यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार आएंगे अपने नए टॉपिक पर। तब तक के लिए सुनते रहे 99.6 FM पे हम दोनों को, यानी आरजे समता एंड आरजे अंशिका को।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली, जो कि आज हम महका रहे हैं रिश्तों की महक से। और आज हमारे पास कुछ रिश्तों को लेकर के ही बातें हैं कि देखिए, रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन कभी आपने गुलाब की पंखुड़ी देखी होगी, बहुत नाजुक होती है लेकिन खूबसूरत होती है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं।
5: बिल्कुल, तो आज मेरे पास ना कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसको मैं बोलूंगी और उसको जो क्लियर है ना, उसका जो क्या कहते हैं उसको
4: ब्रीफ करना है,
5: उसको समझाना अंशिका है। ठीक है अंशिका?
4: Okay,
5: तो असरदार टिप्स हैं बहुत ज्यादा।
4: Okay,
5: तो सबसे पहला है कि अगर आपके रिलेशनशिप खराब है, मतलब अगर अनबन चल रही है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि छोटी छोटी बातें आप उनसे शेयर करें। मन में बातें दबाने से दूरी बढ़ती है और बातचीत कभी बंद ना करें।
4: बिल्कुल, इसको इस तरीके से लेते हैं कि छोटी छोटी बातें शेयर करने का मतलब होता है कि आप अपनी दिन भर की भी बातें बता सकते हैं। जैसे हम शाम को मिले, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, वो आए शाम को अपने काम को ख़त्म करके और डिनर कर रहे हैं मान लीजिए, और बस ये बताना कि अरे यार, तुम्हें पता है आज दिन में मेरे साथ ये हुआ, आज मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई, बॉस ने मुझे ये कहा, या मान लीजिए दिन भर में कुछ बुरा हुआ हो तो वो उधर से बताएं कि नहीं यार, आज मेरे साथ ये नहीं हुआ, आज ये हो गया। या बहुत छोटी छोटी बातें, आज मुझे ऑटो नहीं मिला, तो पता है पैदल आ रहे थे तो पैदल आते हुए दो लोगों को आइसक्रीम खाते हुए देखा, तुम्हारी याद आ गई। कुछ भी इस तरीके की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, किसी से कोई बात हुई है तो वो बताइए। अगर उस इंसान के बारे में भी हुई है तो बताइए कि तुम्हारे बारे में ये हुआ है। वहाँ ये नहीं है कि हम चुगली कर रहे हैं, वहाँ ये है कि हम साफ और चीजों को क्लियर कर रहे हैं। बातचीत बंद ना होने का मतलब होता है कि कई बार कोई, जैसे कहते हैं ना कि अरे वो इंसान तुमको अच्छा नहीं लगता है तो बात ही मत करो, ये एक टेक्निक रिश्ते में कभी नहीं होनी चाहिए।
5: नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। प्यार के साथ इज्जत भी होनी चाहिए। बोलने का तरीका रिश्ते को बनता या बिगाड़ता है।
4: बिल्कुल, रिस्पेक्ट जहाँ तक बात आती है, तो एक बार आपके रिश्ते में प्यार ना हो चल सकता
5: रिस्पेक्ट
4: है,
5: होनी चाहिए।
4: लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रिस्पेक्ट के भी कई सारे मायने होते हैं। हम इज्जत को बस इस तरीके से ले लेते हैं कि कोई प्यार से वो करता है, अच्छे से बोलता है, रिस्पेक्ट करता है, वो रिस्पेक्ट वाले की फीलिंग नहीं है। एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग होनी चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों में उससे पूछ रहे हैं कि देखो ये इस तरह मैंने किया है तो क्या ये ठीक लग रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में पूछिए, उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए, उसके पॉइंट्स की रिस्पेक्ट करिए। कई बार क्या होता है कि दो लोगों के ख्याल नहीं मिलते हैं, हो सकता है उसका पॉइंट कुछ और हो, आपको उस पॉइंट की रिस्पेक्ट करनी है कि नहीं ठीक है तुम्हारी तरीके से ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस उसमें आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कहीं ना आ रही हो।
5: बिल्कुल,
4: तो आप उनकी बातों को माने
5: और एक दूसरे का सम्मान करें।
4: बिल्कुल,
5: फिर आता है पॉइंट की ट्रस्ट धीरे
4: बंदों में केयर दिखा देगा कि अरे नहीं, उसकी चाय में इलायची मत डालना, वो चाय में इलायची नहीं कैरी करती है, या ये नहीं खाती है ये मत डाल, तो वो भी तो केयर हुई। जरूरी थोड़ा है कि कोई गिफ्ट देकर कि आपको केयर दिखाए। तो कहने का मतलब ये है कि अपने रिलेशनशिप को कंपेयर मत करें।
5: एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि छोटी कोशिशें बड़ा असर डालती हैं। एक प्यारा

0: मैसेज तारीफ या केयर रिश्ते को मजबूत बनाती है।
1: बिल्कुल, यहाँ तारीफ का सेंस जो है वो ये निकल करके नहीं आता है कि आधे पेज का आपको देना है, अरे तुम बहुत अच्छे लगते, अरे तुम्हारी आँखें क्या कहें, कहने वाले, ये नहीं है। बस छोटा सा थैंक यू, सॉरी, थोड़ी छोटी सी तारीफ कर दीजिए कि कोई अगर आपके फेवरेट कलर की ड्रेस पहनी है, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आज मेरे फेवरेट कलर की ड्रेस पहनी है, ये छोटे छोटे कमेंट्स बस, कोई बहुत उस पे आपको एक्सटेंड नहीं करना है।
0: एंड नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन है कि गलती हो तो सॉरी बोलें, ईगो रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है।
1: बिल्कुल, गलती हो तो सॉरी बोलना चाहिए,
0: गलती हो तो सॉरी बोलो, नहीं हो तो भी बोलो सॉरी, मुझे ऐसा लगता है।
1: जैसे कहते हैं
0: प्यार में किस तरीके का ईगो यार, ये बताओ पहले। सिर्फ साथ ही नहीं सपोर्ट भी दें, मुश्किल समय में साथ खड़ा होना असली रिश्ता दिखाता है।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना मुश्किल में समझ में आ जाता है कौन अपना कौन पराया, तो वो आपको भी देखना है, समझना है और थोड़ा सा अपने सेंसेस को खुला रखना है। कई बार हम क्या करते हैं ना कि किसी ने कुछ कह दिया तो हम बहुत जल्दी मान लेते हैं, लेकिन अपने सेंसेस को थोड़ा ओपन रखिए अपने रिश्ते में।
0: एग्जैक्टली, लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट है कि रिश्ता परफेक्ट नहीं, समझदार होना चाहिए, क्योंकि दो इम्परफेक्ट लोग जो जब एक दूसरे को समझते हैं तभी रिश्ता खूबसूरत बनता है।
1: बिल्कुल, समझ होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, परफेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि परफेक्शन रिश्ते में कभी नहीं होगा, दो लोग एक साथ परफेक्ट हो ही नहीं सकते, लेकिन आपको समझदारी के साथ कुछ उनकी गलतियों को भी नहीं, कहते हैं ना रिश्ते में एक दूसरे की कमियों को भी अपनाना चाहिए, तो उनकी कमियों को भी अपनाइए और कोशिश करिए कि आपका रिश्ता बेहतर।
0: बिल्कुल, तो नागेश्वर जी ने लिखा है कि प्यार करने वाला आपकी अधिक केयर करेगा, ना कि महंगे महंगे गिफ्ट देने वाला। गिफ्ट देने वाला एक दिन आप पर गुस्सा भी कर सकता है और सारे गिफ्ट्स बाहर वापस भी ले सकता है, लेकिन प्यार देने वाला कभी गुस्सा नहीं करेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो मैंने क्या गलती कर दी। नागेश्वर जी, आपकी गलतियां तो हम अनगिनत देखते रहते हैं, आप क्या ही बता दें हम आपको। ठीक है, तो चलिए अब लेते हैं आपको यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे आज के ब्यूटीफुल टिप्स लेकर के, यानी कि होम रेमेडीज को लेकर के। तो बस हम यूं गए यूं आए, स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: घर जाएंगे तो बचपन की तरह जाएंगे। तो चलिए भाई हम टिप्स फटाफट बताते हैं।
1: ओके टिप्स बताते हैं। तो टिप्स जो है वो है आज बालों के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से क्या हो रहा था ना कि हम फेस के लिए बता रहे थे, अब हम बालों के लिए बताएंगे। तो बालों के लिए सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बताऊंगी वो है दो चीज़ों से तैयार होने वाला ये पैक है, जो दो चीज़ें हैं दही और शहद।
0: ओके
1: तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको दो चम्मच दही ले लेना है फ्रेश और थोड़ा ठंडा, मतलब फ्रिज का, और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लेना है, मतलब आधा चम्मच से भी कम मिलाइएगा, और मिला करके अपने बालों की स्कैल्प पे उसको आपको अच्छी तरीके से लगाना है, 30 मिनट तक लगाए रखना है, और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप उसको वॉश कर दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा होता है, और स्पेशली उनके लिए जिनके बाल कुछ लोग कहते हैं ना बहुत ड्राई ड्राई हैं, बहुत कड़े कड़े जैसे, वो एक शाइनिंग और सॉफ्टनेस नहीं होती है बालों में, तो वो आ जाएगी आपके।
0: चलिए तो एक मैं भी बता देती हूँ, क्योंकि इस समय गर्मियाँ हैं और गर्मियों में क्या होता है कि जो मुल्तानी मिट्टी हम चेहरे पे लगाने के बाद में हमारे चेहरे का पूरा ऑयल खींच लेते हैं, ऐसा आपने देखा है
1: जी,
0: सुना है, और सभी लोग हम लोग बताते हैं हमेशा से, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको वही मुल्तानी मिट्टी आप अपने बालों की जड़ों में भी लगा के देखिए,
1: बालों में
0: जड़ों में, ठीक है, बिल्कुल उसको जैसे कहते हैं ना बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में उसको बना लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, आपको केवल जड़ों जड़ों में लगाना है, अगर पॉसिबल हो तो उसमें 3 चम्मच आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है अपने बालों की लेंथ के हिसाब से, और उसमें 2 चम्मच आपने क्या मिला देना है दही, दोनों को अच्छे से फेंट दीजिए और फिर अपने बालों की स्कैल्प पे लगाइए। कहते हैं कि गर्मियाँ जब बहुत होती हैं तो स्कैल्प जो होती है हमारी, जो जो हमारे सर की जो नसें होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, तो ये दोनों चीज़ें ठंडी हैं और आपके सर को ठंडा करने के साथ साथ आपके बालों की स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो भाई देर किस बात की है, अगर ये प्यारा सा जो टिप है अगर आप इसको अपना रहे हैं तो साथ ही साथ में मतलब मैं तो बोलूं कि बहुत ही अच्छा वाला होने वाला है, ठीक है।
1: बिल्कुल और जाते जाते मतलब टाइम बिल्कुल से हो गया है हमारा, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी टिप दे जाते हैं, आप इसे टिप ऑफ द डे भी समझ सकते हैं कि बाल धोते समय हमेशा ठंडे या फिर नॉर्मल पानी का यूज करना चाहिए, स्पेशली गर्मियों में।
0: गर्मियों में मतलब कभी भी बहुत मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि चिल्ड पानी से सर धुलते हैं।
1: जी मैम,
0: चिल्ड पानी से सर पे डायरेक्ट डाल देते हैं, तो जैसे सर्दियों में हम लोग मना करते हैं ना, ठीक वैसे ही ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी आप अपने सर पे न डालें,
1: डायरेक्ट नहीं
0: डालें,
1: पहले हाथों
0: पहले पैरों पे, पहले कहते हैं ना कि पहले पैरों को भिगोना चाहिए, ताकि वो एक मैसेज देते हैं कि भैया अब हम नहाने वाले
1: हैं, तैयार हो जाओ,
0: ठीक है। तो इसीलिए जो भी काम करें सुरक्षित करें, ध्यान में रखते हुए करें। चलिए अब हम लोग को दे इजाजत, और हम मिलेंगे कल यानी सुपर से भी ऊपर वाले दिन यानी सैटरडे के दिन। तब तक के लिए सुनते रहें हमारे सारे सॉन्ग्स को और हमारे पूरे प्रोग्राम्स को। टेक केयर, बाय बाय
1: बाय बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
7: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
8: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
9: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
10: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
11: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
10: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
12: अरे सुना?
13: क्या?
12: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
13: वाओ!
12: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
14: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
15: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
14: और जेंट्स के लिए?
15: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
14: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइंस, गोंडा।
15: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
13: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
16: मतलब
13: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
15: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे और फ्राइडे के स्पेशल वाले प्रोग्राम यानी कि घड़ी में बज चले हैं 3:08 बाय स्टूडियो क्लॉक और वक्त है अब आपके अपने फरमाइशों के सिलसिले को जारी करने का। अब चलेंगे भाई आपकी फरमाइशें लगातार 2 घंटे बैक टू बैक, क्योंकि आज चुनौती आ चुकी है आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में और आपने ट्यून कर लिया है आपका अपना FM रेडियो 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और आज स्पेशल यानी कि 2 घंटे का स्पेशल फरमाइशी। तो भाई जिनकी फरमाइश हम तक आ चुकी है वो करें थोड़ा सा इंतज़ार और जिनकी फरमाइश नहीं आई है वो उठाएं अपना फ़ोन, डायल करें वही वाला स्टूडियो नंबर 6393316429, आई रिपीट 6393316429, और अपनी फरमाइशें भेज दें हम तक। और ऑफकोर्स सुनते रहे, इन्जॉय करते रहे। आज की हमारी पहली फरमाइश जो आई है वो आई है सभिया जी की और वो सुनना चाहती हैं कुड़मई। तो भैया आइए आप इस गाने को एंजॉय कीजिए, हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

शाहिद मल्ल्या की आवाज में आप सुन रहे हैं अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम के म्यूजिक में सबिहा जी की फरमाइश तेरी कुड़माई के दिन आ गए। और हमारी अगली फरमाइश जो आई है वो आई है अक्षय जी की। अक्षय जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी प्लीज आप अपना गाना चेंज कर दीजिए, क्योंकि भोजपुरी गाना हम नहीं प्ले करते हैं। आप अपना बॉलीवुड का जो पसंदीदा सॉन्ग हो प्लीज भेज दीजिए डिमांडेड सॉन्ग्स में। एंड चलते हैं हमारे चैट बॉक्स में, क्योंकि कुछ मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं जो हमारे लिसनर्स ने भेज दिए हैं। तो आइए देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है। प्रबल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, दीपांशु तिवारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिख रही हैं गुड आफ्टरनून टू यू, कैसी हैं आप। एंड ओके, कमल नैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं कमल नैन जी, हम कॉल ट्यून गोंडा में। एंड गुड आफ्टरनून मैम जी, लिखा प्रबल जी ने गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप। अंशु सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो आते ही लिख रहे हैं अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो सॉन्ग। जी बेशक आपका ये गाना प्ले हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा कॉल, क्योंकि ये है कॉल ट्यून गोंडा और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 एफएम। एंड नागेश्वर धाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून अति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं हम कॉल ट्यून गोंडा में। इसी के साथ आइए चलते हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है शाहिद अंसारी जी की, जिंदगी ने पुकारा और हम चले आए। क्या बात है भाई, एक पुराना गाना आया है आशा जी की आवाज़ में, खतरनाक फिल्म से। आप एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: आशा जी की आवाज में आप सुन रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन गीत खतरनाक फिल्म से, शायद अंसारी जी की फरमाइश पर जिंदगी ने पुकारा चले आए हम। और ये लाइन तो बिल्कुल सही कही है भाई हमारी आशा जी ने कि लोग जाते हैं लेकिन हम जाने के बाद भी याद आएंगे, और स्पेशली जब भी उनके गाने सुनते हैं तो हमेशा वो दिल में रहती हैं। अमर गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं हेलो आजमती जी, हेलो कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोना में। अब्दुल मुजीम जी हमारे साथ जुड़े हैं जो लिख रहे हैं दिल में हो मोहब्बत तो आंखों से इजहार हो जाता है, होठों से बोल या ना बोल दुनिया को खबर हो जाता है। क्या बात है भाई, दिलों की बात चंद अल्फाज में लिखने का हुनर आपका कमाल का है। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है रीना शर्मा जी की और वो सुनना चाहती हैं प्यार कभी कम ना करना सनम। ओके, तो एक बेहद ही रोमांटिक सा सॉन्ग आप सुनने जा रहे हैं एक मुट्ठी आसमान फिल्म से, एंजॉय करते रहिए। हम आपको मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान असली। आप सुन रहे हैं कॉल ऑफ यून गोना अपनी आरजमती के साथ, स्टे ट्यून्ड।
1: ना करना सनम हर

1973 एक मुठी आसमान से आप सुन रहे हैं प्यार कभी कम ना करना। बोल है इंदिवर साहब के, संगीत है मदन मोहन कोहली का और आवाज है किशोर कुमार मानी जयराम एंड ऑफ कोर्स फरमाइश थी हमारी रीना शर्मा जी की, जिनकी फरमाइश पर आपने इस रोमांटिक से गाने को एंजॉय किया और एंजॉय करते टाइम हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र यादव जी प्लस कुमार टेलर्स गौरा चौकी जो लिख रहे हैं जय माता दी आज नदी। जय माता दी, कैसे हैं आप? आपका सभी स्वागत करते हैं हम कॉलर ट्यून गोना में। अगली फरमाइश हमारी आई है धर्मेंद्र मोहन जी की, जो सुनना चाहते हैं ऐ यार तेरी यारी हमें जान से प्यारी है क्या बात है भाई, दोस्ती यारी निभाइए। इस गाने को एंजॉय कीजिए, हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

भाई इस गाने में आवाज है गुरु और चेला यानी कि मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की। लक्ष्मी प्यारे लाल का संगीत है और ऑफ कोर्स इतने खूबसूरत जोड़ी यानी कि संजय कुमार और जितेंद्र की जोड़ी नजर आई है इस फिल्म के अंदर। वक्त की देवा 1981 में रिलीज हुई एंड धर्मेंद्र मोहन जी ने फरमाइश की थी इस खूबसूरत से गाने की जो आप इंजॉय कर रहे थे। एंड ओके हमारे साथ मिस्टर ऑप्टिकल जी जुड़ गए हैं जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। के गुप्ता जी जो हमें सुनते हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं डियर एंड डियर रणजीत जी प्रणाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई, आई होप आप भी अच्छे होंगे। कुमार टेलर्स जी लिख रहे हैं आई एम फाइन एंड यू आर रणजीत, मैं भी ठीक हूँ, मैं बिंदास हूँ, झकास हूँ, आप बताइए फिलहाल के लिए क्या हो रहा है। एंड इसी के साथ रणजीत जी नमस्ते एंड थैंक यू। ओके धर्मेंद्र मोहन जी की तरफ से आया जो हमें सुनते हैं आवाज़ विकास से, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही प्यारी गाने की फरमाइश की थी एंड आपको भी नमस्ते। आइए चलते हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है काजल जी की तरफ से और वो सुनना चाहती हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग सॉन्ग जो काफ़ी वक्त में ट्रेंड कर रहा था, नाम है गुलाबी शरारा। इंजॉय करते रहिए इस प्यारे से गीत को। हम मिलते हैं अगली फरमाइश यानी कि राजेश मीना जी की फरमाइश को लेकर के।

हाँ जी, तो भाई संगीत का कोई भी सीमा नहीं होती है और इसलिए आप इस उत्तराखंडी सॉन्ग को एंजॉय कर रहे हैं। भले ही आपको इसकी लिरिक्स समझ ना आई हो, लेकिन आपने वाइब फुल किया होगा और ऐसा मुझे अपने चैट बॉक्स में देख के भी लग रहा है। के गुप्ता जी लिख रहे हैं, नतीश जी आपको बहुत मिस कर रहा था, मैं भी आपको काफ़ी मिस कर रही थी, एंड ऑफ कोर्स मैं अपने लिसनर्स को अक्सर मिस करती रहती हूँ। एंड ओके, मैं ठीक नहीं हूँ, लू लग गई है, तो आई थिंक आपको शिकंजी आम पन्ना पीने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए, वायरस लेते रहिए, और ऑफकोर्स अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो, बहुत ज़रूरी काम ना हो, तो घर से बाहर थोड़ा कम निकलिए, आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है राजेश मीना जी की, और वो सुनना चाहते हैं, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा चीलो थोड़ा थोड़ा मर लो। भैया ये गाना हमने बचपन में सुना था, और आइए दोबारा से एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को। आपके अपने शो क्वालिटी ट्यून गुना में आप सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपकी अपनी गुना शाह की धड़कन। अपनी आज नदी के साथ भेजते रहिए अपनी फरमाइश 6393316429 पर।

0: भर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
0: हाँ, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।

राजेश मीना जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं दुनिया में आए हो तो लव कर लो। सलमान खान करिश्मा कपूर के ऊपर फिल्माया गया गाना जुड़वा से आप सुन रहे हैं। 1997 में ये गाना रिलीज किया गया था और जिस गाने का म्यूजिक कभी फेड ना हो, जिसको आप लगातार एंजॉय करते रहें भले ही जमाने बदल जाएं, और वो गाना आपको गारंटी से पता चल जाना चाहिए कि इसमें म्यूजिक किसी और ने नहीं, अनु मलिक साहब ने दिया है। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें मुस्तफा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू मुस्तफा जी, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करते हैं कॉलोचिन गोंडा में। एंड आपको अपनी फरमाइश करने के लिए हमें कॉल करना पड़ेगा, कॉलिंग नंबर 6393316429। अब्दुल मुजीम जी लिख रहे हैं, मेरे रब से तुम्हें मांगा है मैंने अपनी हर दुआ में तुम्हें मांगा है, जो मिला है उसी में सब्र करो, खुदा तकदीर खुद संवार देगा। क्या बात है भाई, काफ़ी अच्छी और प्यारी बातें कह देते हैं आप और कुछ ही शब्दों के अंदर। फिलहाल आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है निब्बर जी की और वो सुनना चाहते हैं, तू कहाँ गई थी? भाई मैं तो कहीं नहीं गई थी, घर से ही आ रही हूँ सीधे और आप ही से मिलने आ रहे थे। फिलहाल आप इंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा, आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

निब्बा जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं तू कहाँ गई थी, और वक्त है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का, जो की है कमल नयन जी की, और वो सुनना चाहते हैं जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है। तो ये आइए जरा एंजॉय कीजिए अजय देवगन की फिल्म का सॉन्ग। हम मिलते हैं आपको अगली फरमाइश पर। अगली फरमाइश जो होने वाली है वो है अजीज जी की, प्रबल मिश्रा जी की, राजू सलमानी जी की, रेणु तिवारी जी की, राम नरेश जी की, मेहताब जी की। तो सुनते रहिए आप अपना शो कॉलेज गोंड अपनी आशंती के साथ। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, वो कोई और नहीं, मेरी कॉलेज की लड़की है। फूल और कांटे फिल्म से आप सुन रहे हैं अजय देवगन और मधु पर फिल्माया गया गाना कुमार सानू की आवाज में कमल नयन जी की फरमाइश पर। और मुझे लगता है कि यहाँ से करनी पड़ेगी अपनी स्पीड को तेज, क्योंकि हमारे पास आ चुकी हैं फरमाइशों का ढेर। और अगली फरमाइश आई है अजीज जी की, तो आप सुनते रहिए छाप तिलक और हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगली फरमाइश आपको याद है ना? जी हाँ, प्रबल मिश्रा जी की होने वाली है, राजू सलमानी जी की होने वाली है। स्टे ट्यून्ड।

अजीज जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं छाप तिलक, और वक्त है हमारी अगली फरमाइश यानी कि प्रबल मिश्रा जी की फरमाइश की तरफ चलने का, और वो सुनना चाहते हैं चुरा के। तो आइए देखते हैं क्या चुरा कर भागने का प्लान है उनका। फिलहाल आप सुन रहे हैं कॉलेज गुना अपनी आशुति के साथ 89.6 FM की है, आपकी अपनी गुना शहर की धड़कन रेडियो ज्ञान।

जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं विलन और कनिका कपूर की आवाज में चुराके, और वक्त है हमारी अगली फरमाइश यानी कि राजू सलमानी जी की फरमाइश की तरफ चलने का। राजू सलमानी जी सुनना चाहते हैं उर्मिला पे फिल्माया गया वो गाना जिसकी आवाज आज भी आपके पार्टी म्यूजिक में शामिल है। अलका याग्निक की आवाज है, 90s का आइटम सॉन्ग छम्मा छम्मा, एंजॉय करते रहिए।

अंजी, और इस गाने को जान देने वाले म्यूजिक डायरेक्टर हैं अनु मलिक साहब। आप सुन रहे हैं अलका जी की आवाज में और मिला पे फिल्माया गया गाना चाइना गेट से छम्मा छम्मा। राजू सलमानी जी ने की थी इस गाने की फरमाइश और वक्त है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का, और वो आई है हमारी रेणु तिवारी जी के पास से, जो सुनना चाहती हैं गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो एंजॉय करते रहिए स्पॉटिफाइज एंड जबरदस्त हिट सॉन्ग को। हम मिलते हैं अगली फरमाइश राम नरेश तिवारी जी की और मेहताब जी की, निशा जी की, उत्कर्ष जी, ओके अब्दुल कलाम जी की। उत्कर्ष जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपना गाना दोबारा से भेज दें क्योंकि भोजपुरी गाना नहीं प्ले होते हैं।

सुन रहे हैं गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, सुहाग फिल्म से 90s का सॉन्ग उदित नारायण अलका जी की आवाज में। इसी के साथ आइए चलते हमारी अगली फरमाइश की तरफ। राम नरेश तिवारी जी सुनना चाहते हैं, झूठ बोले कौवा काटे। मैं बचपन से इस लाइन को सुनती आ रही हूँ, लेकिन आज तक किसी कौवे को काटते नहीं देखा है, बस चोच मारते देखा है। फिलहाल आप इस गाने को सुनते रहिए और इंजॉय करते रहिए। बॉबी फिल्म से आप इंजॉय कर रहे हैं लता जी और शैलेंद्र सिंह की आवाज में। स्टे ट्यून्ड। हमारे साथ कैफ मोबाइल जी जुड़ गए हैं गोंडा से, आपका स्वागत करते कॉलर ट्यून गोंडा में। प्लस नीना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं एंड प्रबल मिश्रा जी एंड के गुप्ता जी। एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते रहिए। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, आप सुन रहे हैं झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरना। राम नरेश जी की फरमाइश पर आप इस गाने को एंजॉय कर रहे थे, लता जी सरेंद्र सिंह की आवाज में, एंड ऋषि कपूर और डिंपल के ऊपर फिल्माया गया गाना बॉबे फिल्म से। एंड ये मेरी पहली फिल्म थी जब मुझे होश आया था देखने लायक कि फिल्में नाम की भी कोई चीज होती है और हाथियों से अलग होती है, तो सबसे पहले मैंने यही फिल्म देखी थी। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना आया है मेहताब जी की फरमाइश पर और वो सुनना चाहते हैं ऐसा देश है मेरा। एंजॉय करते रहिए वीर ज़ारा, एक आइकॉनिक फिल्म से एक आइकॉनिक सॉन्ग, आपका अपना पसंदीदा क्वालिटी। इनको आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, यह गुना शहर की धड़कन पर। आज जल्दी मौजूद है आप सभी के साथ स्टूडियो।

मेहताब जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं वीर ज़ारा फिल्म से ऐसा आदेश है मेरा, और वक्त है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का। अगली फरमाइश आई है निशा जी की तरफ से और वो सुनना चाहती है रोते रोते दिन रात गुजारते हैं। भाई क्यों, क्या हुआ, आपका दिल किसने तोड़ दिया, बताइए जरा मुझे। हम ऐसे तो नहीं आपका दिल दिन गुजरने देंगे, तो आप इसीलिए इस गाने को इंजॉय करते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए और लाइफ को इंजॉय करते रहिए।

हाँ जी भाई, निशा जी का दिल किसी ने दिया है तोड़, इसलिए वो सुन रही हैं फिर बेवफाई एल्बम से। रोते रोते दिन रात गुजर जाते हैं और हमारे के गुप्ता जी को भी इतना पसंद आ गया है कि उन्होंने भी फरमाइश कर दी है कि उनका नाम भी इसी गाने में जोड़ दिया जाए। भाई तो निशा जी आपके गाने को शेयर कर रहे हैं के गुप्ता जी, जिन्हें गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। फिलहाल आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है अब्दुल कलाम जी की और वो सुनना चाहते हैं ओके ओ सलमा। तो आप इस गाने को जरा एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर। जी हाँ मनोज शर्मा जी, आज हम ही मौजूद हैं, यानी कि आज ही मौजूद हैं आपके साथ आपके अपने वाले प्रोग्राम कॉल ट्यून गोना में।

अब्दुल कलम जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं ओ सनमा, और वक्त है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का, जो कि है रीत लाल जी की। ऐ सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। इस बेहतरीन से गीत को आप इंजॉय करते रहिए। 90s का बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग ऋषि कपूर और दिव्या भारती पे फिल्म आया दीवाना फिल्म से। हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

रीत लाल जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं ऐसा नम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। और वक्त है हमारी अगली फरमाइश अमर गोयल जी की फरमाइश की तरफ चलने का, जो सुनना चाहते हैं एक बेहद ही रोमांटिक सॉन्ग। और आपके लिए पेश है सोनू निगम की आवाज में एक बहुत ही अंडररेटेड एल्बम से, याद एल्बम से, एक खूबसूरत गीत मेरे सिवा। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं सोनू निगम की आवाज में याद एल्बम से मेरे सिवाना कोई तुझको देखे। अगली बारी है हमारे सुरेंद्र यादव जी की, जो सुनना चाहते हैं ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये जानते हैं तुम्हें हम पसंद करते हैं। फिलहाल के लिए आप एंजॉय करते रहिए। हम मिलते हैं अगली फरमाइश दुर्गा जी की, शहनवाज जी की जो मैं सुनते हैं अहमदाबाद से, रईस जी की, अब्दुल अहमद जी की, ओके अब्दुल जी की जो मैं अकेले अहमदाबाद से सुनते हैं। तो भाई आप लोग बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए कॉलेज इन गुना। अगली फरमाइश

सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर आप सुन रहे हैं ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। अगली बारी हमारी दुर्गा जी की जो सुनना चाहती हैं काबिल हूँ, तो आइए एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत से गीत सूरत रोशन का गाना। एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

जुबिन नौटियाल और पलक मुच्छल की आवाज में आप सुन रहे हैं काबिल हूँ, और ये गाना फरमाइश की थी हमारी दुर्गा जी ने। वक्त है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का। शाहनवाज जी जो मैं सुनते हैं अहमदाबाद से, उन्होंने फरमाइश की है कैसा कुदरत का कानून। तो इंजॉय करते रहिए आप इस गाने को। हम मिलते हैं अगली फरमाइश जो कि मुंबई साथ की।

शाहनवाज जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं कुदरत का कानून। और अब हम वक्त ओके, अब हम चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो की है यार ना मिले किक फिल्म से। रई साहब सुनना चाहते हैं इस गीत को, तो आइए एंजॉय करते हैं और हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर। अगली फरमाइश है अब्दुल जी की, जो हमें सुनते हैं अहमदाबाद जी से। ओके कलाम जी, जो हमें सुनते हैं अहमदाबाद से। मिश्रा ऑप्टिकल जी, मुस्तफ़ा जी, जो हमें सुनते हैं सऊदी से। सुरेश कुमार जी, देवी प्रसाद जी, पिंटू जी, मनीष शर्मा और राजेश शुक्ला जी। स्टे ट्यून्ड।

रईस जी की फरमाइश में आप सुन रहे हैं जी मैनू यार ना मिले मैं मर जावा, जैस्मीन और ऑफ कोर्स हनी सिंह की आवाज़ में आप इस गाने को सुन रहे थे किक फिल्म से। वक्त है हमारी अगली फरमाइश अब्दुल जी की, जो हमें सुनते हैं अहमदाबाद से, उनकी फरमाइश की तरफ चलने का, और वो सुनना चाहते हैं छोड़ेंगे हम ना तेरा साथ। तो भाई इंजॉय कीजिए आप इस खूबसूरत से गाने को मरते दम तक, अनुराधा और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में, गोविंदा पर फिल्माया गया गीत।

हां जी, तो आप सुन रहे हैं अब्दुल जी की फरमाइश पर छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। अब बारी हमारी कलाम जी की फरमाइश की तरफ चलने का, और वो सुनना चाहते हैं हार गया दिल फरियाद करके। ओहो, क्या बात है भाई, आज तो किसी का दिल भी टूटा है। निशा जी, कलाम जी और कुछ और लिसनर हैं जिन्होंने हमें सैड सॉन्ग्स की फरमाइश की है। फिलहाल आप एंजॉय करते रहिए कॉलेज गुना अपनी आज नदी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

कलाम जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं हार गया दिल, और वक्त है हमारी अगली फरमाइश का। अगली फरमाइश आई है मिश्र ऑप्टिकल जी की, जो सुनना चाहते हैं शायराना सी है जिंदगी की फिजा। अलका जी की आवाज में आप इस गाने को एंजॉय करते रहिए। आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा, आपके अपने एफएम रेडियो 99.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन पर।

मिश्रा अप्रिकल जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं शायराना सी है जिंदगी की फिजा, और वक्त है हमारी अगली फरमाइश की। अगली फरमाइश आई है सऊदी अरब से, यानी कि मुस्तफा जी की, और आइए देखते हैं भाई वो क्या सुनना चाहते हैं। बहुत देर कर दी है, गाना देर से बजाएंगे तो आप इस तरह की गाने की फरमाइश ही कर देंगे। फिलहाल आप तवायफ फिल्म से सुनते रहिए इस बेहतरीन से गीत को, 1985 में रिलीज हुआ गाना आप सभी के लिए। स्टे ट्यून्ड।

मुस्तफा जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं बहुत देर कर दी, और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है सुरेश कुमार जी की, जो सुनना चाहते हैं राजकुमार फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, तुमने किसी को किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मेरी जान रूठ कर जा रही है। इस बेहतरीन से लिरिक्स को आप अनचुक करते रहिए। हम मिलते हैं अगली फरमाइश, जो कि है देवी प्रसाद जी की, पिंटू जी की, मनीष शर्मा जी की, राजेश शुक्ला जी की, सबलू जी की और मोहम्मद आयुब जी की। स्टे ट्यून्ड।

सुरेश कुमार जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं, तुमने किसी की जान को जाते देखा है? फिलहाल आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश है देवी प्रसाद जी की, और देवी प्रसाद जी सुनना चाहते हैं तुरुरू। जी हाँ, कुछ ऐसे साउंड करता है ये गाना, और आप इंजॉय करने जा रहे हैं सलमान खान पर फिल्माया गया ऐलान से 1994 में, सॉरी अक्षय कुमार पर फिल्माया गया, मधु के ऊपर फिल्माया गया सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

देवी प्रसाद जी की फरमाइश को आप इंजॉय कर रहे हैं। वक्त है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का, जो आई है पिंटू जी की तरफ से। और पिंटू जी सुनना चाहते हैं साथी फिल्म से कोई भी एक बेहतरीन जाएगी, जाइए आपको हम सुनाते हैं। ऐसा भी वक्त देखो और एंजॉय कीजिए आप इस गाने को। हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, जो कि है मनीष शर्मा जी की।

पिंटू जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं साथी फिल्म से, और इसी के साथ आइए चलते हैं मनीष शर्मा जी की फरमाइश की तरफ, और वो सुनना चाहते हैं, भीड़ में तन्हाई में मुझे तुम याद आते हो। एंजॉय करते रहिए इस रोमांटिक सॉन्ग को। इमरान हाशमी पर फिल्माया गया गाना तुम सा नहीं देखा। स्टे ट्यून्ड।

मनोज शर्मा जी की आप फरमाइश एंजॉय कर रहे हैं। वक्त है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का, जो कि है राजेश शुक्ला जी की। एंड अंबर जी ने कहा है बाय-बाय। ओके, ऑलराइट, बाय-बाय, ख्याल रखिएगा आप अपना। एंड राजेश जी सुनना चाहते हैं, आज मेरे यार की शादी है, तो आइए बैंड बाजा बाराती बनकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज उनके यार की शादी है। एंजॉय करते रहिए आप ये बेहतरीन सा गाना। हम मिलते हैं सबलू जी और मोहम्मद आयुब जी की फरमाइश को लेकर के।

राजेश शुक्ला जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं आज मेरी यार की शादी है और वक्त है हमारी अगली फरमाइश सबलू जी की फरमाइश को एंजॉय करने का। एंड इसी के बाद हम आपसे मिलेंगे अपनी आखिरी फरमाइश को लेकर के, जो कि है मोहम्मद आयुब जी की। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं सबल सावन जी की फरमाइश पर साथिया बिन तेरे दिल माने ना। और इसी के साथ आगे चलते हैं हमारी आखिरी फरमाइश की तरफ। आखिरी फरमाइश है मोहम्मद अय्यूब जी की, जो सुनना चाहते हैं भजन रामचंद्र जी कह गए सिया से। इस गाने को आप इंजॉय कीजिए और मोहम्मद अय्यूब जी के साथ साथ ये गाना उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे चैट बॉक्स में, जिनकी फरमाइश हम तक आज नहीं आ पाई है, जो हमें सुन रहे हैं रेडियो गार्डन या फिर फ्रिक्वेंसी से। आप सभी के लिए डेडिकेटेड सॉन्ग्स, एंजॉय करते रहिए। आपका अपना कॉलर ट्यून गोंडा, मैं हूँ आपकी अर्जुनति और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन पर आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। एंजॉय करते रहिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।
1: सिया ने पूछा, भगवन कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आईके श्रीवास्तव।
2: और मैं आयुषी।
1: लेकर हाजिर हूं गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा में सड़क पर गिरे पेड़ से टकराकर बाइक सवार दो दोस्तों की दर्दनाक मौत। वहीं हादसे में भाजपा के जिला कार्य समिति सदस्य की गई जान, चार लोग हुए घायल।
2: गोंडा में मंगलवार बुधवार दरमियान रात करीब 1 बजे बारात से लौट रहे बाइक सवार पेड़ से टकराकर मौत हो गई। दोनों शराब के नशे में थे, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाते

0: समय दोनों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के सुभाष नगर महाराजगंज की।
1: गोंडा के जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मित्रों के बढ़े हुए मानदेय का डेमो चेक का किया गया वितरण। बता दें कि शिक्षा मित्र सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्र, जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अकबाल बहादुर तिवारी, माननीय सांसद गोंडा के प्रतिनिधि श्री राजेश सिंह, सांसद कैसरगंज के प्रतिनिधि श्री संजीव सिंह तथा जिला विकास अधिकारी आदि लोग मौके पर उपस्थित। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं माँ सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह ने माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सामूहिक रूप से सुना, जिसमें शिक्षा मित्रों के योगदान और उनके मानदेय वृद्धि में संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। समारोह के मुख्य आकर्षण के रूप में उपस्थित शिक्षा मित्र को बढ़े हुए मानदेय के डेमो चेक वितरण किए गए। इस दौरान अतिथियों ने शिक्षा मित्रों के समर्पण, निष्ठा और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों के सम्मान से जुड़ा यह पहल उनके मनोबल को बढ़ाने वाला बताया गया है। कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अमित कुमार सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी आदि संबंधित लोग उपस्थित रहे।
0: गोंडा जिले में खाद्य पदार्थ में मिलावटखोरी का काला कारोबार चरम पर है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा हालिया आंकड़ों में आम जनता की सेहत को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी। 449 नमूने संग्रहित किए थे, इनमें से 334 नमूनों की प्रयोगशाला में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त रिपोर्टों में से लगभग 172 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं, जो दर्शाता है कि बाजार में उपलब्ध खाद्य सामग्री का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक।
1: जनपद गोंडा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़ी पहल की जा रही है। कटे ओठ व तालू वाले बच्चों के इलाज के लिए पंजीकरण शिविर 11 मई से 15 मई तक कराया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्माइल ट्रेंड संस्था के सहयोग से जन्म से कटे ओठ और कटे तालू वालों बच्चे के ऑपरेशन के लिए 11 मई से 15 मई तक निःशुल्क पंजीकरण शिविर लगेगा। बच्चों को मुफ्त इलाज का अवसर मिलेगा। सीएमओ डॉक्टर संतलाल पटेल ने बताया कि शिविर का आयोजन जिला मुख्यालय के साथ विभिन्न ब्लॉक में किया जाएगा। एसएमओ डॉक्टर सी के वर्मा ने बताया कि पंजीकरण के बाद चयनित मरीजों का इलाज लखनऊ के हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में सर्जन डॉक्टर वैभव खन्ना की देखरेख में किया जाएगा।
0: गोंडा के कटरा बाजार थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी में पिस्टल लहराने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास एक 12 बोर का अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। 2 मई को घटना की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। मंगलवार को ब्रह्मचारी बाबा स्थान के पास कच्ची सड़क से आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया गया है।
1: गोंडा में श्रमिकों के योगदान को किया गया रेखांकित। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जनपद में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशानुसार विभिन्न ग्राम पंचायतों तथा श्रम विभाग के तत्वाधान में श्रमिकों के साथ जिला पंचायत सभागार में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्र एवं अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान अटल आवासीय विद्यालय सिसोवा मनकापुर में अध्ययनरत तथा परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र एवं छात्राओं एवं श्रमिकों को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा गया है। जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान मनरेगा श्रमिक को फूल माला पहनाकर अंग वस्त्र भेंट कर तथा मिष्ठान वितरण कर सम्मानित किया गया। खंड विकास अधिकारी की उपस्थित में श्रमिकों को सम्मानित करते हुए उनके परिश्रम और समर्पण की प्रशंसा की गई है। कार्यक्रमों में स्थानीय प्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल रहे।
0: गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक सड़क हादसे में 30 वर्षीय युवक वीरेंद्र यादव की मौत हो गई। उन्हें एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वीरेंद्र यादव बुधवार रात करीब 11:30 बजे अयोध्या से अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। नगर के कोल्ड स्टोरेज तिराहे के पास उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म खत्म हो गया था। वह पेट्रोल डलवाने के लिए बाइक को पैदल ही गोंडा अयोध्या मार्ग पर ले जा रहे थे, तभी शोभापुर गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वीरेंद्र सड़क पर ही गिर के गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। थाना अध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि तहरीर मिलने पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने वीरेंद्र यादव अयोध्या स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में गोल्फ कार्ट मैनेजर के पद पे कार्यरत थे। वह अपने 5 भाइयों में से सबसे बड़े थे।
1: गोंडा कौड़िया बाजार के पैड़ी बरा स्थित समय माता मंदिर परिसर में आयोजित कथा में मंगलवार को प्रवाचक राजन जी महाराज ने भगवान श्री राम के महोत्सव और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि विश्वास ही जीवन का भजन है। जब कोई चोर मंदिर जाता है तो उसे पत्थर की मूरत में भगवान नहीं बल्कि उन पर लगा मुकुट दिखता है, इसलिए वह भगवान की मूरत के बजाय मुकुट चुराता है। वहीं जब भक्त मंदिर जाता है तो उसे साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं। बिना विश्वास के भक्ति संभव नहीं हो सकती और बिना भक्ति के राम नहीं मिल सकते।
0: गोंडा जिले के भाजपा जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह को गोली मारे जाने के 16 दिन बाद भी पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। 20 अप्रैल को हुई इस घटना के बाद भूपेंद्र सिंह लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती है। यहां पर भूपेंद्र सिंह का इलाज चल रहा है। भूपेंद्र सिंह की हालत में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, स्थिति सामान्य है। परिजनों ने पुलिस को जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने और घटना का खुलासा करने की मांग की है। यह घटना परसपुर थाना क्षेत्र के डहराज पंचायत के गजराजपुरवा में हुई थी।
1: गोंडा पुलिस को मिली बड़ी उपलब्धि। बता दें कि थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पूजा पाठ एवं तंत्र मंत्र के नाम पर कूट रचना कर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 5 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से ₹1,99,500 नगद, भारी मात्रा में पीली धातु एवं सफेद धातु के आभूषण, कूट रचित निर्वाचन पहचान पत्र, विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन, मोबाइल पार्ट्स तथा चार्जर तथा फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी मौके पर बरामद हुई है। इस संबंध में क्या कहते हैं एडिशनल SP?
2: कोतवाली पुलिस द्वारा सर्विलांस SOG टीम की सहायता से एक पूजा पाठ और तंत्र मंत्र करने वाले एक बहुत बड़े गिरोह का खुलासा किया गया है, जो विभिन्न शहरों में जाके पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना के उनसे ठीक ठाक मात्रा में सोने चांदी एवं रुपए की ठगी करते थे। यहाँ कोतवाली नगर में एक संजय कुमार रस्तोगी है, जो अप्रैल में थाने पे सूचना दिए थे कि हमारे साथ यहाँ मिश्रोतिया रोड पे स्थित जो है शिव शक्ति ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान संस्थान है, जिसके संचालक हैं पंडित राम स्वरूप शर्मा एवं अन्य 4 लोग, जो कि ये नाम फर्जी है। इन्होंने मेरे साथ जो है पूजा पाठ के नाम पे 750 ग्राम सोना चांदी एवं 2 लाख रुपए ठगी करके और कुछ अन्य धातु जो पंच धातु होते हैं ठगी करके और लेके फरार हो गए। उस सूचना के आधार पे थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। मुकदमे इस अभियोग के अनावरण के लिए टीम गठित करके लगाया गया था, जिसको कल सफलता प्राप्त हुई इनको गिरफ्तारी करने में, और आज जो है एक ठीक ठाक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिस गिरोह के कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
0: ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार को करनैलगंज क्षेत्र में सकरौरा में एक धार्मिक आयोजन हुआ। बैंक ऑफ इंडिया के सामने हुए इस कार्यक्रम में पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने हनुमान जी की पूजा करके परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में शिवजी दुबे, प्रीति पांडे, रजत ओझा, विनीत सिंह, शिवम सिंह, करण सिंह, अभय सिंह, निरंकार पांडे, अभिषेक पांडे और लव कुमार अवस्थी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन समिति के सदस्यों ने व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करवाया, जिससे कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपूर्ण हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसे धार्मिक आयोजन क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और समाज को एकजुट करने में सहायक।
1: स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल्द ही कराया जाएगा उपकरण की व्यवस्था। बता दें कि विकासखंड मुख्यालय उजीरगंज में आगामी 9 मई को दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण परीक्षण शिविर का एक आयोजन किया जाएगा। यह शिविर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को कानपुर के सहयोग से कराया जा रहा है। BDO अभिषेक मणि त्रिपाठी ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति शिविर के लिए आवश्यक दस्तावेज और पात्रता की जानकारी ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
0: ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार के अवसर पर गोंडा में कई जगह पर हनुमान जी का विधि विधान से पूजन किया गया। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं अलग अलग स्थानों पर भंडारे का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य का लाभ लिया और बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त किया। गोंडा के तरबगंज थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। परिजनों को शिकायत न करने के लिए धमकी भी दी गई थी। पुलिस ने इस संबंध में एक नाबालिग युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया है। बच्ची की मां ने मंगलवार को तरबगंज पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि युवक ने बच्ची के साथ छेड़खानी की और परिजनों को शिकायत ना करने के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। पुलिस ने देर शाम को मामला दर्ज किया।
1: गोंडा के युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर। बता दें कि विदेश में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। पासपोर्ट और संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी सऊदी अरब में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मंडल के क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की तरफ से रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जिला सेवा योजन अधिकारी गुलाब चंद्र मौर्य के मुताबिक यह भर्ती प्रक्रिया क्रिएटिव इंटरप्राइजेज एजेंसी के माध्यम से कराई जा रही है। सऊदी अरब में 500 पदों पर कुशल श्रमिकों की जरूरत है। इनमें यांत्रिक फिटर, फोरमैन, यांत्रिक टेक्नीशियन, स्ट्रक्चर तथा बिल्डर सहायक पर्यवेक्षक जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए मासिक वेतन लगभग 60,000 रुपए से 1,50,000 रुपए तक का वेतन मान किया गया है। आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है और संबंधित क्षेत्र में अनुभव भी जरूरी है।
0: गोंडा स्थित सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्ती PG कॉलेज में BA सेकंड सेमेस्टर, BA फोर्थ सेमेस्टर, BA सिक्स सेमेस्टर की परीक्षाएं चालू हो चुकी हैं। सभी छात्राएं समय पे पहुँच कर अपने एग्जाम को दे रही हैं।
1: जनपद गोंडा में 22 मई से शुरू होने वाली पहले चरण की जनगणना को लेकर 7,000 से अधिक पर्यवेक्षक को दक्ष बनाया गया है। सबसे पहले मकानों की गणना की जाएगी। जनपद को मकान सूची खंडों में बांटा गया है। सभी तहसीलों में पर्यवेक्षक की दक्षता प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। बता दें कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में सदर तहसील के पर्यवेक्षक का 3 दिवसीय प्रशिक्षण पूरा कराया गया है। फील्ड ट्रेनर दक्षाराम ने बताया कि मकानों को सूचीबद्ध करने के लिए जरूरी बारीकियां समझाई गई हैं। जिला जनगणना प्रभारी विनीत मिश्र के मुताबिक मुख्य जनगणना 22 मई से 20 जून तक होगी। मकानों की सूची एवं मकानों की गणना के लिए जनपद में 6,089 मकान सूची खंडों में बांटा गया है। लगभग 6500 कर्मचारियों को पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, जहां 180 से 200 मकानों के गणना की जिम्मेदारी लोगों को सौंपी गई है। जनपद गोंडा के किसानों के लिए खुशखबरी भरी खबर है। बता दें कि 200 कुंटल गेहूं होने पर घर से ही उठाया जाएगा। बता दें कि जिले में गेहूं खरीद की धीमी रफ्तार को तेज रफ्तार देने के लिए अब मोबाइल क्रय केंद्र को क्रियाशील कर दिया गया है। इसके माध्यम से सीधे गांव में पहुंचकर किसानों से घर पर ही गेहूं की खरीद की जाएगी। इसके लिए 9 मोबाइल क्रय केंद्रों को संचालित किया जा रहा है। मोबाइल केंद्र से खरीद के लिए न्यूनतम 200 कुंटल गेहूं बेचना जरूरी होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों व खरीद केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जनपद गोंडा में 106 क्रय केंद्र के जरिए 28,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। अब तक सिर्फ 11,517 MT गेहूं की खरीद हो चुकी है। ऐसे में खरीद की रफ्तार बढ़ाने के लिए मोबाइल केंद्र को शुरू किया गया है। इसके साथ ही किसानों को गेहूं की उपज बेचने के लिए 7 मई तक खतौनी सत्यापन में भी छूट दी गई है। इससे किसानों को तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वह आसानी से अपनी उपज सरकारी दर पर बेच सकते हैं। डिप्टी RMO NK पाठक के मुताबिक 200 कुंटल गेहूं अधिक खरीद होने पर किसान क्रय केंद्र प्रभारी से मोबाइल फोन पर संपर्क कर सकते हैं।
0: गोंडा जिले के कैसरगंज सीट से पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह से मिलने राजू चंद नाम का एक व्यक्ति थाईलैंड से पैदल चलकर उनके गांव विष्णुहरपुर पहुंचा। जब राजू चंद वहां पहुंचे तो ब्रिजभूषण सिंह अपनी जनता दरबार में समस्याएं सुन रहे थे। शुरुआत में वहां मौजूद लोगों ने राजू चंद को रोका, लेकिन जैसे ही पता चला कि वह इतनी लंबी पैदल यात्रा करके आए हैं तो तुरंत ही पूर्व सांसद से उन्हें मिलवाया गया। ब्रिजभूषण सिंह ने राजू चंद का स्वागत माला पहनाकर किया तथा वहां मौजूद सभी लोगों से उनका परिचय करवाया।
1: जनपद गोंडा में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य कंपनी ने मार्ग पर मिट्टी भराई और अंडरपास बनाने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि भारी मशीनों और आधुनिक उपकरण से हो रहे काम को देखकर श्रद्धालुओं में मार्ग के समय तैयार होने की उम्मीद है। बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से गोंडा, बस्ती, अयोध्या और बाराबंकी में कुल 275 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। जनपद में इसकी लंबाई बहुवन मदार माझा से जगन्नाथपुर तक 64 किलोमीटर है। यह सरयू नदी के किनारे पसका, माँ वराही धाम, उमरी बेगमगंज, डिक्सिर, आमदही, जमथा, रांगी, तुलसीपुर माझा, दुल्लापुर, रेहाती होते हुए बस्ती जनपद में प्रवेश करेगी।
0: तरबगंज इलाके में जमथा गांव में पुरानी दुश्मनी की वजह से मां बेटे पर हमला किया गया। यह घटना सोमवार सुबह करीब 8 बजे की है। पीड़ित सुनील कुमार पांडे की शिकायत पर पुलिस ने उन चार पड़ोसियों को पकड़ लिया जिनके खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। सुनील का कहना है कि जब उनकी पत्नी नहा रही थी तब आरोपी लाठी डंडा लेकर आ गए और पुरानी बातों को लेकर के झगड़ा करने लग गए। जब सुनील ने उन्हें रोकने की कोशिश की तब आरोपियों ने उन्हें लात, घूंसे और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने आई सुनील की मां सरोज पांडे को आरोपियों ने उठाकर ईंट पर पटक दिया जिससे उनकी कमर में गंभीर चोट आ गई है। पुलिस अधिकारी श्रीधर पाठक ने बताया कि सुनील की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है।
1: जनपद गोंडा के विद्युत विभाग द्वारा 2.11 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। बता दें कि देवीपाटन मंडल के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था को समाप्त कर दिया है जिससे अब उपभोक्ता पहले की तरह पोस्टपेड सिस्टम के तहत बिजली उपयोग कर सकते हैं और बाद में बिल का भुगतान करेंगे। देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जनपद में कुल करीब 14.5 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें से 2.20 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।
0: गोंडा के बेलसर इलाके में बुधवार को एक सड़क हादसे में 45 वर्ष की रेखा की मौत हो गई। वह अपने 22 साल के बेटे के साथ बाइक पे अपने मायके से घर लौट रही थी। बेलसर गोंडा मार्ग चांदपुर के पास अनजान वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दिया जिससे माँ बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने रेखा को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के अनुसार महिला के सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से उनकी जान चली गई जबकि बेटे का इलाज अभी भी चल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। रेखा के पति की भी एक साल पहले बीमारी से मौत हो गई। उनके परिवार में अब 3 बेटे और 2 बेटियां हैं।
1: जनपद गोंडा में मिशन शक्ति विशेष अभियान के फेज 5 के तहत द्वितीय चरण के अंतर्गत महिलाओं बालिकाओं को किया गया जागरूक। बता दें कि द्वितीय चरण के अंतर्गत महिला एवं बालिका सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता को सही बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री बिरीज जायसवाल के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इस अवसर पर एंटी रोमियो स्क्वाड टीमों एवं महिलाओं पुलिस कर्मचारियों द्वारा मंदिर, भीड़भाड़ वाले स्थान, बाजार एवं सार्वजनिक स्थानों पर विशेष अभियान चलाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। श्रद्धालुओं से संवाद स्थापित कर उन्हें उनके अधिकार, सुरक्षा उपाय एवं पुलिस सहायता सेवाओं के बारे में जानकारियां प्रदान की गई हैं। महिला पुलिस कर्मचारी द्वारा उपस्थित महिलाओं से उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली गई। त्योहार के दौरान सुरक्षित आवागमन एवं संभावित जोखिमों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों को चेतावनी देते हुए सख्त कार्रवाई हिदायत दी गई है जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके। टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को भरोसा दिलाया गया कि गोंडा पुलिस उनकी सुरक्षा एवं सम्मान के लिए सदैव तत्पर है। तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहें रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: डिलीशियस
6: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
6: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45। अरे सुना?
7: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
7: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
8: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
9: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
8: सच में? क्या खास है वहाँ?
9: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
8: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
9: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
8: और फोटोग्राफी वगैरह?
9: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
8: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
9: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
8: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: अच्छा ये बताओ।
2: हाँ सर।
1: तुमने अपनी जिंदगी में कभी कोई नेक काम किया है?
2: हाँ बिल्कुल किया ना सर।
1: क्या किया?
2: एक बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे और मैंने उनके पीछे एक कुत्ता छोड़ दिया और जल्दी से उन्हें उनके घर पहुंचा दिया।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: भारत जिसके हर गांव, हर शहर, हर खेत और हर दिल की धड़कन से आपके लिए आदर और सम्मान की भावना झलकती है, उस मेहनत और अतुलनीय प्रयास को मोज़ैक सलाम करता है।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
2: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450।

0: 44999।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
3: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
2: और जेंट्स के लिए?
3: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
2: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
3: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
9: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
8: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
9: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
8: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
9: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
10: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
11: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
10: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
12: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
13: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
14: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
15: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी, और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
14: सच में, क्या खास है वहाँ?
15: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
14: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
15: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
14: और फोटोग्राफी वगैरह?
15: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
14: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
15: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
14: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
0: अरे सुना?
16: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
16: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404 8840339584। 88404। अब सपने होंगे साकार।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: डिलीशियस
3: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
3: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।

जश्न अगर शुरू हुआ है तो दूर तक जाएगा, बात यहाँ से नहीं निकली बल्कि देश विदेश तक पहुँचाने के लिए एक मशाल बनी है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है परमार्थ भाई। परमार्थ जी, आपको सुन के ये याद आ रहा है, परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। जी हाँ बिल्कुल, हम साधु बने या फिर हम बने कुछ और, रहेंगे आपके हमेशा सुनो करके गौर। फिलहाल आरजे बीना के स्टाइल में थोड़ी सी शायरी जरूर दिख रही होगी, लेकिन बात होगी थ्रिलर की, सस्पेंस की और आने वाली और आ चुकी नई मूवी की। जी हाँ, आपका इंतज़ार होता है ख़त्म। आज है फ्राइडे, यानी कि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स वाली मूवीज को रिव्यू करने वाला दिन। लेकिन अभी लेटेस्ट जो आपका जो मेट गाला का जो फैशन कॉन्सर्ट हुआ है, उसके आगे सारी बातें फीकी हैं, बेकार हैं, और मुझे लगता है बॉलीवुड टॉक भी करने का कोई मतलब नहीं। कुछ लोगों ने तो ऐसी ऐसी ड्रेसेस फ्लॉन्ट की है ना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ड्रेस है वो तो पहन के दिखाई जा सकती है ना। जी हाँ, तो आप बताइए, अगर आपको मेट गाला में जाने का मौका मिलता तो क्या आप इतनी महंगी टिकट खरीदते या फिर आप बाहर से ही देख के चले आते? मैं तो भाई देख के टीवी में ही खुश हूँ, मैं क्या करूँगी जाके इतनी महंगी टिकट खरीद के। हाँ, उनकी कॉपी ड्रेसेस बना लूँ। किसी ने तो पूरी किताबें पहन ली और किसी ने अलग अलग पेंटिंग्स को अपने शरीर पे धारण कर लिया। हाँ हाँ, और किसी ने पूरे इतिहास को ही जैसे लगता है दिखा दिया हो। फिलहाल आप लोग के साथ नवे हैं, परमार्थ हैं, तीरथ प्रसाद हैं, सबका स्वागत है। अंबर आए थे और फिलहाल गायब हैं। तो आगे बात करते करते मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज की शाम की शुरुआत होगी आपके साथ, और मैं जैसा कि आप लोग के साथ हूँ, आपकी स्पेशल आरजे बीना आज की जो कहते हैं ना रहस्यमयी जो खिड़कियाँ हैं वो खोलने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारी जो कहते हैं ना बॉलीवुड स्पेशल मूवीज़ जो बॉक्स ऑफिस पे सस्पेंस से सभी को एक जाल में घुमा रही हैं और हमें पता नहीं कि वो कौन सी मूवी है। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज स्पेशली मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुछ थ्रिलर, कुछ स्पेशल सस्पेंस वाली मूवीज़, और उनमें से कुछ मूवीज़ ने तो मेरा ही दिमाग चकरा के रख दिया। भाई टाइम ट्रेवल वाली मूवीज़ देखना किसे नहीं पसंद है, पर ऐसा टाइम ट्रेवल जो कि फ्रीज हो जाओ और आप बार बार एक ही टाइम में घूम घूम के पहुंच जाओ, ये मूवी ना सिर्फ देखने में दिलचस्प है बल्कि आप देखने के बाद भी कुछ देर नहीं समझ पाएंगे भाई आपने देखा क्या है। ऐसी मूवी मतलब क्यूरोसिटी कहीं बंद नहीं होगी, जानने की जिज्ञासा कहीं रुकेगी नहीं, पर जब बात आएगी मूवी को समझने की आपको अंत तक समझ में नहीं आएगा कि इसका पार्ट टू आएगा कि नहीं आएगा। फिलहाल ये मूवी एक बार देखने के बाद आपको दोबारा देखने के लिए मजबूर कर जाएगी। और भाई मैंने कहा ना कि कुछ मूवीज़ बनी होती हैं टाइम ट्रेवल को लेके, तो ये टाइम ट्रेवल वाली मूवी जो है सच्ची बता रही हूँ इतिहास बदल देती है। तो ये मूवी बॉलीवुड की नहीं है, लेकिन हाँ अभी टाइम ट्रेवल की अगर बात करें तो ये टाइम ट्रेवल की बेस्ट मूवी हो सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं किस मूवी के बारे में बात कर रही हूँ, आप लोग भी सोच के बता दीजिए, वॉच मैकेनिक वाली तो नहीं है, कौन सी वाली है, कौन सी वाली, दिमाग लगा लीजिए, और अगर दिमाग ना लगे तो फिर मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल मेरे पास तो बहुत सारी मूवीज़ का नाम है। अगर बात करूँ तो एक मलयालम मूवी है जिसमें टाइम को इस तरह से दिखाया गया है ना कि आप सोच के भी खतरनाक वाली वाइब आएगी। जी है संभवम अध्यायम उनु, ये है मूवी, मलयालम मूवी है, हिंदी में आपको मिल जाएगी। मूवी का नाम है संभवम अध्यायम उनु, ये मलयालम मूवी है जिसमें टाइम का एक चक्र, चलिए स्टोरी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ जिससे आपके अंदर जो क्यूरोसिटी का जो लेवल है ना वो बढ़ा रहे। तो इस संभवम जो मूवी है, नाम ही इतना ख़तरनाक है कि बोलने में दो चार मिनट लग जाएंगे। मूवी का नाम है संभवम अध्यायम उनु। ये बेसिकली क्या है, एक आदमी से शुरू होती है जो कि अपनी पत्नी के पास से आ रहा होता है। एक्चुअली में उसने कोई मतलब क्या कहते हैं केस सॉल्व कर दिया था जो नहीं करना चाहिए था, और इसी के चक्कर में उसका ट्रांसफ़र ऐसी जगह होता है जहाँ नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो जिस जंगल में ट्रैवल करता है वो एक शापित जंगल होता है। बेसिकली वहाँ पे एक ट्राइब रहते थे और वो ट्राइब जो हैं वो एक मूर्ति की पूजा करते थे, जो मूर्ति बेसिकली आधी
आधी जो थी कौवे की थी और आधी इंसान की, ठीक है। तो वो लोग ट्राइब क्या करते थे, एक साल में एक बार उनकी खूब पूजा करते थे, उनके राउंड राउंड घूमते थे और अपनी विशेज रखते थे। तो उनकी ट्राइब का ये कल्चर था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि पुर्तगालीज आए, मतलब यहाँ हमारे इंडिया, और उन्होंने हमारे जितने भी स्कल्पचर्स थे, जितनी भी मूर्तियाँ थी, उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। और उनका टारगेट ये मूर्ति भी बनी, और उन्होंने जितने भी ट्राइब वहाँ रहती थी, ट्राइब कम्युनिटी, उन सबको मार दिया। मारने के बाद जैसे जैसे वहाँ पे, मतलब जितने ट्राइब्स को मारा गया और उनका खून गिरा, इस वजह से वहाँ की जो ज़मीन है वो श्रापित हो गई। लोग बहुत, मतलब बेसिकली उन्होंने शूट करके वहाँ के ट्राइब्स को मारा था, मतलब शूटिंग की थी, मतलब गन से शूट किया था। तो जैसे शूट होता था वैसे ही वहाँ की जो धरती थी वो श्रापित होती जा रही थी खून और शूट की आवाज़ से। तो वो वहाँ पे श्रापित इस तरह से हुई कि जब भी वहाँ खून गिरेगा और गन साउंड होगी या तेज़ आवाज़ होगी, तो वो श्राप जो है वो आपको किसी दूसरे टाइम में ले जाके फेंक देगा। जैसे मान लीजिए मैं उस जंगल में गई और मैंने देखा कि मैंने एक जंगल का शिकार, एक जानवर का शिकार किया, जानवर को गोली मारी, जानवर को गोली मारने से साउंड हुई और जानवर का जैसे ही खून धरती पर गिरा, तुरंत आसमान काला हो गया और मैं एक नए समय पहुंच गई। जैसे 2026 से मैं 1994 में पहुंच गई या 1944 में पहुंच गई, ऐसे करके एक लूप बन गया था। तो 5-6 लूप ऐसे चल रहे थे जिसमें लोग ऐसे फिके जा रहे थे, कोई कहीं पड़ जाता था, कोई कहीं पड़ जाता था, कोई कहीं पड़ जाता था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। इसको डिकोड करने में किसी को समझ ही नहीं आ रहा था, कोई किसी को पता ही नहीं था कि वो, इनफैक्ट कुछ तो सीन ऐसे दिखाए गए जिनको देखने के बाद आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, कि बेटा जो कि जिसके पिता कई सालों पहले मर गए थे, वो टाइम लूप में फंस गया और वो अपने पापा के पास वापस पहुंच गया। उसे उसके पापा को ये नहीं पता कि ये मेरा बेटा है, लेकिन उसके बेटे को ये पता क्योंकि उसके पास अपने पापा की फ़ोटो है। तो ये मूवी आपको इतना दिमाग घुमाएगी, इतना दिमाग घुमाएगी कि आप अपने दिमाग को पानी में डालेंगे और ठंडा करेंगे, फिर मूवी देखना शुरू करेंगे, मूवी छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा दिलचस्प कहानी है। लास्ट तक उस, जो कहते हैं ना कि श्राप को मुक्त कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है वो हीरो, लेकिन अब उसके दिमाग में ये आ गया था कि उसको उस समय में जाना पड़ेगा जब ये श्राप शुरू हुआ था, यानी कि जब पुर्तगालीज आए थे और उन्होंने ट्राइब कम्युनिटी को मारा था, उसे ट्राइब कम्युनिटी को मारने से रोकना था, तब जाके वो जो श्राप था वो ख़त्म होता और ये जो टाइम लूप जो चल रहा था वो रुकता। लेकिन क्या करें, मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। इसी बीच कई सारे कैरेक्टर्स, कई सारी कहानियाँ जो आपको हैरान कर देने वाली हैं। तो अगर आपको कुछ सस्पेंस, ऐसा सस्पेंस जो आपके दिमाग को दही बना दे और फाइनली बटर मिल्क बना के आपको पिला दे, ऐसी मूवी देखने का मन है तो ये मूवी आपके लिए बनी है। तो मैं आपको बोलूँगी ये मूवी 10 में से इसको मैं 9 दूँगी। एक इसलिए काट रही हूँ क्योंकि लास्ट तक, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा जितनी सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई, लेकिन आपको देख के मज़ा ज़रूर आएगा। मतलब दिमाग कितना लगाया है मेकर्स ने। अगर हम लोग सोचें तो हम लोग ऐसी मूवी कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन बनाने वाले ने बना डाला। और ये मूवी रिलीज़ हुई है 15 अप्रैल को, ठीक है। तो सस्पेंस है, थ्रिलर है, और ऐसी फिल्में जो है ना अक्सर हमको एक सवाल के साथ छोड़ के जाती हैं कि भाई मेकर्स ने क्या कर डाला है। और ये फिल्म जो है केरल तमिल सीमा के, जो कहते हैं ना एक रहस्यमयी जंगल है जिसका नाम है वल्लूर काट, इस जंगल पे निर्धारित है। और यहाँ पे एक लापता पुलिस अधिकारी होता है जिसको खोजने के लिए 3 केरल के पुलिस अधिकारी निकलते हैं, लेकिन जो लापता पुलिस अधिकारी होता है वो 1944 से कॉल करता है 2024 में। भाई बहुत ख़तरनाक स्टोरी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार देख लीजिए। ये फिल्म जो है ये जियो हॉटस्टार पर ऑन स्क्रीन टाइम भी आपको मिल सकती है। तो बिल्कुल, मतलब इसका जो लेवल है वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या बना डाला है। तो अगर आपने कुछ नया देखने का सोच लिया है तो ये मूवी आपके लिए। और आप देखने के बाद मुझे ये ज़रूर कहेंगे कि मैम आपने क्या बता दिया, क्या बता दिया है, क्या बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपका मन कुछ अच्छा देखने का है तो बिल्कुल देख सकते हैं। एक्टर्स के नाम मैं बता देती हूँ, इसमें डायरेक्शन जो है जीतू साथीसान मंगल थू का है और इन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। साथ ही साथ इसमें एक्टर आपको मिल जाएंगे नीथू कृष्णा, अक्सर अली, सिद्धार्थ भरस्थान, कडासुनाद कनकम, विनीत कुमार, सेंथिल कृष्णा, आसिम जमाल, गौरी विनीत, फहद सदीक, राजेश अजिक्कन, मतलब इन सब का नाम आपने वैसे सुना नहीं होगा लेकिन मूवी देखने के बाद आपका मन करेगा कि इसमें से जानूँ ये कौन है, भाई ये वाला करेक्टर बहुत मस्त प्ले कर रहा है। तो चलिए
हम लोग सुनते हैं एक बढ़िया सा सस्पेंस वाला, थ्रिलर वाला गाना। लेकिन ये मूवी देखने के बाद अगर आप लोगों ने मेरी पीठ नहीं थपथपाई तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए आप लोग के साथ इस गाने को एंजॉय करते हैं, और आप लोग बताइएगा कि संभवम अध्यायम उल्लू देखने के बाद आपको कैसा लगा। अगर देख रखिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा।

भाई ये म्यूजिक निकालने के लिए बड़ी मेहनत मैंने की और फिर जाके मैं ये म्यूजिक बना पाई। फिलहाल आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लगा ये गाना। और भाई देखिए देखिए कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनको सुनने के बाद मन में एकदम सस्पेंस आ जाता है, पर क्या करें हम लोग सस्पेंस और ये सारी मूवी देखने के लिए एकदम परेशान रहते हैं। मन करता है यार इस गाने को बार बार सुनने का। मुस्कान झूठी है, फिलहाल मुस्कान झूठी है कि नहीं फिलहाल ये बात आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये बात मैं डिसाइड करूँगी, क्योंकि मैं आगे आप लोग को ले चल रही हूँ एक और मूवी की तरफ जो आपको ले चलेगी सच्ची मुस्कान की तरफ। जी हाँ, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। यस यस यस। तो इस थोड़े से थ्रिलर डराने वाले गाने को सुनने के बाद आपके दिल की धड़कनें भी कह रही होंगी माँ ये क्या हो रहा है। तो चलिए आप लोग के साथ मूवी रिव्यू करते करते मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा नया कर लिया जाए कुछ। और आपके OTT प्लेटफॉर्म्स ने तो हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन करके रखा हुआ है, पर एक और मूवी जिसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया लेकिन कुछ बताया ज़रूर है। क्या क्या बताया? जी हाँ, वही जिसका जवाब जानने के लिए आप बहुत दिनों से परेशान थे और बहुत दिनों से मैं भी सोच रही थी। एक मूवी जिसको मैं आपको रिव्यू कर दूं भाई, एक फाइनल क्वेश्चन यानी कि आखिरी सवाल नाम की मूवी आई है, अभिजीत मोहन वारंकी जो है, और इसमें स्टार किया है आपके संजय दत्त ने। तो अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा सवाल है जो आखिरी हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं जो आखिरी होते हैं, हर पेपर में एक आखिरी सवाल होता है और उस आखिरी सवाल का जवाब आखिरी बिल्कुल नहीं होता क्योंकि उसके नए नए जवाब बनते रहते हैं उसकी सिचुएशन के अनुसार। फिलहाल मैं इस मूवी के बारे में आप लोग को और अच्छे से बताना चाहती हूँ और आप लोग का भी मन कर रहा होगा कि जाने कि ये मूवी आपको किस दुनिया में ले जाने वाली है। फिलहाल आपको बता दूँ कि ये जो मूवी है ये एक RSS और पॉलिटिक्स के ऊपर बनी हुई है। आखिरी सवाल की जो कहते हैं ना कि एंट्री हो चुकी है। RSS एक शांत समाज सेवी संगठन है, तो वह गुबंद पर क्यों चढ़े हुए हैं? संजय दत्त का ये आखिरी सवाल है। और अगर बात करें तो ये फिल्म जो है ट्रेलर में महात्मा गांधी की हत्या, RSS, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, आपातकाल जैसे संवेदनशील विषयों पर निशाना साधते हुए दिखती है। संजय दत्त की फिल्म जो है आखिरी सवाल, ये ट्रेलर के साथ साथ हमें हर दिन एक नई चीज़ के साथ रूबरू करा रही है क्योंकि हर दिन इसके नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। मूवी आने के बाद क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन हाँ ट्रेलर ने धमाका मचा दिया है। और एक खास बात यह है कि हमारी ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाती है। बस मेरा मानना ये है कि ये जो मूवी है ये अपने ट्रेलर की तरह बिल्कुल भी ना हो, मूवी में और भी सारी चीज़ें और सच हों, क्योंकि कई बार क्या होता है ये सारे मैटर्स जो है ना लोगों को एक गुमराही का जो रास्ता है वो दे देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई ट्रुथ को गुमराह करने के लिए भी सामने दे, जो भी है पारदर्शी होना चाहिए एंड फैक्टफुल होना चाहिए। विदाउट फैक्ट कुछ भी बताने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग को बता दूं कि आवाज़ और जो रहस्य है वो इस मूवी को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। कहते हैं कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब वक्त वक्त नहीं देना चाहता, फिर भी कुछ फिल्में आके दे देती हैं। और इस फिल्म में अगर थिएटर की बात करूँ तो लोगों को थामे जो सांसें हैं उनको थमाने का जो कहते हैं ना जिम्मा ले लिया है। और सस्पेंस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है इस मूवी में। और आगे मैं बात करने वाली हूँ कि मूवी की जो लंबाई होगी वो 3 घंटे की होगी, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फुर्सत है तभी देखिएगा। सच्ची घटना पर आधारित है तो कंटेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, लोगों को ज़्यादा इम्प्रेस करने वाला है क्योंकि हम लोग रियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और देखिए ऐसे में मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कर्तव्य और भूत बंगला देखी कि नहीं। अगर नहीं देखी तो ये बताइए कि आप कर क्या रहे हैं वीकेंड वीकेंड टाइम पास करने का सोच रखा है? नहीं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं आपने ऐसा सोचा होगा। तो इसी के साथ मैं आपको एक और बढ़िया सा गाना सुना देती हूँ जिसको सुनने के बाद आपके अंदर सस्पेंस और साथ खून करने की जो जज्बे हैं वो जारी हो जाएंगे।

बिल्कुल डार्लिंग के साथ आप लोग कहीं ना कहीं सात खून माफ वाली वाइब तो ले ही रहे होगे, लेकिन लेकिन लेकिन वाइब कोई भी आए, पर मुझे पता है कि जब बात आती है फैशन की तो फैशन कहाँ शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है हमें बिल्कुल पता नहीं। बस कहीं भी कुछ भी मिल जाता है और जो हमारी सेलिब्रिटीज फ्लॉन्ट कर देती हैं वही फैशन बन जाता है। गुड इवनिंग तीर्थ प्रसाद सोनी जी, कैसे हैं आप? पुराने गाने कब सुनाते हैं? रात में सुनाते हैं और बिल्कुल डेली भी सुनाते हैं। अभी 7:15 पे हम लोग गेम्स खेलेंगे, अगर आप गेम जीते हैं तो अपनी पसंद के पुराने गाने भी सुन सकते हैं। आज बॉलीवुड इवनिंग है तो बॉलीवुड इवनिंग में मैं कोशिश यही करती हूँ कि अभी की जो लेटेस्ट मूवीज़ हैं और जो नई मूवीज़ हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए वो मैं बताती हूँ। तो बॉलीवुड इवनिंग का प्रोस्पेक्टिव यही होता है कि आपको ले चलें अपडेट करने। तो मैंने आपको जैसे कि अपडेट कर दिया और आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत है लेकिन आपको जानकारी बहुत इनिशियल लेवल पे ज़्यादा नहीं है। तो आज की शाम हम साथ में चलते हैं न्यूयॉर्क की उन सीढ़ियों पर जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा फैशन धमाका होता है। जी हाँ, लोगों की चर्चा में आज बहुत ज़्यादा है मेट गाला। जी हाँ, मेट गाला नाम ही सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन आपने सोचा कैसे कि इसके बारे में आपको बताऊंगी नहीं। और आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि भाई मेट गाला का फैशन से नाता कैसे है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके मन में जितने सवाल आ रहे हैं उन सभी को मैं बताऊंगी, बिल्कुल परेशान मत होइए। फिलहाल मेट गाला से शुरू करते हैं कि क्या थी इसकी कहानी और कैसे ये शुरू हुआ। और आज 2026 में मेट गाला में एक से एक सेलिब्रिटीज़ ने इतनी महंगी टिकट खरीद के और इतनी महंगी ड्रेस पहन के खुद को कैसे, चाहे वो नीता अंबानी की बेटी हो, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो, चाहे वो आपके अपने कॉफ़ी विद करण हो। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं हम इसके इतिहास की बात। और इतिहास से मुझे याद आता है कि इतिहास हर किसी का होता है, चाहे वो मेट गाला हो चाहे वो हम आप हों। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि गोंडा में चाय पीने का लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है लेकिन चाय के साथ अगर बात हो जाए, प्रपंच हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो आज प्रपंच का जो मेन टॉपिक है वो है मेट गाला और आज आप लोग का जो ध्यान है वो मैं रेड कारपेट की ओर ले जाऊँगी। अक्सर कहते हैं ना रेड कारपेट तुम्हारे लिए बिछाएंगे तब आओगे, तो रेड कारपेट वो है जहाँ पे लोग खुद को फ्लॉन्ट करने आते हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस को दुनिया तक दिखाने आते हैं और उस ड्रेस से एक मैसेज दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो अब मैसेज कैसे शुरू हुआ मैं सब बताना चाहूँगी। तो यहाँ हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड के सभी सितारे आते हैं लेकिन आपको पता है कि इस आलीशान इवेंट को सिर्फ कपड़ों का खेल नहीं समझ सकते, इसके पीछे छिपी है 78 साल पुरानी एक दिलचस्प कहानी। जी हाँ, आज इस इवनिंग में यानी कि बॉलीवुड स्पेशल इवनिंग, फैशन स्पेशल इवनिंग में आपको मैं ले चलूँगी मेट गाला के इतिहास में, जिसके बारे में जानने के बाद आपके रूह की जो कहते हैं ना कि खामोशी है वो चिक चिक के कहने लगी मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। लेकिन आप जाएंगे नहीं क्योंकि आप भी सोचेंगे ना कि हम लोग सेविंग करते हैं, इतना महंगा टिकट लेके हम क्यों जाने वाले। फिलहाल चलिए मैं ले चलती हूँ आपको मेट गाला के इतिहास की ओर। सो बात हो रही है मेट गाला की, तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जो टिकट आज लाखों करोड़ों में बिकती है वो 1948 में उसके सबसे पहले इवेंट की जो टिकट थी वो $50 थी, सिर्फ $50। इसे मशहूर फैशन पब्लिकिस्ट या फिर मैं कह सकती हूँ आपके फैशन सेंस को ज़्यादा आगे रखने वाले एलिनॉर लैम्बर्ट किन्हें इसकी शुरुआत की और एक चैरिटी के तौर पे इन्होंने इसको शुरू किया ताकि म्यूजिशियन के जो कॉस्ट्यूम्स इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके लिए फंड जुटाया जा सके। तब ये एक मिडनाइट डिनर की तरह होता था पर आज ये एक फैशन का ऑस्कर बन चुका है। और अगर मैं बात करूँ तो 2026 का जो थीम था वो था फैशन इज आर्ट। जी हाँ, आप समझ में आया ना कि सब इतने अतरंगी, कोई किसी की पेंटिंग पहन के पहुँच गया, कोई पन्ने पहन के पहुँच गया, ये क्या है मतलब। तो फैशन भी एक आर्ट है, कला है, ये इस बार की थीम थी यानी कि 2026 की थीम थी और इसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी भाई। और ना मैं कहूँ मतलब अगर मेरा मन कहे तो मैं भी सोचूंगी कि मैं क्या पहन के जाती, मेरे दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा था, AI की मदद लेती। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपको दंग कर देंगी। नो फॉन पॉलिसी, मेट गाला के रेड कारपेट के बाद
मतलब अंदर आने के बाद आपको इस रहस्य के बारे में नहीं पता है, क्योंकि अंदर फोन ले जाना, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना सख्त मना है। वैसे कुछ सेलिब जो है वॉशरूम में छिपकर सेल्फी ले लेते हैं, पर वहां पे नो फोन पॉलिसी है। इसके अलावा अप्रूवल बाय अन्ना विंटोर, आप कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, गेस्ट लिस्ट में आपका नाम तभी आएगा जब वोग की एडिटर अन्ना विंटोर उन्हें हरी झंडी देंगी। मतलब आप अगर अंबानी की बेटी हैं या बेटे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको हरी झंडी अन्ना विंटोर ने नहीं दी तो आप नहीं जा पाओगे। आगे खाने की बात करते हैं। यहाँ खाने में कभी भी ऐसी चीज नहीं परोसी जाती जिससे मुंह से बदबू आए या दांत में फंसने का डर हो, जैसे प्याज, लहसुन, अमजोद, ये सारी चीजें नहीं दी जाती हैं। इसी के साथ मैं बता देती हूँ कि स्टाइल जो है वो आपके हर तरह से लुक को, मतलब आप दांत में से प्याज निकाल रहे हैं, लहसुन निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फैशन को नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती खाने के लिए। और भाई मेट गाला की दुनिया जो है वो चाहे प्रियंका चोपड़ा के अलग अलग ड्रेस पहनने के अंदाज से नए फैशन लुक को रिप्रेजेंट करे या फिर ईशा अंबानी के एलिगेंट लुक से, सब अपने अपने अंदाज में सब कुछ बेहतरीन करते हैं। और मैं इसी के साथ आप लोग को ले चलती हूँ आज की खास मतलब रिव्यू सेशन पे कि किसकी ड्रेस ने क्या क्या खास किया था। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि दिल्ली मुंबई के 50 आर्टिस्ट ने 960 घंटे में एक ऐसी ड्रेस बनाई जिसे देखने के बाद दुनिया ने कहा वाह क्या बना है। जी हाँ, 960 घंटे लगे हैं भाई, 960 घंटे। अब आप सोच रहे हैं किसके कॉस्ट्यूम की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ मनीष मल्होत्रा के कॉस्ट्यूम की, जिसने ना सिर्फ मुझे और आपको सबको दुनिया को हैरानी में डाल दिया। मेट गाला 2026 में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा दूसरी बार शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी ड्रेस के जरिए मुंबई और अपने ड्रेस डिजाइनर का जो सफर है वो दुनिया को दिखाया। जी हाँ, और मेट गाला 2026 में जो सेलेब्स थे उन्होंने थीम को और ड्रेस कोड को दोनों को मिला के एक फ्यूजन बनाया था, और बहुत अच्छा फ्यूजन था। इवेंट में मशहूर भारतीय कॉस्ट्यूम डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की अगर बात करूं तो इन्होंने खुद को इतना अच्छा रिप्रेजेंट किया, इनके डिजाइनर्स की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी। रेड कारपेट इवेंट में फिल्म मेकर करण जौहर की बात करूं तो इनकी भी ड्रेस काफ़ी अच्छी थी। तो सबसे पहले मैं मनीष मल्होत्रा की ड्रेस की बात करूंगी, तो मनीष मल्होत्रा की जो ड्रेस थी उसमें बेसिकली स्पेशल चीज़ की जो बात करूं तो कुछ आर्टिकल्स जैसे बना बना के लगाए हुए थे। आर्टिकल्स मतलब कि स्पेशल तौर पे जैसे कहते हैं किसी की छवि दिखाई गई हो, वो छवि किसकी थी अब मैं आपको इनिशियल लेवल पे बताना चाहूँगी कि इनका जो पूरा ड्रेस था उस पर वाइट जैसे कहते हैं ना कैंडल या वैक्स का काम किया गया था। तो सबसे पहले तो आपके मन में ये होगा कि मनीष मल्होत्रा की ड्रेस जो थी ये कैसे इतनी खास बन गई। तो चलिए आप लोग को ले चलती हूँ बताने कि कैसे इनकी ड्रेस इतनी खास बनी। इनकी ड्रेस में खास तौर पे कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स को दिखाया गया था, और उन हिस्टोरिकल इवेंट्स को दिखाने के लिए बेसिकली कुछ आकृतियां बना बना के पूरी ड्रेस पे लगाई गई थी। और स्पेशली लोगों ने जो इसको बनाने में मेहनत की थी वो काबिले तारीफ थी। तो चलिए इस मेहनत पे भी थोड़ी सी मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। और मेहनत की बात करूँ तो हर आर्टिस्ट अपने अपने लेवल पे बड़ी मेहनत कर रहा था, और उस मेहनत का रिज़ल्ट भी साफ साफ दिख रहा था। ठीक है, तो सबसे ख़ास बात ये थी कि इनके ड्रेस में कुछ ख़ास चीज़ें ऐसी बनाकर लगाई गई थी जो इनकी ड्रेस को स्पेशल बना रही थी, और ड्रेस पहनने के बाद कारीगरों का काम भी एकदम क्लियरली दिख रहा था। कारीगरों ने बेसिकली इसमें कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, जिसमें इन्होंने कॉस्ट्यूम के कोट और कैप को भी शामिल किया था, और काम जो था उसमें कढ़ाई की गई थी। ठीक है, और मनीष मल्होत्रा के जो कॉस्ट्यूम थे उसे माया नगरी की झलक दिखाया गया था। इस पर कढ़ाई से ताज महल, पैलेस होटल दिखाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया दिखाया गया था, छत्रपति शिवाजी का टर्मिनल जो डिज़ाइन है उसको दिखाया गया था।
इसी के साथ ही उन्होंने मुंबई की धड़कन कही जाने वाली ट्रेन, टैक्सी, शहर के रोजमर्रा के जीवन को भी कपड़े के ऊपर दिखाया था और ये इनकी ड्रेस को सबसे ज्यादा खास बना रहा था। इस ड्रेस की अगर बात करूँ तो इस ड्रेस में सफेद हाथी दांत के रंग की डोरी, जरदोजी, चिकनकारी, कस्बा का काम अलग लेवल पे किया गया था। ठीक है, कढ़ाई वालों ने दर्जियों को पैटर्न बनाने के लिए कारीगरों को हाथ से हस्ताक्षर करना भी बताया था, जिससे वो हस्ताक्षर बनके तैयार हुआ था और टोटली देखने में लग रहा था कि ये पूरा वैक्स का काम है। आप भी चौंक गए होंगे ना कि भाई ये तो इतना जरी वाला काम था, हमको तो पता ही नहीं था। जी हाँ, यही है मेट गाला की खास, जो आप सोचेंगे जैसा आप सोचेंगे वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसी ही ड्रेसेस के साथ और बहुत सारी हस्तियां हमारे सामने आई थी, तो कुछ नाम मैं आप लोग को और बताना चाहूंगी। तो अब बात कर लेते हैं हमारी प्यारी हना जैक्सन की, हना जैक्सन के साथ क्रिस्टिन एलेरी की, जिन्होंने कई सारी ड्रेसेस को डिज़ाइन किया था। तो चलिए सबकी ड्रेसेस को और एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्लोर करते करते आपको बता देती हूँ कि फैशन का जलवा आगे भी बरकरार रहेगा। अगर बात करें नीता अंबानी की बेटी, यानी कि आपकी फेवरेट खास, जिसका नाम सुनते ही आपके मन में एक कहते हैं ना कि ज्वेलरी की दिमाग में इमेज बन जाती है, रूबी के ड्रेसेस, रूबी की जो ज्वेलरी पहन के उन्होंने खुद को फ्लॉन्ट किया था साड़ी के साथ, एक पल्लू ऊपर से लेने का जो अंदाज था वो उनको खास बना रहा था। जी हाँ, मैं बात करना चाहती हूँ हमारी खास ईशा अंबानी की, जिन्होंने अपनी ड्रेस से मेट गाला में अपनी जो कहते हैं ना अलग इमेज बना दी थी। उन्होंने रूबी के बहुत प्यारे प्यारे से नेकलेसेस पहने हुए थे, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और इसी के साथ ये फेमस हो गई थी मेट गाला में। और इन्होंने हैंड क्राफ्टेड एम्ब्रॉयडर्ड आउटफिट पहनी हुई थी, जो कि न्यूयॉर्क की जो कहते हैं वियरिंग हैंडक्राफ्ट में एक खास लुक दे रही थी। ठीक है, इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि ये लुक जो था स्टाइलिश होने के साथ साथ अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, अब मैं बताना चाहूँगी कि मनीष मल्होत्रा की जो कोलैबोरेशन है स्वदेश में, उसी के माध्यम से इनकी ड्रेस तैयार की गई थी। सेलिब्रिटी जो हैं वो स्टाइलिश जो थी अनायता श्रॉफ अडजानिया, जिन्होंने इनकी ड्रेस को खुद स्टाइल किया था और क्लासिक बैज दिया था। ठीक है, और ये ड्रेस भी इनको काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लुक दे रही थी। और अब मैं आगे चलते हुए आप लोग को एक गाना सुनाती हूँ और बता देती हूँ कि कुछ ही देर में आप लोग आज स्पेशल मेट गाला क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे। जो सबसे करेक्ट आंसर देगा उसको अपनी पसंद का गाना सुनने को मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं गाना। फैशन का है ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, यस।

इश्क करने के बाद लगता है ना कि मर जाऊं कहीं जाके और सामने वाले से रिवेंज ले लूं अगर वो हमारी एक भी बात नहीं मानता। लेकिन आप लोग मेरी बात मानते हैं मुझे पता है, और मेरी जो आपकी केमिस्ट्री है ना वो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए मेट गाला के कुछ क्विज के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। मुझे पता है कि अगर आप लोग अपने क्विज का आंसर देंगे और आप भी अपने पसंद के गाने सुन पाएंगे। वैसे बहुत सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्विज का आंसर देने में एक्सपर्ट्स हमारे नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल आप लोग के लिए मैं क्वेश्चंस ले आई हूँ, देखते हैं आंसर कौन सबसे पहले सबसे फास्ट देता है। जो सबसे फास्ट दो लिसनर सबसे पहले आंसर देंगे उनको मिलेंगे अपनी पसंद के गाने सुनने को। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग के लिए है वो है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को नहीं सुना और आंसर सही से नहीं दिया तो आप कहीं ना कहीं अपने जो कहते हैं ना कि पसंद के गाने सुनने से पीछे हट सकते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ 2026 एग्जीबिशन दैट इंस्पायर्ड द मेट गाला। मेट गाला में हुए जो कॉस्ट्यूम का जो एग्जीबिशन था उसकी ऑफिशियल थीम क्या थी 2026 में? वैसे मैंने थीम बता रखी है, जल्दी से जो थीम बताएगा वो अपनी पसंद का गाना अपने नाम कर जाएगा। तो जल्दी से सोच के बताइए इस बार की थीम क्या थी।

तो आंसर देने वाले फटाफट से रेडी रहें और फटाफट आंसर दे के अपने पसंद का गाना सुन लें। क्वेश्चन मैं रिपीट करना चाहती हूँ, व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ मेट गाला फैशन इवेंट 2026? 2026 के मेट गाला फैशन इवेंट की इस बार की थीम क्या थी?

जी बिल्कुल, पायल में किसी की जान अगर आपने बांध दी है तो बिल्कुल उसको आप घुमा रहे हैं इधर से उधर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आंसर दे दिया है सविता जी ने और आंसर आया है सविता जी का। उन्होंने बताया है कि आंसर है, जी हाँ, जिसकी उम्मीद आपने नहीं की थी बस वही, जी हाँ आंसर है आर्ट एज फैशन। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में या अंग्रेज़ी भाषा में बताऊं तो कॉस्ट्यूम आर्ट या फैशन, फैशन इज़ एन आर्ट। तो फैशन एक आर्ट है, कला है, यही इस बार की थीम थी और इसका आंसर दिया है सविता जी ने। और सविता जी को अपनी पसंद का गाना सुनना है तो चलिए इनको इनकी पसंद का गाना सुना देते हैं। एंड आप लोग बताइए, आप लोग अपना गाना सुन भी पाएंगे या फिर ऐसे ही वक्रा वक्रा स्वैग करते हुए घूमते फिरेंगे। तो चलिए आपके कहते हैं ना कि आंसर्स का इंतज़ार बना रहेगा। अगला क्वेश्चन मेट गाला 2026 से आप लोग के लिए आपके कानों में ये रहा। आई होप आप लोग का मन जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि परेशान करता होगा, लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो है वो आसान भी होता है और आसान होने के साथ साथ अगर आपको आपकी कहते हैं ना कि फेमस कहते हैं ना कि सेलिब्रिटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए तो क्या मज़े आ जाएं, क्या मज़े आ जाएं। तो सबसे पहले तो मैं जो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आप लोग को बताना चाहती हूँ, क्वेश्चन है कि इस बार मेट गाला की जो मार्किंग मॉन्यूमेंटल रही, उन्होंने किस म्यूज़िक सुपरस्टार जो कि अटेंड नहीं किया, जिन्होंने बहुत सालों से ये क्या कहते हैं इवेंट मेट गाला का, और वो म्यूज़िशियन है, उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया। तो मेट गाला इज़ अ मार्किंग मॉन्यूमेंटल रिटर्न फॉर विच म्यूज़िक सुपरस्टार हु हैज़न्ट अटेंड द इवेंट इन द डिकेड। यानी कि पिछले 10 सालों से ऐसे कौन से म्यूज़िक मॉन्यूमेंट रहे जिन्होंने, मतलब उनके लिए मॉन्यूमेंट रहा इस बार का इवेंट और उन्होंने 10 सालों से अटेंड नहीं किया। नाम बताना है आपको, ऑप्शंस दे देती हूँ, रिहाना, लेडी गागा, टेलर स्विफ्ट एंड बियॉन्स। कौन है आप आंसर बताइए। तब तक के लिए सविता जी की फरमाइश का हम लोग गाना सुन लेते हैं। सविता जी को बहुत ही प्यारा सा गाना सुनना है, लेट्स एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग बसूरी इन पाकिस्तानी स्टाइल। जी हाँ, पाकिस्तानी म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है और पाकिस्तानी म्यूज़िक इनको बहुत पसंद है, इसीलिए इनकी पसंद का ये गाना सुनते हैं।

रिहाना ने खुद को रिप्रेजेंट किया था, बट ये पिछली बार अटेंड कर चुकी हैं। आंसर रिहाना तो नहीं है, पर आपने रिहाना बताया क्योंकि उन्होंने एज अटेंड तो किया था, तो इसलिए आपको आपकी पसंद का गाना सुनने को मिलेगा। प्रीति जी, आंसर है बियॉन्स। तो कौन सा गाना सुनेंगी प्रीति जी? वेरी गुड इवनिंग, कैसी आइसक्रीम ले आई है, थैंक यू सो मच। लेकिन इतने दिन से कहां गायब थी, बताया नहीं आपने। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम सविता जी, और उसके बाद हम सुनेंगे प्रीति जी की फरमाइश का गाना। और अगले क्विज के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। मेट गाला का जो ये फैशन ऑस्कर है, ये इवेंट किस सिटी में कंडक्ट हुआ? ऑप्शन है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दुबई। मेट गाला 2026 इस बार किस सिटी में कंडक्ट हुआ? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दुबई। सोच के बताइए।

मेट गाला 2026 किस सिटी में कंडक्ट हुआ, आप लोग सोच के बताइए। गुड इवनिंग आशु जी, कोई आइसक्रीम खिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है। पहले मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ, फिर चाय पी लेती हूँ। तो आंसर प्रीति जी ने भी दिया था। प्रीति जी अपना गाना सुनने के लिए आप डिमांड कर लीजिए। और आशु जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, न्यूयॉर्क में। और आशु जी यार अपनी पसंद का गाना ना सुने, ऐसा कैसे होता है।

पहले हम लोग प्रीति जी का गाना सुन लेते हैं और इसके बाद हम सुनते हैं गाना आशु जी का, और इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने मेट गाला में जाइंट पिंक गाउन पहनकर सिंड्रेला वाइफ दी थी। अब आप सोच के बताइए किस सेलिब्रिटी ने मेट गाला में पिंक गाउन पहनकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने सिंड्रेला वाइफ दी थी। जल्दी सोच के बताइए। और मैं ऑप्शन दे देती हूँ, आलिया भट्ट, प्रियंका

0: मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संधिरा, सिर्फ तुम्हारा।

बिल्कुल सही आंसर फिर से हमें मिल चुका है। दीपिका पादुकोण इज द करेक्ट आंसर। और ये 2019 में पिंक गाउन लुक में दिखे थे जिसमें ये बिल्कुल सिंड्रेला लग रही थी एंड बहुत खूबसूरत। और इस बार प्रियंका जी ने भी कुछ अलग सा लुक दिया था जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर इनको देख के कोई भी इनका दीवाना हो जाता है, इतनी खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू सो मच।

0: अच्छा ये बताइए, अगर मेट गाला में आपको इंडियन ट्रेडिशनल लुक देना हो तो कौन सी चीज पहनने के बाद ज्यादा आप इंडियन लुक को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? ऑप्शन ए स्नीकर्स, ऑप्शन बी डेनिम जैकेट्स, ऑप्शन सी लहंगा एंड ऑप्शन डी साड़ी और एम्ब्रॉयडरी। सोच के बताइए, स्नीकर्स, डेनिम, कैप, लहंगा या फिर साड़ी और एम्ब्रॉयडरी, कौन सी ड्रेस के साथ आप ज्यादा इंडियन ट्रेडिशनल लुक दे सकते हैं? हमारे साथ सबलू जी है, क्या हाल है सबलू जी, कैसे हैं आप? और अब गाना सुनने की बारी है हमारी फिर से आशु जी की। फॉर्चुनेटली इन्होंने फिर से अपना जो कहते हैं ना कि राउंड में अपना नाम जो है लिख लिया है, और अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग मुझे पता है बहुत ही आसानी से आंसर दे देंगे, तो ये आसान वाला क्वेश्चन आसान आंसर देने के लिए। तो चलिए सुन लीजिए ये गाना हमारी प्यारी आशु जी के लिए, दिल वालों के दिल का करार लूटने
1: कमर मटका के,
2: हाय हाय हाय हाय हाय हाय,
1: नागिन से बल खा के,
2: हाय हाय हाय हाय।

बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है सबलू जी ने और प्रीति जी ने। तो सबसे पहले फरमाइश प्ले होगी सबलू जी की। नहीं, सबलू जी आपने गलत आंसर दिया। लहंगा इज नॉट अ ट्रेडिशनल लुक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का जो ट्रेडिशनल लुक है वो है साड़ी, और साड़ी का आंसर दिया है प्रीति जी ने। फिलहाल मैं गाना प्ले करूंगी सबलू जी का, क्योंकि उन्होंने बहुत मतलब अभी तक उनका भी गाना प्ले नहीं हुआ। तो सबलू जी आप फरमाइश कर सकते हैं। नीना जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। चलिए आपका गाना भी प्ले हो जाएगा। मुस्कुराते रहिए लेकिन मुस्कान आपकी मुस्कान ही रहनी चाहिए, मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए। अरे अगला क्वेश्चन कौन सुनेगा? अगला क्वेश्चन तो सुन लीजिए आप लोग। आ गए आप लोग? जी हाँ। अच्छा ये बताइए मेट गाला का मेन पर्पस क्या होता है? मूवी प्रमोशन, सिंगिंग कंपटीशन, चैरिटी फंडरेसियर फॉर फैशन म्यूजियम, या फिर अवार्ड शो? इनका मेन मोटो क्या होता है? चार ऑप्शन है, मूवी प्रमोशन, सिंगिंग कंपटीशन, चैरिटी फंडरेसियर या फिर अवार्ड शो। मैंने आंसर स्टार्टिंग में ही बताया था, आप लोग को पता होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को याद भी होगा। तो चलिए सुनते हैं। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत। तो बहुत प्यारा सा गाना है, सुन लेते हैं। इस मूवी में अलका की आवाज़ बहुत प्यारी है, और अलका जी की आवाज़ ख़राब होने की वजह से, उनके गले में प्रॉब्लम आने की वजह से वो गाना नहीं गा सकती। इस बात का मुझे बहुत दुख है, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत सी आवाज़ हमने खो दी।

नहीं होती। हाँ भाई, आंसू का कोई पीएच या कुछ भी नहीं होता है, पर हाँ प्रचार करना अवार्ड शो नहीं, प्रचार करना अवार्ड, नो बिल्कुल सबके गलत आंसर हैं। और आंसर सही जो है वो है कि जितने भी फैशन आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए फंड इकट्ठा करना। ठीक है, तो आपने सुन लिया ये गाना, और अब बारी है सबलू जी की फरमाइश का गाना सुनने की। प्रीति जी ने गाना अपना सुन लिया है, सबलू जी गाना सुनेंगे। बहुत ही प्यारा सा गाना है जिसको सुन के मेरा मन करता है ना कि बारिश हो जाए अभी। तो मेघा रे लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज़ में, प्यासा सावन 1981 की फिल्म है जिसमें आपको जितेंद्र के साथ रीना रॉय दिख जाएंगी। तो बहुत प्यारी सी मूवी है, चलिए एंजॉय करते हैं इसका गाना और म्यूज़िक।

कौन है भाई जो शादी ब्याह में बिजी है और बता नहीं रहा क्या हो रहा है? मैम ये क्या सुना रही हैं आप? मैं तो मेघा रे ही सुना रही हूँ, और क्या सुना रही हूँ? वही जो आप सुन रहे हैं। क्यों, गाना आप लोग नहीं सुन रहे हैं क्या?

सो नीना जी की फरमाइश का गाना भी मैं प्ले कर देती हूँ, और इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग को आज मेरे साथ शेयर करनी अपनी फरमाइश, और आज आपकी फरमाइश प्ले करने के लिए कोई और नहीं, आपकी आरजे बीना है। सो लेट्स एंजॉय द सॉन्ग तू ही हकीकत फ्रॉम नीना।

अरे क्या हो रहा है भाई, क्या लिख रहे हैं और क्या लिखा जा रहा है। तो भाई आप लोग की फरमाइशी वाली शाम में आरजे बीना आप सभी का करती है स्वागत। और बिल्कुल जैसा कि आपको पता है कि म्यूजिक का सफर जो है वो इतना आसान नहीं है। जब हम म्यूजिक के सफर पे जाते हैं तो हमारा मन करता है कि हम कुछ बेसिक म्यूजिक की बात भी कर लें, लेकिन बेसिक म्यूजिक से आप लोग की फरमाइश का क्या लेना देना। बस ये होता है ना कि आप लोग जब फरमाइश करते हैं तो अपनी अपनी चॉइस को डेडिकेट करते हैं एक दूसरे को। पर मैं आपको बताऊं, म्यूजिक एक आर्ट है, आर्ट के साथ साथ म्यूजिक को जन्म देती है पोइट्री। और पोइट्री एक पोएट से बेहतर कोई क्या जानेगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कविताएं लिखते हैं, चाहे वो प्रीति जी हों चाहे वो आशु जी हों, बहुत सारे लोग कविताएं लिखते हैं और बहुत बढ़िया। सबलू जी भी लिखते हैं, सबलू जी बेहतरीन कविताएं लिखते हैं। ऐसे ही गौरव जी हैं, बहुत सारे मतलब लोग ऐसे हैं जो अनूप जी हैं जिनका नाम मिस हो रहा है, वो परेशान नहीं होंगे, नाम मैं सबके ही ले रही हूँ। तो कविताएं लिखना आर्ट है और वही कविताएं लिखने वालों में नाम कुछ ऐसे हैं जिनका आज मैं नाम लेना वाला हूँ, जिनका नाम आज अमर किया गया है और वो नाम कोई और नहीं रविन्द्रनाथ टैगोर का है। बंगाली कविताओं में, बंगाली गीतों को लिखने में उनका अहम रोल रहा है। फिलहाल आज फरमाइशियों के लिए आपके मैं कुछ कहना चाहूंगी कि कुछ गीत सिर्फ सुर नहीं होते, कुछ धुने दिल का एहसास होती हैं, किसी की याद किसी का इंतजार होती हैं, तो किसी अधूरी मोहब्बत की बात होती हैं। अब जब श्रोताओं की फरमाइश जुड़ जाए तो हर गाना और भी खास होता है, क्योंकि ये सिर्फ गाना नहीं किसी जज्बातों का पैगाम होता है। कोई कहीं मुस्कुरा रहा है तो कहीं यादों में कोई खोया है, ये मेरे सारे लिसनर्स की फीलिंग बता रही हूँ मैं। कोई कहीं मुस्कुरा रहा है तो कोई कहीं यादों में खोया है, किसी ने अपने गालों को आंसुओं से भिगोया है, कोई दोस्ती निभा रहा है तो कोई प्यार में सोया है। तो चलिए फरमाइशों के दौर में हमने कहाँ एक भी मिनट खोया है। तो चलिए सबसे पहला फरमाइश का गाना सुनते हैं सुरेंद्र यादव का। कौन सा गाना है भाई सुनना चाहते हैं, चलिए प्ले करते हैं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दे। लेकिन गाना आप लोग मुफ्त में नहीं सुनेंगे, मतलब आपको रेट करना है किसके गाने को कितने पॉइंट्स देंगे। तो इस गाने को मैं दूंगी 10 में से 8 पॉइंट्स। गाने की लिरिक्स बहुत अच्छी है, थोड़ा सा ओल्ड है पर वाइब अच्छी देता है, और इसीलिए इस गाने को मैं 10 में से 8 पॉइंट्स दे रही हूँ। आप लोग क्या देना चाहेंगे, आप स्टार्स के तौर पर भी दे सकते हैं। नाइस चॉइस सुरेंद्र यादव जी, स्वागत है आपकी चॉइस का।

आपको पता है इस गाने को किसने आवाज दी है? जो मुझे बताएगा उसको मैं सबसे होशियार समझूंगी। वैसे जिसने फरमाइश की उसको तो पता है, जिसने नहीं की उसे पता होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, ये SP बाला सुब्रमण्यम का गाना है। इनके बहुत सारे रेयर रेयर गाने हैं जिनको सुन के आपको पता ही नहीं चलेगा ये इनकी आवाज़ है या फिर किसी और सिंगर की।

जी हाँ, वादा अगर किया है तो गाने तो प्ले करूंगी ऑफ कोर्स, और सबसे बढ़िया गाना आप लोग फरमाइश कर रहे हैं। सारे गानों को मैं 10/9 देना चाहूंगी, नहीं 9/10 देना चाहूंगी, क्योंकि गाना वाकई बहुत अच्छा है। और अभी बारी है हमारी अगली लिसनर यानी कि आशु जी की फरमाइश का गाना सुनने की, और इन्हें सुनना है गाना तेरा साथ है तो। इनडायरेक्टली मैं अगर ये गाना आप लोग को डेडिकेट करूँ तो क्या आपको बुरा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सीरियसली विदाउट यू आई एम इनकम्प्लीट। लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग।

इस गाने को सुन के मैं भाई मेलोडियस हो गई। और कहते हैं कि हर धड़कन का अपना एक तराना होता है, हर दिल का कोई ना कोई अफसाना होता है, और जब बात होती है फरमाइशी गीतों की तो हर गाना किसी अपने का बहाना होता है। तो चलिए हम सुनते हैं संतोष जी की फरमाइश का गाना, फिल्म सड़क से, और गाना है रहने को घर नहीं। भाई कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है लोगों को सच में घर नहीं मिलता है, और बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप नए हैं तो। तो चलिए, घर तो हम सभी के पास है, और एक घर तो आपका हमेशा आपके लिए तैयार है, वो है आपका रेडियो ज्ञान सिटी 9.6 FM।

आप लोगों ने ये गाना सुना था संतोष जी की फरमाइश पे, और अब अगले गाने की बारी है जो कि सबलू सामत जी सुनना चाहते हैं, गीत बन के लबों पे, फिल्म अधर्म से अनुराधा पौडवाल पंकज उदास की आवाज़ में।

तो अब पारी है अनुष्का के फरमाइश के गाने को सुनने की, और अनुष्का सुनना चाहती हैं गाना अक्सर इस दुनिया में। यस, मैं बताऊं कि कुछ गाने चाय की पहली चुस्की जैसे होते हैं जो थके हुए दिन को सुकून दे जाते हैं, और कुछ गाने पुरानी यादों की तरह अचानक आकर आय हाय दिल को मुस्कुराता हुआ छोड़ जाते हैं। फिलहाल ये गाना भी ऐसा ही दिल को मुस्कुराता हुआ छोड़ने वाला। अभी आप सुन रहे हैं अनुष्का की फरमाइश का ये गाना अक्सर इस दुनिया में। भाई थोड़ा वेवफाई वाला गाना टाइप है, और इसमें आपके हमारे छट्टी महाराज जी सुनील छट्टी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन इनका नाम असली में सुनील शेट्टी है। तो सुनील शेट्टी वाला गाना आप लोग के साथ चलिए इन्जॉय करते हैं।

तो भाई ये गाना आप लोगों ने सुन लिया है, और अगला गाना जो है वो है मजीत जी की फरमाइश का। मजीत जी सुनना चाहते हैं गाना गीत बन के, सॉरी जान बन, जान निसार तेरे प्यार पे। तो ये गाना फिलहाल मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन इन्होंने फरमाइश किया है, तो चलिए सुन लेते हैं। फिल्म केदारनाथ का है, जान निसार, और मजीब जी आएगी आपकी फरमाइश का गाना। और देखिए, इस गाने के बाद हम लोग सुनेंगे गाना राजेश सिंह जी, मालवीय नगर जिसे हैं, मालवीय नगर से हैं। और आज आपको बता दिया मैंने कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कहते हैं ना एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी। और आप सभी को पता है कि इतिहास के पन्नों पे इनका नाम जो है ना स्वर्णिम अक्षरों से लिखा है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था, जैसे कि आज तो नहीं है, लेकिन हाँ सेलिब्रेशन जो है 2 दिन तक होता है वेस्ट बंगाल में। और इसी बिहाफ पे मैं आज आप लोगों से के बारे में बात कर रही हूँ। और आप लोग को बताऊँ कि आज जैसे कहते हैं ना रविन्द्रनाथ जयंती, या फिर इसको पोंशोची बोइशाक भी बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये बंगाली मंथ का खास दिन होता है, क्योंकि ये दिन पोइट्री और म्यूज़िक को क्या कहते हैं डेडिकेटेड होता है। क्योंकि कल्चरल इवेंट्स की बात करें उसमें रविंद्र संगीत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और रविंद्र संगीत कहीं ना कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर के अंदाज, उनकी पोइट्री, उनके रेसिटेशन, उनके डांसेस से इंस्पायर होकर लिखा, मतलब किया गया है। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ तो गीतांजलि उनकी जो बहुत बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट ऐसी यूरोपियन कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन थी जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। तो लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जल्दी किसी को मिलता उलता नहीं है, वैसे हमारे इंडिया में तो बहुत ही कम मिले हैं। तो इंडिया में नोबेल प्राइज़ जीतने वाली किताब बनी थी। तो चलिए सुनते हैं अगला गाना, जानिसार बाय मजीद।

0: गुड इवनिंग अगेन बंटी जी, गुड इवनिंग ग्रेट सिंह साहब जी, रफ्तार, न्यू तरंग टेलर गोंडा से आप सभी का स्वागत है अगेन। एंड चलिए अगले गाने की बारी है राजेश सिंह जी, जो कि मालवीय नगर से सुनते हैं हमें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये गाना सुनना चाहते हैं बालिका वधू, जो 1976 में रिलीज हुई थी। गाना है ओ झुमके वाली, आवाज़ है आशा भोसले किशोर कुमार की, लिरिक्स है इसकी आनंद बख्शी की। अगर लिरिक्स की बात करूं, तो इनकी लिरिक्स में अदाकारी होती थी, थोड़ा फन भी होता था, और ये जब भी लिखते थे कुछ बेमिसाल लिखते थे। तो चलिए आनंद बख्शी की लिरिक्स और आवाज आशा भोसले की सुनते हैं ये प्यारा सा गाना ओ झुमके वाली। नाराजगी तेरी ओके
1: और झटपट झटपट नाच दिखा।
2: अरे तो निकल तेरा डब्बा हो जसरू।

बालिका वधू सिर्फ फिल्म नहीं थी, इमोशन था। जिस किसी ने भी इस मूवी को देखा होगा उसे ये पता चला होगा कि पहले के ज़माने में इमोशंस कितने स्वीट होते थे, उनमें दिखावे की ज़रूरत नहीं होती थी। अब आ रही है सेन साहब की फरमाइश का गाना सुनने की वीरानिया। ओहो क्या बात है, आपको बताना चाहती हूँ ये आपका गाना जो है नमस्ते लंदन से है। हिमेश रेशमिया ने म्यूजिक और संगीत दिया है और अक्षय कुमार कैटरीना कैफ की अदाकारी ने इस गाने को बहुत ही खूबसूरत बनाया। लेट्स एंजॉय द सॉन्ग बाय सेन साहब जी।

दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, तो मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था।

तो ये गाना आपने सुना सेन साहब की फरमाइश पे, और अगला गाना बहुत ही प्यारा सा है जिसको शायरी के साथ फरमाइश किया गया। आज उनकी आवाज़ नहीं सुनी मैंने, आज उनकी आवाज़ नहीं सुनी मैंने, सोचता हूँ गाना ही सुना दूँ। बीना जी नमस्ते, गाना सुना दीजिए, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। किसकी याद आपको आ रही है जरा जल्दी बताइए। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय धर्मेंद्र जी।

सो लिसनर, जैसा कि आप लोगों ने गाना सुना कि आती है याद तेरी, ये गाना इसमें लिरिक्स तो है लेकिन लिरिक्स से ज़्यादा मुझे म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, और ये म्यूज़िक के साथ ये गाना 8.5 मिनट का बन गया, क्या बात है। और अब इसके बाद हम लोग सुनेंगे गाना दीवाना है ये मन, सोनू निगम की आवाज़ में, फरमाइश है मिश्रा ऑप्टिकल्स की।

सो डियर लिसनर्स, अगला गाना हम लोग सुनेंगे हमारे लिसनर अंबर गोयल की फरमाइश पे। गाना है तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त। ओहो क्या बात है, बड़ी बढ़िया फरमाइश है आपकी। एंजॉय करिए बेहतरीन सा सॉन्ग अपनी फरमाइश पे। थैंक्स फॉर डिमांडिंग।

कमल लैन की फरमाइश पे चलिए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा फरमाइश का गाना हमने सुना अमर जी की फरमाइश पे। कमल लैन की फरमाइश का गाना है साजन मेरे सतरंगिया। ओहो

बहुत ही प्यारा सा गाना हम लोगों ने सुना, और आपकी फरमाइशें ना सिर्फ फरमाइशें होती हैं बल्कि कोई दूर रहकर भी पास लगता है, और जब उसका भेजा हुआ गीत बजता है, संगीत सच में कमाल करता है, खामोश जज्बातों को एक आवाज़ देता है। ये फरमाइशें आती हैं ना, इनमें सिर्फ गाने नहीं होते, कहीं दोस्ती की शरारत होती है तो कहीं मोहब्बत की आहट होती है। तो चलिए अगला गाना सुनते हैं हम लोग बंटी गुर्जर की फरमाइश पे। गाना है मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। बिल्कुल

0: निकम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट 1 महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
4: 1 साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
5: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाड टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
6: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

0: सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर 94.48 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: घोड़ा चतुरा
1: एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना,
2: एक चतुर ना।

0: देख कर अपनी चाल।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: धन्यवाद।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
9: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
8: और जेंट्स के लिए?
9: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
8: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
9: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
10: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
11: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
12: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
13: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
12: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
14: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
15: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
14: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
15: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
14: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
15: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
16: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
17: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
18: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
19: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
20: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हेलो एवरीवन, फिर हम सब आ चुके हैं आपके पास, हम और आपकी अपनी
2: आरजे सिंपल।
1: यस, आरजे सिंपल। और आज आप और हम फिर से एक साथ हैं, और साथ होना भी मतलब मुझे लगता है कि एक किस्मत का कनेक्शन होता है ना, यू नो, किस्मत ने हमें लाके यहाँ बिठा दिया है,
2: वो भी एक साथ एक ही पॉडकास्ट में।
1: वाओ। यस, और मुझे लगता है कि मिलना तो रहता ही है, लेकिन मिलने के साथ साथ मैं ये बहुत पॉइंट आउट कर रही हूँ कि हर बार एक नए ब्लेजर में, हर बार एक नए लुक में आप दिखती हैं। और लुक से मुझे भी याद आ रहा है कि यार मैं आजकल बहुत शॉपिंग करने लगी हूँ, और शॉपिंग का मतलब मुझे ऐसा क्रेज हो गया कि हर वक्त कुछ ना कुछ खरीदते रहना, ऑनलाइन देखती रहती हूँ, अच्छा लाओ ये मंगा लेती हूँ, ये वाले ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग मंगा लेती हूँ, और पहनने का तो फुर्सत ही नहीं, उसको देखो पुराना लगने लगता है।
2: जैसे हमें फास्ट फूड की क्रेविंग्स होती है ना, पहले होती थी कि बर्गर खा लेते हैं, चॉकोलावा केक खा लेते हैं, लेकिन जब तक नहीं खाते हैं, जब तक ऑर्डर नहीं करते हैं, डिलीवर नहीं होता, तब तक ही जैसे ही ऑर्डर डिलीवर हो गया मन भर जाता है। ऐसे ही हो गई है हमारी आजकल की ऑनलाइन शॉपिंग, चाहे वो सनस्क्रीन की हो, चाहे आप जो ब्लेजर की बात कर रही हैं उस ब्लेजर की हो, चाहे शूज की हो।
1: लेकिन मुझे लगता है ऐसा आरजे सिंपल कि ये बात सिर्फ चीजों तक नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग तक नहीं है, ऐसा होता है क्या कि कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरा तुमसे मन भर गया है, क्या ऐसा सच में होता है क्या?
2: हाँ, ये मैंने रील भी देखा है, तो ऐसा बंदा बोलता है कि अच्छा जाना तेरा तो मेरे से मन भर गया होगा। भाई रिश्तों से भी मन भरता है क्या किसी का?
1: पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब लोग कहते हैं तो ऐसा होगा ही।
2: खैर, ऐसा होने से मुझे याद आया कि आपने कभी सोचा है कि जिस हाथ ने आपको सुबह की चाय दी हो, वही हाथ आपके कब्र खोद रहा हो, आपको दफन करने की पूरी प्रक्रिया कर रहा हो?
1: मुझे लगता है जिसका मन भर गया होगा। जैसे हमने अभी बात की ना कि मन भर जाता है, तो मन भरने के बाद इंसान किसी हद तक किसी से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कर लेता है।
2: और वैसे भी हम अक्सर अंधेरी गलियों और नकाबपोश अजनबियों से डरते हैं, लेकिन हकीकत में तो सबसे खौफनाक वही होते हैं जो हमारे बगल में सोफे पे बैठ के हमारे साथ में टीवी देख रहे होते हैं, और साथ में चाय की प्याली भी हाथ में होती है।
1: बगल में छोरा टाइप्स। और मुझे लग रहा है कि आज की जो आप कहानी लेके आई हैं, इसकी भी मुझे लगता है कि स्टोरी बैकग्राउंड कुछ ऐसी है जिसकी जो स्माइल है वो काफी ज्यादा इनोसेंट है, और ऐसा लगता है कि मतलब कितनी प्यारी सी स्माइल है जिसकी आप कहानी बताने वाली हैं। लेकिन इंसान की स्माइल में एक ऐसी खुशबू है जो आपको शायद मौत के कुएं तक ले जा सकती है।
2: बिल्कुल अर्जबिना, यही तो इस केस की सबसे डरावनी बात है।
1: आपने जब मुझे इसकी तस्वीर दिखाई, मतलब मैं तो दीवानी हो गई कि ये कौन सी लव स्टोरी की कौन सी अदाकारा है, बट जब बाद में बात होनी शुरू हुई, ओ माय गॉड।
2: हाँ, क्योंकि उनका चेहरा मींस नैनी डॉस का चेहरा देखकर कोई भी उसे अपनी पसंद का केक बनाने के लिए भी कह सकता है, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ बहुत ही बढ़िया शेफ थी, और अपने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे केक्स के जरिए, डिनर के जरिए, लंच के जरिए, और पता नहीं कौन कौन से डिशेस के जरिए वो लोगों को जहर का निवाला देती थी।
1: तो जी हाँ लिसनर्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नैनी डॉस की कहानी, जो आपको अंदर से झकझोर के रख देगी। और बात है 1905 की अलबामा। नैनी का बचपन बहुत ही खुशहाल नहीं था। उसके पिता जेम्स हेजल एक सनकी और कंट्रोलिंग इंसान थे, मतलब अपने अकॉर्डिंग उन्हें हर चीज चाहिए होती थी। वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के बजाय खेत में काम करवाते थे। उन्हें लगता था कि बेटियां जो होती हैं वो काम करने के लिए या हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आती
2: होती है।
1: और साथ ही साथ मेरा मानना है कि जब आप किसी बच्चे का बचपन छीन लेते हैं तो उसके अंदर एक गहरी नफरत पैदा हो जाती है, क्योंकि मतलब मुझे लगता है आरजे सिंपल कि बचपन वो टाइम होता है जो हर किसी की लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होता है।
2: सही कह रहे हो आप। जैसे मेरी एक नीस है, वो मेरे से बोलती है, बुआ आप इतना टेंशन क्यों लेते हो, मुझे देखो मैं एकदम टेंशन फ्री रहती हूँ, हमेशा मजे किया करती हूँ। तो बचपन होता ही है टेंशन फ्री रहने के लिए, मजे करने के लिए।
1: एंड अगर वही बचपन एकदम वर्स्ट, बेस्ट से वर्स्ट बन जाए तो उसके अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन सा आ जाएगा ना।
2: हाँ, और आपको पता है कि जब नैनी टॉस 7 साल की ही थी, तब उसका एक ट्रेन हादसा हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था।
1: ओह माय गॉड।
2: नैनी के सिर पर एक लोहे की रोड से चोट लगी थी। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह का टर्निंग पॉइंट था। डॉक्टरों का कहना है कि उस चोट ने उसके दिमाग के उस हिस्से को डैमेज कर दिया था जो पछतावा महसूस कराता है, मींस उसको रिग्रेट होना ही बंद हो गया था।
1: ये बात बिल्कुल सही है आरजे सिंपल कि हमारा जो दिमाग है वो हमारे हर अच्छी बुरी सोच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उस सोच का क्या जो बचपन से मुझे लगता है नैनी डॉस के मन में आ रही थी, जो उसके पेरेंट्स ने, उसके पिता ने उसके मन में डाली थी, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट था नैनी डॉस के लिए। पहला तो वो अंदर अंदर से टूटी थी,
2: वैसे ही ऑलरेडी वो एक इंसिडेंट से गुजर ही रही थी अपने घर के अंदर,
1: और इस बार जो हुआ था वो कहीं ना कहीं फिजिकली उसको डैमेज करने वाला था, और मुझे लगता है अब उसकी जिंदगी में कुछ और होने वाला था। बस यही था टर्निंग पॉइंट नैनी का। नैनी ने अपनी जिंदगी को उस रोमांस मैगजीन की तरह बनाना शुरू कर दिया था जो वो छुप छुप कर पढ़ा करती थी। 16 साल की उम्र में उसकी शादी चार्ली ब्रेग्स से हुई थी, लेकिन असल जिंदगी मैगजीन जैसी तो नहीं होती है। बिल्कुल रियल लाइफ और रियल लाइफ में जो डिफरेंस है, वैसे ही मैगजीन लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। 1927 में उसकी दो बेटियों की अचानक मौत हो गई, उस वक्त किसी ने शक नहीं किया उस पर।
2: अर्जेंटीना उस दौर में बच्चों की मृत्यु दर मींस इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी। लोगों को लगा कि ये पेट की कोई बीमारी है, लेकिन सच तो ये था कि नैनी को अपनी जिम्मेदारियां बोझ लग रही थी।
1: ओह माय गॉड,
2: मेरी राय में वो एक ऐसी महिला थी जिसे सिर्फ प्यार का नाटक पसंद था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैगजीन्स में होता है, सीरियल्स में हम देखते हैं, मूवीज में हम देखते हैं, रोमांस देखते हैं, टाइम स्पेंड करना देखते हैं, साथ में डेट पे जाना, मूवीज, एवरीथिंग, लेकिन हम काम करते हुए कभी नहीं देखते हैं ना।
1: ये बात तो सही है।
2: तो उसको जिम्मेदारियां नहीं चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए था,
1: और वो बस ऐसा सोचती थी कि जो चीज मेरे लिए जब तक सही है ठीक है, लेकिन जब मुझे उसके लिए कुछ करना होगा तो शायद वो उस चीज को बर्डन फील करने लगती,
2: पीछे हटने लगती थी।
1: चार्ली खुशकिस्मत था जो वहां से भाग निकला, लेकिन इसके बाद नैनी ने लोनली हार्ट्स विज्ञापनों का सहारा लिया। उसने फ्रैंक हैरल्स से शादी की। ये जो मैगजीन्स होती थी, ये जो विज्ञापन होते थे, इसमें जो लड़के होते थे वो अपने लिए प्रपोजल देते थे कि मेरे से कोई शादी करना चाहता है। फ्रैंक एक शराबी था। एक रात नैनी ने उसकी शराब में जहर मिला दिया। फ्रैंक की तड़प तड़प कर मौत हो गई और नैनी बस पास खड़ी उसे देखती रही।
2: ये उसका दूसरा हस्बैंड था।
1: यस,
2: पहला तो भाग निकला, उसकी खुशकिस्मती थी शायद, लेकिन दूसरे ने अपनी जिंदगी गवा दी। वो भी कौन से विज्ञापन का भी आपने नाम लिया है?
1: लोनली हार्ट्स।
2: ओह माय गॉड, लोनली हार्ट्स ने एकदम से लोनली कर दिया। खैर, और आपको पता है अर्जेंटीना, फ्रैंक के बाद उसकी अपनी माँ लूसा और उसकी बहन डावी भी उसके रास्ते में आई। नैनी को अपने बीमार माँ की सेवा करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था। उसने अपनी माँ के खाने में आर्सेनिक मिला दिया। आर्सेनिक, वही चूहे मारने की दवा। मुझे ये सोचकर भी घिन आती है कि कोई अपनी माँ को धीरे धीरे मरते हुए कैसे देख सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने आराम के लिए, ताकि उनको उनकी सेवा ना करनी पड़े। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कहाँ की सोच है और ये कौन सी साइकोलॉजी है?
1: मुझे लगता है आरजे सिंपल, ये साइकोलॉजी नहीं है, ये एक तरह की मानसिकता होगी जो इंसान मतलब अपने अनुभवों से बनाता है। उसने बचपन में देखा कि उसे सब परेशान करते थे, अब उसको लग रहा था कि अब वो सबको परेशान करेगी। अब बारी थी कुछ प्रेम पत्रों की। जी हाँ, उन प्रेम पत्रों की बात कर रही हूँ जिसे वो अपना अगला शिकार बनाने वाली थी। वो रिचर्ड मार्टन और अर्ली लैनिंग जैसे मर्दों को लिखती थी खत। मैं तुम्हारे लिए हर दिन मीठा हलवा बनाऊंगी, तुम्हारे घर को खुशियों से भर दूंगी। ये पढ़कर कोई भी अकेला आदमी उसके जाल में फंस जाता था। मतलब इनडायरेक्टली, जैसे फेसबुक पे हमने एंजल आकांक्षा, एंजल पल्लवी, ऐसे करके नाम बहुत सुने होंगे जो फेक नाम होते थे, लड़के होते थे और लड़कों को ही फंसाते थे। लेकिन यहाँ पे ये खुद ही लड़की बन के एक लेटर लिख लिख के लोगों को फंसा रही थी, वो भी अपनी मीठी मीठी बातों से। और मुझे लगता है कि ये एक तरह का छलावा था लोगों के लिए, और उस छलावे से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी।
2: बिल्कुल, रिचर्ड मार्टिन को लिखे खतों में वो खुद को एक ममतामयी और अकेली औरत, मींस लोनली, और पता नहीं लोनली वोल्फ की तरह बताती थी। लेकिन जैसे ही शादी होती और पति उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, वो अपनी रसोई से आर्सेनिक निकाल लेती, और मुझे लगता है कि वो एक एडिक्ट बन चुकी थी हत्या करने के लिए, और जो भी अपने रिश्ते पे खरा नहीं उतरता था वो उसको मौत के घाट उतार देती थी।
1: और मुझे लगता है कि इंसान को जब आदत पड़ जाती है तो वो आदत कभी सही नहीं होती। किसी इंसान की आदत है कुछ लिखने की, तो वो आदत उसकी बन जाएगी, उसको दीवार भी मिलेगी तो वो उस पे भी लिख देगा। अर्ली नोनिंग की मौत के बाद नैनी की सास भी उसके घर रहने आई। नैनी को अपनी सास का दखल देना पसंद नहीं था। कुछ ही दिनों में उसकी सास की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मेरा विचार है कि नैनी ने जहर देने की कला को इतनी महारती से यूज करना शुरू कर दिया था कि कोई समझ ही नहीं पाता था कि मौत कोई हत्या है या किसी तरह की प्राकृतिक। और मुझे लगता है कि अगर कोई किसी काम में प्रोफेशनल हो जाता है तो उसकी जो आदत है उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है।
2: लेकिन ये भी तो कहा गया है ना कि रोज का चोर एक दिन तो जरूर पकड़ा जाता है।
1: डेफिनेटली पकड़ा जाना भी चाहिए।
2: तो ऐसे ही हर अपराधी की तरह आता है नैनी डॉस का भी दिन। एक दिन नैनी डॉस भी पकड़ी जाती है। नैनी का आखिरी पति था सैमुअल डॉस। सैमुअल एक बहुत ही अच्छा आदमी था, एकदम मेरी तरह और आरजे बीना की तरह। नैनी का मैगजीन पढ़ना और बाहर घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था, जैसे उसके फादर को नहीं पसंद था। नैनी ने उसे भी जहर दे दिया। उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया और मिरेकल ऐसा हुआ कि वो बच निकला।
1: मुझे लगता है जिसको भगवान बचाना चाहते हैं तो वो बच ही निकलता है। और यही थी नैनी की सबसे बड़ी गलती। उसने उसी रात उसे भारी मात्रा में जहर वाला प्रून्स खिला दिया। सुबह सैमुअल मृत मिला। डॉक्टर जेलिगमैन को शक हुआ क्योंकि सैमुअल पूरी तरह ठीक हो चुका था। उन्होंने पोस्टमार्टम किया और जो मिला उसने इतिहास ही बदल दिया।
2: बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सैमुअल के लीवर और किडनी में आर्सेनिक की इतनी मात्रा थी कि वो किसी भी साइंटिस्ट के पैमाने से बाहर थी। पर्सनली मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ साइंस ने उस मुस्कुराते हुए चेहरे को हरा दिया। पुलिस ने जब नैनी से पूछताछ की तो वो अपनी कहानियाँ सुनाते हुए छोटी बच्ची की तरह गिगल कर रही थी,
1: मतलब खिलखिला के हंस रही थी वो।
2: जी हाँ बिल्कुल। उसने अपने हर एक मौत के बाद में जितने भी रिश्तों को उसके दफनाया गया है, लास्ट अंतिम संस्कार वाले टाइम पे भी वो लोगों से मुस्कुराते हुए मिल रही थी।
1: और मुझे लगता है आरजे सिंपल, ये जो उसका एक्सीडेंट हुआ था उसने वाकई में लगता है उसको पछतावा करने जैसा मतलब महसूस कराना ही बंद कर दिया था।
2: या हम लोग किसी से फालतू में नाराज भी हो जाते हैं तो 2 मिनट बाद हमें पछतावा होता है कि नहीं इतना भी नहीं बोलना चाहिए था।
1: हाँ बिल्कुल, किसी से रूडली बात करते तो तुरंत हमें रिग्रेट होता है, यार ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसकी जगह मैं ये भी कह सकता था या कह सकती थी। और मुझे लगता है अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका मुझे लगता है कि मुझे आपको और लिसनर्स को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा। कानून के हिस्से पर आते हैं। नैनी पर 11 हत्याओं का शक था लेकिन मुकदमा सिर्फ सैमुअल डॉस की मौत पर चला। ये एक प्रोसिक्यूटोरियल स्ट्रेटजी थी। ओक्लाहोमा के अधिकारियों को पता था कि अगर वे सभी केस खोलेंगे तो पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। उन्हें बस उसे जेल के पीछे डालना था।
2: बिल्कुल। और एक और कानूनी पेश था, इंसेनिटी प्ली मींस पागलपन का बचाव। उसके वकीलों ने कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार है लेकिन कोर्ट ने देखा कि नैनी ने बहुत सफाई से सबूत मिटाए थे। इसका मतलब था वो पूरी तरह होश में थी।
1: और मेरी राय में उसे मौत की सजा ही मिलनी चाहिए थी लेकिन उस समय की जूरी एक मुस्कुराती हुई दादी का इलेक्ट्रिक चेयर पर भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे उम्र कैद मिली। वो जेल में भी कैदियों के लिए खाना बनाना चाहती थी।
2: ओह माय गॉड।
1: लेकिन जेल प्रशासन इतना डरा हुआ था कि उन्होंने उसे रसोई के पास भटकने भी ना दिया।
2: तो ये थी नैनी डॉस, एक ऐसी औरत जिसने रोमांस की काल्पनिक दुनिया को पाने के लिए हकीकत के 11 जिंदगियों को लाशों में तब्दील कर दिया। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक जहर शीशी में नहीं बल्कि उन मीठी बातों में होते हैं जो हम रोज सुनते हैं।
1: बिल्कुल आरजे सिंपल, और मुझे लगता है कि आसपास बोलने वाले लोग हमें लगता है कि बहुत ही शुगर कोटेड बातें कर रहे हैं लेकिन किसी के मन में क्या चल रहा है ये हमें अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नैनी तो 1965 में कैंसर से मर गई लेकिन उसका वो गिगल आज भी उन बंद कमरों में गूंजता है जहां लोग अपनों पर अंधा विश्वास करते हैं। नैनी के लिए मौत सिर्फ एक रेसिपी थी जिसे वो बार बार दोहराना चाहती थी।
2: ऐसे तो आरजे बिना हमें घर के अंदर भी अपने रिश्तों से भी डर लगने लगेगा ना, कि जैसे हमारी बुआ ही हमारे लिए हंसते हुए चाय लेके आ रही हैं, उन्होंने सालों में ऐसा ना किया हो लेकिन सालों भर बाद पहली बार वो हमारे लिए एकदम खिलखिलाती हुई हंसी के साथ में एक कप चाय लेके आ रही है, क्या मुझे पीना चाहिए कि नहीं, मुझे तो तुरंत नैनी डॉस याद आएंगी।
1: अब ये तो हमने कहानी सुन ली है लेकिन देखिए ये हर बार ऐसा नहीं हो सकता। इस दिमाग से हम सोचेंगे तो हमें हर इंसान कल्प्रिट दिखेगा। हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होना है और ऐसी जगह हमें शक करना है जहाँ लगे कि कुछ गड़बड़ है। हर जगह हमें शक नहीं करना होता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अचानक से आपके लिए खाना बना के ले आएगा और ऐसा नहीं कि कोई अचानक से कोई दवा लेके चला आएगा।
2: लेकिन नैनी डॉस तो ऐसा ही करती थी ना, वो पहले हल्का सा दवा देती थी, मींस हल्का सा जहर देती थी स्वादिष्ट खानों में। फिर उसके बाद में वो बीमार होने के बाद में उसी मरीज की सेवा भी करती थी, मालिश करती थी, नहलाती थी,
1: क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार भी थी। तो मानसिक रूप से बीमार इंसान कुछ भी कर सकता है, इवन वो चाकू लेके आपको भोंक भी सकता है। तो सिंपली हमें ये सोचना है कि आसपास जो भी जहरीली चीजें या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में विज्ञान भी जानता है, तो उनको तो आसानी से किसी को भी ना दिया जाए, क्योंकि ये मेडिसिन या कोई भी ऐसी जहरीली चीज, वैसे जहरीली कोई भी चीज हो सकती है जिसका कोई भी चीज का ओवर यूज किया जाए, जिसमें कोई केमिकल ऐसा टॉक्सिक हो, लेकिन मेरे हिसाब से इन सब चीजों को मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं कराना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो मानसिक रूप से विकलांग होगा उसी के साथ ऐसा होगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम नैनी डॉज बनने का जो सफर है उसको शुरू से रोकें। हम बाद में जाने के बजाय, उसकी पर्सनैलिटी को स्टडी करने के बजाय, उसके साथ शुरू में क्या हुआ उस पे ध्यान दें। हमारे घर में कोई बच्चा है जिसके साथ हो सकता है, कभी कभी क्या होता है, सिंपल की घर में कोई बच्चा है जो पढ़ नहीं रहा, तो उसके साथ हम बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं, भाई तुम पढ़ते नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तो वो कहीं ना कहीं हीन भावना में चला जाएगा। उसके किसी भी क्वालिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए।
2: लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जैसे हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम है, वो हमें उसके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, हम उसका इलाज करा लेते हैं, हमारे लीवर में प्रॉब्लम है, हमारे किसी भी बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, हम उसका ट्रीटमेंट झट से करा लेते हैं। लेकिन ये जो मेंटल इश्यूज होते हैं, ये जो मानसिक स्थितियां होती हैं, इनके सिम्टम्स क्यों नहीं दिखते लोगों को, क्यों नहीं समझ में आते? और आज के टाइम पे भी जब मुझे ऐसा लगता है 80% ऑफ द पॉपुलेशन डिप्रेशन में जूझ रहा होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्टेज पे, तब भी हम इन सब चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जिससे हमें पता चल जाना चाहिए कि ये इंसान मेंटली स्टेबल है कि नहीं है?
1: आज सिंपल अगर हम WHO की बात करें तो WHO ने एक हेल्दी पर्सन की एक बड़ी सी डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन में उन्होंने कहा है कि मेंटली, इमोशनली, फिजिकली इंसान अगर तीनों रूप से फिट है तो ही वो हेल्दी है। अब इमोशनली और सोशली ये कौन सा टर्म है? इमोशनली मतलब कि उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, कोई इंसान बहुत जल्दी रोने लग रहा है तब भी उसके साथ यानी कि कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, ओवर हंस रहा है। जैसा आपने बताया था कि जब वो किसी को मतलब अंतिम संस्कार करने जाती थी या उसके मतलब दफनाने के लिए अपने पेरेंट्स या जिनके भी साथ जाती थी तो वो हंसती थी, वो एक साइन था हमें पहचानने का कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है।
2: लेकिन लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया सिर्फ ये देखते हुए कि वो सेवा भी करती है, खाना भी खिलाती है, इसके बाद में ये ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकती है।
1: हर सेवा करने वाला, खाना खिलाने वाला इंसान बहुत नॉर्मल हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा तो उसके कुछ ना कुछ लक्षण दिखेंगे, जैसे कि हंसना, बहुत ज्यादा चुप रहना, बहुत ज्यादा बोलना, किसी के साथ इंटरैक्ट करना, कोई इंसान मतलब इंटेंशनली किसी को बहुत मैसेज कर रहा है, या किसी वर्क प्लेस पे कोई इंसान एक ऐसा है जो हर दिन हर किसी को रोज मैसेज कर रहा है, इसके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो सोशली और इमोशनली ये दो एस्पेक्ट पे हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बस हमें भी थोड़ा सा अवेयर होने के, हर चीज को नॉर्मल नहीं समझना है, हर किसी को कोना नहीं बना देना है। अगर वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हो सकता है हमारे लिए यूजफुल ना हो इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान तो है ना।
2: ऑब्वियसली मैं भी यही हमेशा लोगों से कहती हूँ कि कमियां तो सब में होती है, परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन इंसान की अच्छाई को पहले देखना चाहिए, बुराई क्या पता उस अच्छाई के साथ ही चली जाए। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ और ना शायद समझ पाऊंगी।
1: बिल्कुल, और इसके लिए बस हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम किसी नैनी डॉस को बनने ही ना दे, हम उसकी किसी भी इंसान की जिंदगी में ऐसा मौका ही ना आने दे कि वो किसी के लिए इतना नफरत फील करे।
2: मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर आपको रोड पे चलते हुए कोई अकेला इंसान रोता हुआ जाता हुआ दिख रहा है, तो अगर आपके पास टाइम है और अगर वो जगह सही है, एटमॉस्फेयर ठीक है, तो आपको से भी रुक के पूछना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, आप रो क्यों रही हो? क्योंकि इंसानियत तो इतना होना ही चाहिए आजकल के टाइम पे। आप इतना बिजी हो गए हो अपने वर्क कल्चर को लेके,
1: अपने मतलब स्केड्यूल को लेके हम बहुत स्टिफ हो चुके हैं, और साथ ही साथ जैसा कि हमने बचपन देखा नैनी डॉस का कि उसके फादर ने उसको एक बेसिक नीड जो कि पढ़ाई पे हर किसी का हक है, एजुकेशन उसको नहीं दी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। हाँ, ये बात और है कि हमारी फ्रस्ट्रेशन किसी की जान तो नहीं ले सकती, लेकिन वो तब घातक हो जाती है जब वो ओवर हो जाती है। तो बस हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे किसी के भी मन में किसी के लिए भी हीन भावना है। आज के एपिसोड को यहीं पे करते हैं क्लोज और मिलते हैं अगले अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।
0: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन। ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 एफएम के प्यारे श्रोतागण, आप सभी को आपके आरजे बेनाम का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी संगीत और सिनेमा में बहुत सारे गायकों और संगीतकारों का योगदान रहा है। कुछ सितारों ने तो अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि जमाने बदल गए, मगर उनकी छाप को कोई मिटा नहीं सका। ऐसे ही एक संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। उनको आज भी लोग एसटी बर्मन के नाम से जानते हैं।

एसटी बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को त्रिपुरा में हुआ था। उनके पिता त्रिपुरा के राजा ईशान चंद देव बर्मन के पुत्र थे। वो 9 भाई बहन थे। उनकी माता राजकुमारी निर्मला देवी मणिपुर की राजकुमारी थी।

1937 में बंगाली फिल्मों से अपना करियर शुरू किया, पर बाद में हिंदी फिल्मों के लिए रचना शुरू कर दिया और सबसे सफल और प्रभावशाली भारतीय फिल्म संगीतकारों में से एक बन गए। आपने बंगाली और हिंदी फिल्में मिलाकर 100 से अधिक फिल्मों के लिए साउंड ट्रैक तैयार किया।

बर्मन साहब जितने बेहतरीन संगीतकार थे उससे भी ज्यादा दिलचस्प इंसान थे। उनके बारे में ऐसे कई किस्से हैं जो आज भी फिल्मी दुनिया की हर शाम को खुशनुमा बना देता है। मंदिर में घुसने से पहले एसटी बर्मन जूते या चप्पल की जोड़ी एक साथ नहीं रखते थे ताकि कोई उनको चुरा ना ले। एक बार उनके एक साथी ने पूछा, यदि चप्पल चोर दूसरी चप्पल ढेर में से ढूंढकर चुरा ले तो? इस पर उनका हाजिर जवाब था, यदि कोई चोर इतनी मेहनत करता है तो वो चप्पल पाने का वाकई हकदार है।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दोनों।

एसडी बर्मन और साहिल लुधियानवी के बीच हुई अनबन भी इंडस्ट्री में बहुत मशहूर है। गुरदत्त अपनी फिल्म प्यासा बना रहे थे। इस अनबन की वजह थी कि गाने की क्रेडिट किसे मिले। एसडी बर्मन के जीवन पे किताब लिखने वाली लेखिका सत्या सरन ने एक इंटरव्यू में बताया, ये मामला इतना बढ़ गया था कि साहिल लुधियानवी ने सचिन देव बर्मन से कहा कि वो 1 रुपया अधिक फीस चाहते हैं। इस जीत के पीछे साहिल जी का तर्क ये था कि एसडी के संगीत की लोकप्रियता ने उनका बराबर का हाथ है। एसडी बर्मन ने शर्त मानने से इनकार कर दिया और फिर दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया।

एस डी बर्मन की रचनाएं उस युग के प्रमुख गायकों द्वारा गाई गई, जिनमें किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, गीता दत्त, मन्ना डे, हेमंत कुमार, आशा भोसले, शमशाद बेगम, मुकेश और तलत महमूद शामिल थे। एक पार्श्व गायक के रूप में बर्मन ने 14 हिंदी और 13 बंगाली फिल्मों में गाने गाए। गाइड फिल्म के गीत वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर को जब एस डी बर्मन ने संगीत में पिरोया और उसे अपनी आवाज दी तो सुनने वालों के होश ही उड़ गए।

सी कनाई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

एसडी बर्मन पान खाने के बेहद शौकीन थे। इसके अलावा उन्हें फुटबॉल भी बहुत पसंद था। सितार वादन के साथ संगीत की दुनिया में कदम रखने वाले बर्मन जी की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई। 1932 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन पर एक गायक के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाले बर्मन जी को किस्मत ने ऐसी उछाल दी कि फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं।

संगीत कदरदानों ने उन्हें अथाह प्यार दिया। एस डी बर्मन को एक के बाद एक कई अवार्ड्स भी मिले। साल 1958 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जीतने वाले एस डी बर्मन जी को साल 1969 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, एस डी बर्मन ने दो बार नेशनल अवार्ड और दो बार फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया।

हमारे एसडी बर्मन जी का लता मंगेशकर से भी एक बार झगड़ा हुआ। एक बार रेडियो इंटरव्यू में लता जी ने बताया था कि हमारी अनबन 1958 में फिल्म सितारों से आगे के एक गीत को लेकर हुई थी। मैंने पक ठुमक चलत गीत रिकॉर्ड किया तो पंचम दा बहुत ही खुश हुए और इसे ओके कर दिया। लेकिन बर्मन साहब वो तो एक परफेक्शनिस्ट थे, उन्होंने मुझे फोन किया कि वो मेरे गीत को दोबारा रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मैं कहीं बाहर जा रही थी इसलिए मैंने मना कर दिया। बर्मन साहब इस बात पर बेहद नाराज हो गए। इसके बाद तो उन्होंने कई साल तक साथ काम नहीं किया।

ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम एसटी बर्मन जी के ही कारण पड़ा। सचिन के दादाजी उनके बहुत बड़े फैन थे, इसलिए उन्होंने अपने पोते का नाम सचिन रखा। एसटी बर्मन की याद में त्रिपुरा सरकार हर साल एसटी बर्मन मेमोरियल अवार्ड भी देती है।

एसडी बर्मन जी बेहद कंजूस थे, खाने पीने का उन्हें बेहद शौक था और साथ ही साथ उन्हें फुटबॉल भी बहुत पसंद था। बताया जाता है कि एक बार मोहन बगान की टीम हार गई तो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि आज वो खुशी का गीत बना ही नहीं सकते हैं, कोई दुखी वाला गीत है तो बनवा लो।

0: जानी सा धानी मदानी सा नीरे नीरे धानी धानी मदा मदा गामा गामा गामा जानी सा गामा जानी सा धानी सा।
1: बंगाल के क्रांतिकारी कवि काजी नजरुल इस्लाम उनके परिवार के करीबी परिचित थे। वो बर्मन परिवार के साथ उनके फैमिली निवास में ही रहते थे। बर्मन ने नजरुल द्वारा रचित चार गाने भी गाए।

हिंदी गानों में उनकी पहली बड़ी हिट 1947 में फिल्म दो भाई में गीता दत्त द्वारा एक गाने मेरा सुंदर सप्ताह बीत गया से आई।

एसटी परमन का विवाह मीरा देवी से 1938 में हुआ था। वो बंगाली फिल्म के गीतकार व संगीतकार थी। उनके बेटे आरडी परमन भी बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर संगीतकार थे, जिन्होंने आशा भोसले जी से विवाह किया था।

0: फिल्म मिली के लिए किशोर कुमार द्वारा गाया गाना बड़ी सुनी सुनी है कि रिहर्सल के तुरंत बाद एसटी बर्मन कोमा में चले गए और 31 अक्टूबर 1975 को इस महान संगीतकार की आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। आज वो हमारे बीच भले ही नहीं है, मगर उनकी आवाज का जादू आज भी लोगों को मदहोश कर देता है।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
5: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
4: और जेंट्स के लिए?
5: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
4: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।